हम बोल रहे हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला से और आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना। तो श्रोताओं बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा भजन।

ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। श्रोताओं बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा भजन।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर ये है आप सभी का मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना।

हम बोल रहे हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला से और आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना। और श्रोताओं बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा भजन।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे थे भक्ति संगीत आराधना अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। खुश होता हूँ आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। तो आप

ए तो हाँ सारे ना अपना सामुदायिक रेडियो गुंजन धर्मशाला कनिष्ठो तो हाँ सारे इस कार्यक्रम सुना दे माटी दी मैं तो सुन दे ना कार्यक्रम दा अगला गीत तो हाँ सारे ये ही बनी रिया कनिष्ठ सुन दे रिया रेडियो गुंजन धर्मशाला गूंज अपने पंदी।

91.2 MHz पर ये तुहां सारे दा अपना पसंदीदा रेडियो गुंजन धर्मशाला कने श्रोताओ तुहां सारे अपने पसंदीदा कार्यक्रम सुना दे जिसका नाम है माटी दी महक। सुन दे कार्यक्रम दा अगला गीत।

0: दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दें अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAK+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 72 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर। भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंग फोर्ड और LinkedIn लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI, जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं तो आज ही जाएं FX+ Point ऑथोराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी कॉलेज रोड सिविल लाइन धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।
1: खुशी कौन नहीं चाहता, लेकिन किस कीमत पर? धूम्रपान महंगा पड़ता है। धूम्रपान आपके लिए हानिकारक है और आपके चाहने वालों के लिए भी। धूम्रपान पड़ेगा महंगा।
0: नमस्कार दोस्तों, चुनावी चर्चा की चौपाल अब सजेगी आपके अपने रेडियो गुंजन पर। पंचायती राज और स्थानीय निकाय चुनाव की हलचल तेज है। ग्राम स्वराज के लिए काबिल प्रतिनिधि चुनने का वक्त आ गया है और इस खास अवसर पर रेडियो गुंजन

धर्मशाला आप सभी के लिए लेकर आ रहा है विशेष कार्यक्रम चुनाव संवाद। इस कार्यक्रम में हम आपके क्षेत्र के उम्मीदवारों से सीधी बातचीत करेंगे और उठाएंगे आपके मुद्दे, आपके सवाल। क्या आप चाहते हैं कि आपके क्षेत्र के उम्मीदवार इस मंच पर आए? क्या आपके मन में है कुछ सवाल जिनका जवाब आप जानना चाहते हैं? तो देर किस बात की, अभी अपने सवाल और अपने क्षेत्र के उम्मीदवार का नाम हमें भेजें व्हाट्सएप या SMS के माध्यम से। हमारा नंबर रहेगा 7018117019 7018117091। आइए बने एक जागरूक नागरिक, क्योंकि आपका वोट आपकी आवाज़ है।

0: जागो धर्मशाला वासियों जागो,
1: क्योंकि हमारा शहर हमारी जिम्मेदारी है।
0: इस बार चुनाव में केवल वोट न दें, बल्कि धर्मशाला का बेहतर भविष्य चुनें। मतदान करने से पहले कुछ खास बातों पर गौर करें।
1: क्या आपके वार्ड में सड़कें, साफ पानी, कूड़ा प्रबंधन और स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था दुरुस्त है? नगर निगम के पिछले कार्यों की जांच करें और तथ्यों के आधार पर ही निर्णय लें।
0: उम्मीदवार की योग्यता देखें। हमें ऐसा प्रतिनिधि चाहिए जो ईमानदार और पारदर्शी हो, जनता के प्रति जवाबदेह हो, विकास और पर्यटन के प्रति समर्पित हो।
1: याद रखें, लापरवाही में लिया गया एक गलत फैसला 5 साल का पछतावा बन सकता है। जाति, धर्म या किसी प्रलोभन में बिल्कुल ना आए, केवल योग्यता और विकास को ही वोट दें।
0: जी बिल्कुल, आपका एक वोट धर्मशाला को स्वच्छ, सुंदर और समृद्ध बना सकता है।
1: तो बिल्कुल, सबसे पहले सोचें, जांचें, परखें
0: और फिर अपना कीमती वोट देकर धर्मशाला को सवारे।
2: गुड्डी, किससे चैटिंग चल रही है?
3: मामा, नो शेयरिंग।
2: कोई स्पेशल? हाँ, हाँ, बैंक अकाउंट डिटेल्स, केवाईसी के लिए 10 मिनट दीजिए।
3: कौन था?
2: बैंक, केवाईसी अपडेट के लिए अकाउंट नंबर, पिन और ओटीपी मांगा है।
3: और आप मान गए? जब हम अपनी पर्सनल बातें हर किसी के साथ शेयर नहीं करते, तो अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स क्यों शेयर करेगा?
2: स्मार्ट गर्ल।
3: याद रहे मामा, डिजिटल लेन देन के लिए किसी को भी अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स ना दे। ओटीपी और पिन नंबर तो कभी नहीं, हमेशा भरोसेमंद नेटवर्क का ही इस्तेमाल करें।
4: अपने जीवन की जो लगाम है उसे खुद पकड़ के रखना है। आप क्या पढ़ना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो, किस तरीके से अपने जीवन को जीना चाहते हो, उस एस्पिरेशन को आप खुद सोचो और खुद उसके लिए ये सोचो कि आप उस एस्पिरेशन को पाने का क्या रास्ता है।
5: जी मम्मी जी, नहीं नहीं, हम आगे से कहीं नहीं जाएंगे। ठीक है, ओके।
3: क्या हुआ?
5: अरे कुछ नहीं, मम्मी का कॉल था, बोल रहे थे तुम लोग बेफजूल के खर्चे बहुत ज्यादा करने लग गए हो, हर दूसरे दिन बाहर घूम रहे होते हो, बाहर मूवी देख रहे होते हो, कभी खाना खा रहे होते हो। बोल रहे खर्चों पे थोड़ा कंट्रोल करो, पैसे पेट पे नहीं उगते।
3: क्या वो ऐसे कैसे बोल सकते हैं? हम दोनों की शादी हो चुकी है, जहाँ हमारा दिल करे हम वहाँ जा सकते हैं, जो मन चाहे वो खा सकते हैं। मुझे ना उनकी यही बात नहीं पसंद, उन्हें हर चीज में टोकना होता है, हर चीज में इंटरफेयर करना होता है।
5: अरे यार एक काम करो, ये लो फोन, तुम खुद ही अपनी मम्मी को फोन करके बोल दो ये सब।
3: क्या हो गया? हमारे माँ बाप नहीं अगर हमें समझाएंगे तो कौन समझाएगा बताओ।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। जी श्रोताओं, और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने।

सभी का अपना सामुदायिक रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ।

92.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये है आप सभी का अपना पसंदीदा रेडियो गुंजन धर्मशाला। और दोस्तों आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो गुंजन धर्मशाला। जी श्रोताओं, और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने, अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ।

सभी का अपना सामुदायिक रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ।

92.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये है आप सभी का अपना पसंदीदा रेडियो गुंजन धर्मशाला। और दोस्तों, आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने।

92.2 MHz पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और श्रोताओ आप सभी इस समय कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ।

समय आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो गुंजन धर्मशाला। जी श्रोताओं, और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ।

सभी का अपना सामुदायिक रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर ये है आप सभी का अपना पसंदीदा रेडियो गुंजन धर्मशाला। और दोस्तों आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने।

92.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और श्रोताओ आप सभी इस समय कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ।

समय आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो गुंजन धर्मशाला। जी श्रोताओं, और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने, अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ।

0: ऊंचाइयों से जब भविष्य को देखा जाता है तो एक ही नाम सबसे पहले नजर आता है, रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा बगवा। यहाँ शिक्षा है कॉन्सेप्ट बेस्ड, जर्मन लैंग्वेज अचीवमेंट्स, इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम्स के साथ अब छात्र बनते हैं वर्ल्ड रेडी। टेबल टेनिस, जिमनास्टिक, क्रिकेट, हॉर्स राइडिंग हो या स्विमिंग, रेनबो है सब में आगे। इसके साथ ही एक खास पहल, नीट, जेई, सीयूईटी और एनडीए के लिए स्कूल के साथ फ्री कोचिंग, एकेडमिक एक्सीलेंस, स्पोर्ट्स ब्रिलियंस और कॉम्पिटेटिव प्रिपरेशन सब एक ही जगह, रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा बगमा। तो आज ही संपर्क करें 7807849222 या फिर 9418604444। अरे सचिन, तुम्हें क्या हुआ, इतने परेशान क्यों लग रहे हो?
1: क्या बताऊँ रुचिका, मेरी बेटी कोचिंग के लिए धर्मशाला जा रही है, पर आजकल का माहौल देख कर ना थोड़ा दिल डर सा जाता है।
0: अरे इसमें डरना क्या है, फिक्र मत करो, सिद्धबाड़ी में होमली हब पीजी खुल गया है बेटियों के लिए, बिल्कुल घर जैसा सुरक्षित माहौल।
1: अच्छा?
0: बिल्कुल, जानोगे ना इनकी खास सुविधाओं के बारे में तो ऐसे आंखें खुली की खुली रह जाएंगी।
1: अरे बिल्कुल बताइए ना रुचिका।
0: बायोमेट्रिक एंट्री, वन नाइट अलर्ट सीधे पेरेंट्स तक, साफ सुथरे बड़े कमरे, पर्सनल कम्फर्ट, अलग स्टडी रूम, इंडक्शन माइक्रोवेव व फ्रिज वाली स्पेशल पेंट्री, साथ ही 24/7 सीसीटीवी, एसी नॉन एसी अगर वो चाहते हैं तो वो ऑप्शन उनके लिए है, सिंगल डबल या फिर ट्रिपल शेयरिंग रूम उनके लिए खास सुविधा, और साथ ही शुद्ध व पौष्टिक शाकाहारी खाना।
1: अरे वाह, इतना सुरक्षित स्थान, पर रुचिका ये तो बहुत महंगा होगा ना?
0: अरे कैसी बातें कर रहे हो सचिन, इनकी तरफ से लड़कियों के लिए ये खास सुविधाएं शुरू हो रही हैं मात्र 7,000 रुपए से।
1: अच्छा, पर रुचिका ये है कहाँ सिद्धबाड़ी में?
0: सिद्धबाड़ी तपोवन रोड आईपीएच गेस्ट हाउस के पास गुंजन संस्था में। तो अगर आप सभी भी अपनी बेटियों के लिए ढूंढ रहे हैं सुरक्षित स्थान तो अभी संपर्क करें 7831989044।
1: नंबर एक बार फिर से दोहराते हैं, 7831989044 पर।
0: होमली हब पीजी, जहां बेटियां रहती हैं सुरक्षित और माता पिता रहते हैं निश्चिंत।

0: अरे राजेश भाई,
1: दीपक बहुत दिनों बाद दिख रहे हो तुम। हाँ
2: और बताओ।
0: बस मेरी बेटी का कल जन्मदिन है और आपको आना होगा।
1: हाँ हाँ क्यों नहीं भाई, नेकी और पूछ पूछ।
0: और सूरज भाई आपको तो निमंत्रण मिल ही चुका है, चलो चलता।
3: अरे राजेश भैया, आप उसे हाथ क्यों मिला रहे थे? उसे पिछले महीने से टीबी है।
1: 2 हफ्ते तक लगातार दवा खाओ ना तो टीबी फैलने का खतरा तो बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। और रही बात हाथ मिलाने की, गले मिलने की, शौचालय इस्तेमाल करने की, बर्तन खाना बांटने की, उससे टीबी नहीं फैलता।
4: टीबी हारेगा देश जीतेगा।
5: किसी को कुछ बोलने से पहले 100 बार सोचें। और अगर आपको लग रहा है कि हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम 100 बार सोचें, एक बार यही सोच लो कि जो भी कहने जा रहे हैं, अगर वो किसी ने हमसे कहा तो हमें क्या करना।
6: कहाँ चले?
7: वही सब।
6: हमको मंडी जाना है। अच्छा क्या देख रही हो? अरे दहेज में स्कूटर आया है, ये बात पे इतराना जरूरी नहीं है, हमारा काम जरूरी है। अरे 4 क्लास कहाँ पढ़ लिए, भाव खा रही हो? अंदर जाओ।
8: भाव कहाँ खा रहे, भाव तो दिए
6: है।
8: दहेज दिए है मतलब भाव दिए, खरीद लिया है आपके बेटे को। इज्जत से पूछेगा तो मिलेगा यूज करने, स्कूटर भी और बेटा भी।
9: पढ़ेगी बेटी तभी तो बढ़ेगी बेटी।
10: सूरज।
11: हाँ बोल।
10: कल मैंने तेरे बेटे को कुछ लड़कों के साथ देखा है, वो लड़के ठीक नहीं है, नशे वशे के चक्कर में कहीं फंस गए।
11: तुझे नहीं लगता तू मेरे बेटे को बदनाम कर रहा है?
12: अक्सर जिंदगी की भागदौड़ में अपने ही पीछे रह जाते हैं। कई बार सच सामने दिख रहा होता है पर उसे सामना करने का समय नहीं होता, क्योंकि अगर उसने सच कबूल कर लिया तो समाज में नाक कट जाएगी। इस संकोच से हम सच को टाल देते हैं पर पूछना जरूरी है।
11: वैसे तो हर बाप इस सवाल का जवाब ना सुनना चाहेगा, पर अगर तू हाँ भी कहेगा तब भी तेरा बाप तेरा साथ देगा। नशा तो निकालने लगा।
12: याद रहे, समाज से नशे को खत्म करने की लड़ाई पहले आपके घर से शुरू होती है। आइए बनाएं नया भारत, नशा मुक्त भारत।
13: बेबी एक बात बताओ। शादी से पहले जो मैं आपसे बातें किया करता था, अब उनमें से कौन सी बात आपको सच लगती है?
14: वही जो आप किया करते थे।
13: कौन सी?
14: कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। जी श्रोताओं, और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने।

92.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये है आप सभी का अपना पसंदीदा रेडियो गुंजन धर्मशाला। और दोस्तों आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने।

92.2 MHz पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और श्रोताओं आप सभी इस समय कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ।

समय आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो गुंजन धर्मशाला। जी श्रोताओं, और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ।

सभी का अपना सामुदायिक रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ।

92.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये है आप सभी का अपना पसंदीदा रेडियो गुंजन धर्मशाला। और दोस्तों आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने।

92.2 MHz पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओ, आप सभी इस समय कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने, अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ।

समय आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो गुंजन धर्मशाला। जी श्रोताओं, और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने, अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ।

सभी का अपना सामुदायिक रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ।

0: दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दें अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAK+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 72 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर, भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंग फोर्ड और LinkedIn लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI, जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं, तो आज ही जाएं Apex Plus Point ऑथराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी कॉलेज रोड सिविल लाइन धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।
1: खुशी कौन नहीं चाहता, लेकिन किस कीमत पर? धूम्रपान महंगा पड़ता है। धूम्रपान आपके लिए हानिकारक है और आपके चाहने वालों के लिए भी। धूम्रपान पड़ेगा महंगा।
0: नमस्कार दोस्तों, चुनावी चर्चा की चौपाल अब सजेगी आपके अपने रेडियो गुंजन पर। पंचायती राज और स्थानीय निकाय चुनाव की हलचल तेज है। ग्राम स्वराज के लिए काबिल प्रतिनिधि चुनने का वक्त आ गया है और इस खास अवसर पर रेडियो गुंजन धर्मशाला आप सभी के लिए लेकर आ रहा है विशेष कार्यक्रम चुनाव संवाद। इस कार्यक्रम में हम आपके क्षेत्र के उम्मीदवारों से सीधी बातचीत करेंगे और उठाएंगे आपके मुद्दे, आपके सवाल। क्या आप चाहते हैं कि आपके क्षेत्र के उम्मीदवार इस मंच पर आएं? क्या आपके मन में है कुछ सवाल जिनका जवाब आप जानना चाहते हैं? तो देर किस बात की, अभी अपने सवाल और अपने क्षेत्र के उम्मीदवार का नाम हमें भेजें व्हाट्सएप या SMS के माध्यम से। हमारा नंबर रहेगा 7018117019701. आइए बने एक जागरूक नागरिक, क्योंकि आपका वोट आपकी आवाज़ है।

0: जागो धर्मशाला वासियों जागो,
1: क्योंकि हमारा शहर हमारी जिम्मेदारी है।
0: इस बार चुनाव में केवल वोट न दें, बल्कि धर्मशाला का बेहतर भविष्य चुनें। मतदान करने से पहले कुछ खास बातों पर गौर करें।
1: क्या आपके वार्ड में सड़कें, साफ पानी, कूड़ा प्रबंधन और स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था दुरुस्त है? नगर निगम के पिछले कार्यों की जांच करें और तथ्यों के आधार पर ही निर्णय लें।
0: उम्मीदवार की योग्यता देखें। हमें ऐसा प्रतिनिधि चाहिए जो ईमानदार और पारदर्शी हो, जनता के प्रति जवाबदेह हो, विकास और पर्यटन के प्रति समर्पित हो।
1: याद रखें, लापरवाही में लिया गया एक गलत फैसला 5 साल का पछतावा बन सकता है। जाति, धर्म या किसी प्रलोभन में बिल्कुल ना आए, केवल योग्यता और विकास को ही वोट दें।
0: जी बिल्कुल, आपका एक वोट धर्मशाला को स्वच्छ, सुंदर और समृद्ध बना सकता है।
1: तो बिल्कुल, सबसे पहले सोचे, जांचे, परखे
0: और फिर अपना कीमती वोट देकर धर्मशाला को सवारे।
2: गुड्डी, किससे चैटिंग चल रही है?
3: मामा, नो शेयरिंग।
2: कोई स्पेशल? हाँ, हाँ, बैंक अकाउंट डिटेल्स, केवाईसी के लिए 10 मिनट दीजिए।
3: कौन था?
2: बैंक, केवाईसी अपडेट के लिए अकाउंट नंबर, पिन और ओटीपी मांगा है।
3: और आप मान गए? जब हम अपनी पर्सनल बातें हर किसी के साथ शेयर नहीं करते, तो अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स क्यों शेयर करेगा?
2: स्मार्ट गर्ल।
3: याद रहे मामा, डिजिटल लेन देन के लिए किसी को भी अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स ना दे। OTP और पिन नंबर तो कभी नहीं, हमेशा भरोसेमंद नेटवर्क का ही इस्तेमाल करें।
4: अपने जीवन की जो लगाम है उसे खुद पकड़ के रखना है। आप क्या पढ़ना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो, किस तरीके से अपने जीवन को जीना चाहते हो, उस एस्पिरेशन को आप खुद सोचो और खुद उसके लिए ये सोचो कि आप उस एस्पिरेशन को पाने का क्या रास्ता है।
5: जी मम्मी जी, नहीं, हम आगे से कहीं नहीं जाएंगे। ठीक है, ओके।
3: क्या हुआ?
5: अरे कुछ नहीं, मम्मी का कॉल था, बोल रहे थे तुम लोग बेफजूल के खर्चे बहुत ज्यादा करने लग गए हो, हर दूसरे दिन बाहर घूम रहे होते हो, बाहर मूवी देख रहे होते हो, कभी खाना खा रहे होते हो। बोल रहे खर्चों पे थोड़ा कंट्रोल करो, पैसे पेट पे नहीं उगते।
3: क्या वो ऐसे कैसे बोल सकते हैं? हम दोनों की शादी हो चुकी है, जहाँ हमारा दिल करे हम वहाँ जा सकते हैं, जो मन चाहे वो खा सकते हैं। मुझे ना उनकी यही बात नहीं पसंद, उन्हें हर चीज में टोकना होता है, हर चीज में इंटरफेयर करना होता है।
5: अरे यार, एक काम करो, ये लो फोन, तुम खुद ही अपने फोन
3: करके बोलो। हमारे माँ बाप नहीं अगर हमें समझाएंगे तो कौन समझाएगा, बताओ।

फ्रीक्वेंसी 91.2 पर श्रोता इस समय आप जुड़ चुके हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला। श्रोताओं, आज का गुड मॉर्निंग धर्मशाला कार्यक्रम लेकर हाजिर हुई है आपकी दोस्त सुमन। तो श्रोताओं, पूरे दो घंटे का सफ़र आपके साथ रहेगा। इस दो घंटे के सफ़र में करेंगे हम ढेर सारी बातें और जानकारियां आपके साथ साझा, और जानकारियों के साथ साथ हम हर बार अपने साथ लेकर आते हैं प्यारा सा संगीत। तो बिल्कुल देरी ना करते हुए कार्यक्रम का गीत आप तक पहुँचाते हैं। आप कहीं जाइएगा नहीं, जुड़े रहिएगा रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

चलो इस प्यारे से गीत के बाद कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला, और आज के कार्यक्रम को लेकर हाजिर हुई है आपकी दोस्त सुमन तोशो। तो कार्यक्रम में हम बात थोड़ी और आगे की करते हैं, क्योंकि जब तक आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक जीवन का सफ़र भी अधूरा रहेगा। और साथ ही साथ अगर अपने कार्यक्रम की बात करें तो अगर आगे नहीं बढ़ेंगे तो हमारा कार्यक्रम भी आगे की ओर नहीं बढ़ पाएगा। तो कहते हैं कलियों के खिलने के साथ, एक प्यारे एहसास के साथ, एक नए विश्वास के साथ आपका दिन शुरू हो, एक मीठी सी मुस्कान के साथ। जी हाँ श्रोताओ, मुस्कान जीवन में बेहद ज़रूरी है, और कहा जाता है कि जब तक चेहरे पर मुस्कान नहीं होगी तब तक जो है हम जो हमारे चेहरे को देखकर दूसरे के जीवन में भी खुशी नहीं आती है। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि कई लोगों का चेहरा हंसता खिलखिलाता हुआ नज़र आता है, जिसे क्या होता है कि जब हम उसके चेहरे को देखते हैं तो कहीं ना कहीं हम भी ये सोचते हैं कि अरे ये इतना खुश रहता है तो हम क्यों नहीं रह सकते हैं। जीवन में अगर टेंशन परेशानियों की बात करें तो वो किसे नहीं है। जिंदगी का में अगर जीना चाहते हैं उसे खुशी से जिए, हर पल मुस्कुराते हुए जिए। और वैसे भी आपने देखा होगा कि एक फोटो लेने के लिए हम कैसे अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हैं, तो क्यों ना उस मुस्कुराहट को जीवन में उसी तरह से बरकरार रखें और हमेशा जो है हंसते चेहरे के साथ हर किसी के साथ मिले तो बहुत ही अच्छा लगता है। और एक खुद को तो खुशी होती ही है, सामने वाला भी हमारा चेहरा देख कर कहीं ना कहीं पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ता है। तो फिलहाल इस समय हमें भी कार्यक्रम में आगे बढ़ना है और आपको सुनवाना है कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत। तो आप जुड़े रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

स्वतः माधुरी दीक्षित पर फिल्माया गीत आपने सुना, क्योंकि आज है माधुरी दीक्षित का जन्मदिन है। तो ढेर सारी शुभकामनाएं उनको जन्मदिन की, और इसीलिए हमने आपको सुनवा दिया ये प्यारा सा गीत। तो थोड़ा सा अब कार्यक्रम में आज के दिन की जानकारियां साझा करते हैं। 15 मई भारत और दुनिया के इतिहास में बहुत सारी जो है मायने रखता है। इस दिन एलिसन गारग्रीव्स नाम की महिला बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचकर इतिहास रचने वाली हैं। इसी दिन भगत सिंह और राजगुरु के साथ हंसते हंसते फांसी के फंदे पर लटकने वाले सुखदेव थापर का जन्म हुआ था। स्वादिष्ट फास्ट फूड को आप तक पहुंचाने वाले फास्ट फूड चैन मैकडॉनल्ड्स की शुरुआत 15 मई को ही शुरू हुई थी। साथ ही साथ रिच्ड और मॉरिस मैकडॉनल्ड्स नाम के दो भाइयों ने 15 मई 1940 को कैलिफोर्निया के सैन बर्नार्डिनो में छोटा सा रेस्तरां खोला था। आज वही छोटा सा रेस्तरां दुनिया की सबसे बड़ी फास्ट फूड चेन बन चुका है। 100 से ज्यादा देशों ने इसके 35,000 से ज्यादा आउटलेट्स हैं। तो श्रोताओं, ये तो थी जानकारियाँ। जानकारियाँ और भी हम आपके साथ साझा करेंगे। फिलहाल कार्यक्रम में रुकते हैं और आप सभी का करवाते हैं मनोरंजन कार्यक्रम के अगले प्यारे से गीत के साथ।

0: श्रोता, इस प्यारे से गीत के साथ कार्यक्रम में समय हो गया है प्रादेशिक समाचारों का।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है, प्रियंका ठाकुर से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रदेश में 17 मई को होने वाले नगर निगम चुनावों को लेकर प्रचार अभियान चरम पर। कांग्रेस व भाजपा अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार में जुटे। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के लिए भरे गए नामांकन पत्रों की वापस लेने का आज अंतिम दिन। आज ही उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह भी किए जाएंगे आवंटित। केंद्र सरकार ने अग्रिम प्राधिकार योजना के अंतर्गत सोने के आयात पर 100 किलोग्राम की सीमा की तय। तेल कंपनियों ने पेट्रोल व डीजल की कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की। और शिमला शहर में सफाई कर्मचारियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की दी चेतावनी। जिला प्रशासन ने हड़ताल पर जाने पर एस्मा लागू करने के दिए निर्देश। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में 17 मई को होने वाले नगर निगम चुनावों को लेकर प्रचार अभियान चरम पर है। नगर निगम चुनाव के लिए भाजपा व कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के नेता अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार में जुटे हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कल धर्मशाला में कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि कांगड़ा जिला को पर्यटन राजधानी घोषित किया गया है और यहां अधिक संख्या में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए सरकार लगातार कार्य कर रही है।
2: धर्मशाला नगर निगम का चुनाव हो रहा है, उस संदर्भ में माननीय रजनी पाटिल जी और हम घोषणा पत्र को जारी करने के लिए आज आपके बीच में आए हैं। घोषणा पत्र के अलावा जो शहर में विकास हो रहा है और जो शहर में विकास की नई प्रक्रिया जग्गे जी और जो पार्षद है उनके नेतृत्व में हमने शुरू की है, आने वाले समय में आप देखेंगे कि पूरा कांगड़ा जिला, जिसको हमने टूरिज्म कैपिटल घोषित किया था, यहाँ अधिक मात्रा में पर्यटक आए, कैसे आए, इस दृष्टिकोण से हमारी योजनाएं ने यहाँ स्वरूप ले लिया है और कुछ समय में ये जल्दी ही शुरुआत इसकी होने जा रही है। आज लेकिन चुनाव आ गए तो अभी चुनाव के समय उस कार्य को शुरू नहीं किया जा सकता। 17 के 17 वार्डों के लिए यानी कि 17 करोड़ रुपये स्वीकृत पहले हो चुका है और आने वाले समय में उस पर कार्य शुरू करेंगे। उसकी घोषणा हम इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि आचार संहिता भी लगी थी।
1: इस बीच पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं हमीरपुर से भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने धर्मशाला में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश की जनता कांग्रेस सरकार से निराश हो चुकी है और आने वाले चुनावों में इसका असर साफ दिखाई देगा। अनुराग ठाकुर ने विश्वास जताया कि आगामी नगर निगम नगर पर
3: ये चुनाव कांग्रेस के भ्रष्टाचार, निकम्मेपन, झूठी गारंटियां, उसके खिलाफ जनता के मन में जो रोष है वो निगम के चुनावों में दिखेगा। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हो, म्युनिसिपल काउंसिल हो या पंचायती राज के चुनाव, इन सब में एक गुस्सा जो जनता के मन में है वो फूट कर बाहर आएगा। चार शीट आज हमने जारी की है जहां कांग्रेस के घोटालों से लेकर उनके दिवालियापन के बारे में बताया गया है। हर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन काउंसिल, नगर परिषद के चुनाव हम सारे जीतने वाले हैं और बाकी जगह भी भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीतेगी।
1: पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के लिए भरे गए नामांकन पत्रों का आज नाम वापस लेने का अंतिम दिन है। आज ही उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह भी आवंटित किए जाएंगे। नामांकन पत्रों की जांच में 742 नामांकन रद्द किए गए हैं। अब 85,462 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। प्रदेश की 3,754 पंचायतों में 31,182 पदों के लिए 26, 28 और 30 मई को 3 चरणों में मतदान होगा। मंडी नगर निगम चुनाव प्रभारी एवं लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने भाजपा पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा को विकास से कोई सरोकार नहीं है और उसका एकमात्र उद्देश्य सत्ता हासिल करना है। मंडी शहर के विभिन्न वार्डों में चुनाव प्रचार के दौरान जनसभाओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा ने पिछले 5 वर्षों तक नगर निगम में सत्ता में रहने के बावजूद शहर के विकास के लिए कोई ठोस कार्य नहीं किया। वहीं दूसरी ओर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सत्ता का दुरुपयोग कर जनता और जनप्रतिनिधियों को प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान करने की अपील करते हुए कहा, जनता कांग्रेस को नगर निगम चुनाव में इसका करारा जवाब देगी। दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में आए उछाल के बाद तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। दिल्ली में अब पेट्रोल की कीमत 97.70 रुपए प्रति लीटर जबकि डीजल की कीमत 90.67 रुपए प्रति लीटर हो गई है। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला एक्सेंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। केंद्र सरकार ने अग्रिम प्राधिकार योजना के अंतर्गत सोने के आयात पर 100 किलोग्राम की सीमा तय कर दी है। यह योजना आभूषण निर्यातकों को शून्य शुल्क पर कच्चे माल का आयात करने की अनुमति देते हैं। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक सार्वजनिक सूचना में कहा कि इस योजना के तहत निर्यातक एक बार में अधिकतम 100 किलोग्राम सोना ही बिना किसी शुल्क के मंगवा सकते हैं। महानिदेशालय ने पहली बार आवेदन करने वालों के लिए विनिर्माण संयंत्रों का भौतिक निरीक्षण अनिवार्य कर दिया है ताकि उनकी परिचालन स्थिति और क्षमता का पता लगाया जा सके। पारदर्शिता बनाए रखने के लिए क्षेत्रीय कार्यालय को हर महीने इसकी रिपोर्ट निदेशालय को सौंपनी होगी। इससे पहले इस योजना के अंतर्गत सोने के आयात पर कोई सीमा नहीं थी। चंबा जिला के ऐतिहासिक तथा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मिंजर मेले की तैयारियां शुरू हो गई है। इस बार यह मेला 26 जुलाई से 2 अगस्त तक आयोजित किया जाएगा। मेले के सफल आयोजन को लेकर बैठक की अध्यक्षता करते हुए उपायुक्त मुकेश रेपसवाल ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि मेले की तैयारियों से संबंधित अपने अपने दायित्वों का ईमानदारी व गंभीरता से निभाए। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे चंबा जिला संवाददाता।
4: मिंजर मेला जिला चंबा की प्राचीन समृद्ध संस्कृति तथा समाज के विभिन्न वर्गों के आपसी मेल मिलाप आपसी भाईचारे का प्रतीक है। इस वर्ष भी ये मेला चंबा के ऐतिहासिक चौगान नंबर 1 में धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। मेले का मुख्य आकर्षण सांस्कृतिक कार्यक्रम रहते हैं और वर्ष भर इस मेले का जिला के लोगों को इंतजार रहता है। आकाशवाणी के लिए चंबा से विकास ठाकुर।
1: शिमला शहर में चल रहे स्वच्छता सर्वेक्षण के बीच सफाई कर्मचारियों ने अपनी लंबित मांगों और वेतन बढ़ोतरी को लेकर आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है। सफाई कर्मचारियों का कहना है कि वे लंबे समय से वेतन बढ़ोतरी व समान कानून लागू करने की मांग कर रहे हैं लेकिन सरकार की ओर से अब तक कोई फैसला नहीं लिया गया है। वहीं उपायुक्त एवं जिला दंडाधिकारी अनुपम कश्यप ने सहब कर्मचारियों पर हड़ताल पर जाने पर एस्मा लागू करने के निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होकर आगामी आदेशों तक प्रभावी रहेंगे। धर्मशाला के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में कल आईपीएल मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए पंजाब ने 8 विकेट पर 200 रन बनाए। 201 रन का लक्ष्य मुंबई ने 6 विकेट और 1 गेंद शेष रहते हुए हासिल कर लिया। तिलक वर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। धर्मशाला में आईपीएल सीजन का यह दूसरा मुकाबला था। अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर। आज समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है। अमर उजाला के शब्द है, फूड लाइसेंस पर बनाई नशीली दवाएं, कंपनी मालिक गिरफ्तार। पंचायत चुनाव में शिक्षकों की ड्यूटी लगाए जाने से प्रभावित होगी पढ़ाई, स्कूलों में 1 माह देरी से शुरू होगा सिलेबस, दैनिक भास्कर की एक खबर है। हिमाचल दस्तक ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के हवाले से लिखा है, धर्मशाला को पर्यटन व खेल हब के रूप में विकसित करना प्राथमिकता। दैनिक जागरण के शब्द है, सुक्खू बोले, पीएम की अपील से पहले ही हिमाचल कर रहा बचत। उच्च अधिकारी से सीधे पत्र व्यवहार करने वाले अधिकारी व कर्मचारियों पर होगी कार्रवाई, पंजाब केसरी की एक खबर है। नगर निकाय चुनाव का रण चरम पर, आज थमेगा प्रचार, शीर्षक से दैनिक सवेरा टाइम्स ने लिखा है, 4 नगर निगमों पर टिकी पूरे हिमाचल की नजर। मौसम से जुड़ी खबर को हिमाचल दस्तक ने शीर्षक दिया है, प्रदेश में आज और कल बारिश का येलो अलर्ट। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में 17 मई को होने वाले नगर निगम चुनाव को लेकर प्रचार अभियान चरम पर। कांग्रेस व भाजपा अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार में जुटे। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के लिए भरे गए नामांकन पत्रों को वापस लेने का आज अंतिम दिन। आज ही उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह भी किए जाएंगे आवंटित। केंद्र सरकार ने अग्रिम प्राधिकार योजना के अंतर्गत सोने के आयात पर 100 किलोग्राम की सीमा की तय। तेल कंपनियों ने पेट्रोल व डीजल की कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की और शिमला शहर में सफाई कर्मचारियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की दी चेतावनी। जिला प्रशासन ने हड़ताल पर जाने पर एस्मा लागू करने के दिए निर्देश। इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 11 बजे। नमस्कार।

श्रोताओ, इसी गूंज के साथ फिर से कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बहुत सारी बातें, बहुत सारी जानकारियां भी आपके साथ साझा करनी है। सन 1817 की बात करें तो समाज सुधारक देवेंद्रनाथ टैगोर का जन्म जो है आज ही के दिन हुआ था, और इसके साथ साथ 1907 में भगत सिंह और राजगुरु के साथ, जैसे हमने पहले भी बात की, हंसते हंसते फांसी के फंदे पर लटकने वाले सुखदेव थापर का जन्म भी हुआ था। जॉनी वॉकर को श्रोता हम कैसे भूल सकते हैं। 1923 में आज ही के दिन भारतीय हास्य अभिनेता का जन्म हुआ था। 1935 में मॉस्को मेट्रो लोगों के लिए खोला गया था, और साथ ही साथ जो है 1957 में ब्रिटेन के सप्लाई मंत्रालय ने घोषणा की थी कि प्रशांत महासागर के लिए किए गए श्रृंखलाबद्ध परीक्षणों के अंतर्गत पहले हाइड्रोजन बम का प्रशिक्षण किया गया था। 1967 में बॉलीवुड की धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित का जन्म हुआ था। तो खास हस्तियों के जन्म श्रोताओ आज के दिन हुए थे, और इन्हें हम कैसे भूल सकते हैं। ये हमारे जीवन में बहुत मान्यता रखते हैं, हमारा मनोरंजन कराते हैं, कहीं ना कहीं इनकी वजह से हम खुश होते हैं, हंसते हैं, मुस्कुराते हैं। जी हाँ, हंसी जीवन में श्रोताओ बेहद ज़रूरी होती है, और हंसते मुस्कुराते हुए हमें रहना चाहिए। 2002 की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने इराक पर प्रतिबंधों का संबोधन किया था। तो श्रोताओ, कार्यक्रम में और भी जानकारियां साझा करेंगे, फिलहाल कार्यक्रम में रुकते हैं और आप सभी का करवाते हैं मनोरंजन। कार्यक्रम के इस अगले पैरे से गीत के साथ तो आप जुड़े रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

0: श्रोताओं, इस प्यारे से गीत के बाद कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला अपनी दोस्त सुमन के साथ। तो श्रोताओं, कार्यक्रम में फिर से आगे बढ़ते हैं क्योंकि अभी बहुत सारी बातें, बहुत सारी जानकारियां हमें आप तक पहुंचानी है। तो इन्हीं जानकारियों के साथ आज बात करें अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस की। तो आज के दिन को हम मना रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस हर साल 15 मई को मनाया जाता है। इस दिन को वैश्विक स्तर पर मनाने का उद्देश्य परिवार का महत्व बताना और दूर होते हुए परिवार को जोड़ना है। इंसानों से लेकर जानवरों तक को परिवार की जरूरत होती है। परिवार ही होता है जो सुख दुख में अपने साथ खड़ा रहता है। जी हाँ श्रोताओ, बिल्कुल इसी तरह से होता है ना हम सभी के साथ, क्योंकि अकेला जिंदगी का सफर तय करना बड़ा मुश्किल होता है। जो लोग अकेले सफर तय करते हैं, ये जरा उनसे पूछ कर देखिए कि परिवार की अहमियत उनके जीवन में कितनी है। और विश्व परिवार दिवस लोगों को उनके परिवार के साथ साथ बिताए और घूमने फिरने एवं जश्न मनाने का एक अवसर भी प्रदान करता है। तो श्रोताओ, परिवार दिवस की और भी जानकारियां हम आपके साथ साझा करेंगे। फिलहाल कार्यक्रम में आप सभी का करवाते हैं मनोरंजन। कार्यक्रम के अगले प्यारे से गीत के साथ तो आप जुड़े रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।
1: क्या हो गया? क्या बात कर रहे हैं? क्या बात कर रहे हैं?

0: हाय
1: श्रोतो, इस प्यारे से गीत के बाद कार्यक्रम में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और इसी स्वागत के साथ श्रोतो हम कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और हमारी बात हो रही थी इंटरनेशनल यानी अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के इतिहास की बात करें तो साल 1994 में पहली बार इंटरनेशनल फैमिली डे मनाया गया था, लेकिन इसकी नींव 1989 में ही पड़ गई थी। साल 1989 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में परिवार के महत्व पर चर्चा की गई थी और इसके लिए एक दिन समर्पित करने पर भी विचार किया गया था। बाद में साल 1993 में UNGA ने एक संकल्प में फैमिली डे के लिए 15 मई की तारीख तय की थी। तब से हर साल इस दिन को मनाया जाता है। तो श्रोताओं, कार्यक्रम में और भी बातें और जानकारियां आपके साथ साझा करेंगे। फिलहाल कार्यक्रम में रुकते हैं और आप सभी का करवाते हैं मनोरंजन कार्यक्रम के अगले प्यारे से गीत के साथ। तो आप जुड़े रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।
2: तो फिर

शोध इस प्यारे से गीत के बाद कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला और आज के कार्यक्रम में मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त सुमन लेकर हाजिर हुई हूँ इस प्यारे से कार्यक्रम को। तो श्रोताओ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, कुछ जानकारियाँ आपके साथ साझा करते हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार का एंटी चिट्टा मॉडल एवं अपराधियों की कमर तोड़ में कामयाब हो रहा है। वही इस मॉडल की चर्चा अन्य राज्यों में भी होने लगी है। निकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के रीजनल ऑफिस में इस बारे में हिमाचल प्रदेश से रिपोर्ट मांगी गई है ताकि इस मॉडल पर अध्ययन करने के बाद अन्य राज्यों में भी लागू किया जा सके और चिट्टा कारोबार में संलिप्त अपराधियों पर प्रभावी ढंग से कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद चिट्टे की समस्या से निपटने के लिए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एक व्यापक योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। तो श्रोताओ ये तो थी हमारी जानकारियां। अपनी जानकारियों को थोड़ा सा देते हैं विराम और कार्यक्रम में आप सभी का करवाते हैं मनोरंजन। कार्यक्रम के इस अगले प्यारे से गीत के साथ तो आप जुड़े रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैंने बोला लड़की

श्रोताओं, पहले से गीत के बाद कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला, और आज के कार्यक्रम में मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त सुमन। तो हम परिवार की बात श्रोताओं कार्यक्रम में कर रहे थे। परिवार का हमारे जीवन में खास महत्व रहता है। परिवार हमारे जीवन का सबसे बहुमूल्य हिस्सा है। चाहे हम कितने भी व्यस्त क्यों ना हो, परिवार ही एक आधार है जो हमें मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक रूप से मजबूत बनाता है। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस को इसीलिए मनाते हैं ताकि परिवार की अहमियत को हम जान सके और अपने संबंधों को मजबूत कर सके। तो श्रोताओं, कार्यक्रम में और भी जानकारियां हम आपके लिए लेकर आए हैं, उन्हें भी आपके साथ साझा करेंगे। फिलहाल कार्यक्रम में आप सभी का करवाते हैं मनोरंजन। कार्यक्रम के अगले पैरे से गीत के साथ, तो आप जुड़े रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

इसी गूंज के साथ श्रोताओं कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अभी बहुत सारी बातें, बहुत सारी जानकारियां हमें आप तक पहुंचानी है। और खैर, अब थोड़ा सा और हम बात करते हैं कुछ जानकारियों की। तो उन जानकारियों में हम थोड़ा सा बात करते हैं। राज्य सरकार ने, एक प्रवक्ता ने आज यहाँ बताया है कि राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम ने मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के अंतर्गत आयोजित किए जा रहे बेब्स डाक बाजार 2026 के व्यूमिंग रूम सेक्शन में भाग लेने के लिए लघु फिल्म, वृत्त चित्र और एनिमेशन प्रोजेक्ट के ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। और साथ ही साथ श्रोताओं, प्रवक्ता ने बताया है कि व्यूमिंग रूम देश विदेश के फिल्म निर्माताओं को अपनी फिल्म अथवा पोस्ट प्रोडक्शन चरण में चल रही परियोजनाओं को फिल्म फेस्टिवल में आने वाले प्रोग्राम्स, वितरकों, विश्व स्तरीय वितरक एजेंट्स, निवेशकों तथा अन्य उद्योग खरीदारों के समक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करता है। उन्होंने कहा है कि विशेष मंच फिल्म निर्माताओं को फिल्म महोत्सव वितरण अवसरों, विश्व स्तरीय वितरण तथा फिनिशिंग फंड्स के लिए संभावित वैश्विक साझेदारों से सौहार्दपूर्ण वातावरण में रूबरू कराने में भी सहायक है। तो श्रोताओं, ये तो थी हमारी जानकारियाँ अभी आपके साथ साझा करना बाकी है। फिलहाल कार्यक्रम में रुकते हैं और आप सभी का करवाते हैं मनोरंजन कार्यक्रम के सगले प्यारे से गीत के साथ। तो आप जुड़े रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

श्रोताओ, इस समय आप जुड़े हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला। और आज का कार्यक्रम लेकर हाजिर हुई है श्रोताओ, आपकी दोस्त सुमन। तो श्रोताओ, कार्यक्रम में हम फिर से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जीवन में आगे बढ़ना बेहद ज़रूरी है। जब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक जीवन में तरक्की भी नहीं कर पाएंगे। तो तरक्की पाने के लिए जानकारी बेहद ज़रूरी होती है, आसपास की जानकारियाँ भी ज़रूर हमें पता होनी चाहिए। और जानकारियों की बात हो रही है तो क्यों ना जानकारी ही आपके साथ साझा कर लेते हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी, नगर निकाय और साथ ही साथ उपायुक्त कांगड़ा हेमराज भैरवा ने आदेश जारी कर नगर निकाय चुनावों में मद्देनज़र मतदान केंद्रों के आसपास प्रचार गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया है। ये आदेश हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिकारी 1994 तथा हिमाचल प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1994 के प्रावधानों के तहत जारी किए गए हैं। जारी आदेशों के अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जिला कांगड़ा में नगर निकाय चुनावों के लिए 17 मई 2026 को सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतदान आधारित किए जा रहे हैं। वहीं नगर परिषद और नगर पंचायत के मतगणना मतदान समाप्ति के तुरंत बाद संबंधित मुख्यालय पर होगी, जबकि नगर निगम की मतगणना 31 मई 2026 को 9 बजे से संबंधित नगर निगम मुख्यालय में आयोजित की जाएगी। आदेशों के तहत किसी भी मतदान केंद्र तथा उसकी 100 मीटर के दायरे में वोट के लिए मतदाताओं को प्रभावित करने, किसी उम्मीदवार के पक्ष अथवा विपक्ष में प्रचार करने तथा चुनावी संबंधी पोस्टर नोटिस प्रदर्शनी करने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। तो श्रोताओ, ये तो थी हमारी जानकारी। अपनी जानकारियों को फिर से कार्यक्रम में थोड़ा सा देते हैं विराम और एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का अगला फिर ऐसा गीत। तो आप जुड़े रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

श्रोताओं, इस समय आप जुड़े हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला। श्रोताओं, आज का गुड मॉर्निंग धर्मशाला कार्यक्रम लेकर हाजिर हुई है आपकी दोस्त। तो कार्यक्रम में हम बात कर रहे थे परिवार के बारे में। आज के डिजिटल युग में जहाँ मोबाइल, सोशल मीडिया और इंटरनेट हमारे जीवन का बड़ा हिस्सा लेता जा रहा है, वहीं परिवार के साथ सच्चा जुड़ाव कभी कभी चुनौतीपूर्ण भी होता जा रहा है, जिससे पारिवारिक बातचीत और समय कम होता है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के अवसर पर ये ज़रूरी है कि परिवार से जुड़ने के स्मार्ट तरीके हम अपनाएं। छोटे छोटे कदम, जैसे एक दूसरे के साथ भोजन करना, डिजिटल डिटॉक्स करना, साझा गतिविधि करना, खुली बातचीत करना और परिवार को मजबूत और खुशहाल बनाने में मदद करता है। और नो गैजेट जोन को अपना कर भी हम थोड़ा सा परिवार को समय दे सकते हैं। तकनीकी के जुड़ाव का जरिया बनाया जा सकता है, डिजिटल शिष्टाचार का पालन किया जा सकता है और ये डिजिटल युग में पारिवारिक रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए कुछ प्रभावी तरीकों को भी अपनाया जा सकता है। घर में कुछ स्थान और समय ऐसे होने चाहिए जहाँ मोबाइल या लैपटॉप का प्रवेश जो है वर्जित हो। जब हम अपनों के साथ बैठे हों तो इन चीज़ों को ज़्यादा अहमियत नहीं देनी चाहिए। अगर ज़रूरी है तो अपनों से दूर रहकर इन कामकाज को निपटाया जा सकता है। और जब अपनों के साथ बैठे हैं तो शुद्ध अपनों को ही टाइम देना चाहिए। अगर हम किसी के सामने ज़्यादा मोबाइल या लैपटॉप का इस्तेमाल कर रहे हों तो उस समय ऐसा लगता है कि जैसे वो हमें महत्व न देकर अपने कामकाज में व्यस्त हैं। इसलिए छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखें, हमें जीवन में आगे बढ़ना है और हमें भी श्रोताओं फिलहाल आगे बढ़ना है और अपने श्रोताओं को यानी आपको सुनवाना है कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत। तो आप जुड़े रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

0: श्रोता, इस प्यारे से गीत के बाद कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। कार्यक्रम में समय आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला। श्रोता कहते हैं, परिवार हमारा सहारा होते हैं। जो लड़खड़ाने और गिरने पर हमें थामे रखता है, वही हमारा आत्मविश्वास और भरोसे का सच्चा स्रोत होता है। परिवार के बड़ों से मिलने वाली सीख हमारे जीवन के अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। उनके द्वारा दी गई सीख जीवन में हमारे काम आती है और बड़े बुजुर्ग हमें हमेशा धैर्य, क्षमा, करुणा, दृढ़ता, प्रेम और सहनशीलता जैसे अद्भुत मूल्य सिखाते हैं। उनकी सीख इतनी ज़रूरी और इतनी महत्वपूर्ण होती है कि उनके जाने के बाद भी वो बातें और वो सीख हमें याद आती हैं।
1: काश कोई गाइड।
0: श्रोता, इस समय आप सुन रहे हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम में समय हो गया है प्यारे से गीत का, तो आइए सुनते हैं इस गीत को।

इसी गूंज के साथ शोध कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ और जानकारियों की। जिला निर्वाचन अधिकारी नगर निकाय तथा उपायुक्त हेमराज भैरवा ने आदेश जारी कर नगर निकाय चुनावों के मद्देनजर मतदान केंद्रों के आसपास प्रचार गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया है। ये आदेश हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिकारी नगर निगम अधिनियम 1994 तथा हिमाचल प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1994 के प्रावधान के तहत जारी किए गए हैं। जारी आदेश के अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जिला कांगड़ा के नगर निकाय चुनावों के लिए 17 मई 2026 को सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतदान धारित किए जाएंगे। वहीं नगर परिषदों और नगर पंचायतों में मतगणना मतदान समाप्ति के तुरंत बाद संबंधित मुख्यालय पर होगी। तो श्रोताओं, ये तो थी हमारी जानकारियां। अपनी जानकारियों को थोड़ा सा देते हैं कार्यक्रम में विराम और आप तक पहुंचाते हैं कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत। आप जुड़े रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

श्रोता, इस प्यारे से गीत के बाद कार्यक्रम में फिर से वापस आते हैं, क्योंकि अभी बहुत सारी बातें, बहुत सारी जानकारियां आपके साथ साझा करनी है। इन जानकारियों में श्रोता, आज हम परिवार की बात कर रहे थे कि परिवार का हमारे जीवन पर बहुत ही ज़्यादा अहमियत है। यूँ कह सकते हैं कि परिवार एक बगिया है जहाँ हम मिलजुल कर बड़े प्यार भाव से रहते हैं और एक दूसरे के सुख दुख में एक दूसरे का साथ देते हैं। अगर किसी को कोई परेशानी हो तो उसको हल करते हैं, उसका निपटारा करते हैं, और परिवार से हम लोगों की एक बहुत बड़ी सपोर्ट मिलती है। परिवार हमारा सहारा होता है। और पहले की बात की जाए श्रोताओं, तो पहले संयुक्त परिवार हुआ करते थे। परिवार पर कोई भी खुशी का माहौल हो या कोई दुख का माहौल हो तो बाहर वालों को ज़रूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि संयुक्त परिवार हुआ करता था। उसके मुकाबले आजकल एकल परिवारों में हम लोग रहा करते हैं, और एकल परिवारों में सबसे पहले समस्या आती है तो छोटे बच्चों को पालने की आती है। पहले के मुकाबले में अब थोड़ा सा बच्चे पालना मुश्किल हो गया है, और पहले जो है संयुक्त परिवार में बच्चे हाथों हाथ पल जाया करते थे और पता भी नहीं चलता था, और बहुत सारे रिश्तों को वो पहचानते थे, जानते थे, बहुत सारे रिश्तों का प्यार लेते थे और बहुत सारी सीख अपनों से मिलती थी। अब कहीं जाकर वो एकल परिवारों में रहते हुए बहुत सारी पीछे हो गए हैं। एक उनकी हेजिटेशन उनमें बढ़ गई है, एक झिझक बच्चों में होती है, वो जल्दी से घर किसी के आने पर उनसे घुलते मिलते नहीं हैं। तो बहुत सारे फायदे के साथ साथ नुकसान भी श्रोताओं एकल परिवारों में आने का हुआ है। एकल परिवारों की भी कहीं ना कहीं मजबूरी रहती है कि नौकरी पेशे के लिए हम लोगों को बाहर जाना पड़ता है, और जी हाँ, ये काम भी बेहद ज़रूरी है, तो कामकाज तो करने ही पड़ते हैं, और कामकाज के साथ हमें फिर से चलना है थोड़ा सा आगे। आप समझ चुके होंगे मेरा इशारा कहाँ, फिर आपको लिए चलते हैं थोड़ा सा संगीत की दुनिया में। तो आइए मिलजुल कर इंजॉय करते हैं कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत। तो आप जुड़े रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

श्रोतो, इस गीत के बाद फिर से कार्यक्रम में हम वापिस आते हैं और हम बात परिवार की कर रहे थे। एक इंसान का परिवार उसके लिए संसार होता है और हम अपने जीवन में जो कुछ भी प्राप्त करते हैं वह परिवार के सहयोग और समर्थन स्वरूप से ही प्राप्त करते हैं। हमारा पालन पोषण ही हमारा परिवार करता है और वही हमारी प्राथमिकता को भी समझता है। साथ ही साथ जब हम समक्ष नहीं हो पाते हैं तब वो हमारी ज़रूरतों को की पूर्ति करता है और वो भी निस्वार्थ भाव से। परिवार की भूमिका की श्रोता बात हो रही है तो माता पिता हमारा पालन पोषण करते हैं, ब्रश करने तथा जूते कफीता बांधने से लेकर पढ़ा लिखा कर समाज का एक शिक्षित व्यस्क बनाते हैं। भाई बहन के रूप में घर में हमें दोस्त भी मिलते हैं जिसका आकरण हमारी अनेक लड़ाइयाँ होती हैं, प्यार भी होता है, भावनात्मक सहारा और सुरक्षा भाई बहन से बेहतर और कोई नहीं दे सकता है। घर के बड़े बुजुर्गों के रूप में दादा दादी नाना नानी बच्चों पर सर्वाधिक प्रेम न्योछावर करते हैं। कटु है पर सत्य है, व्यक्ति पर परिवार का साया न हो तो व्यक्ति अनाथ कहलाता है। इसलिए समृद्धि या गरीब परिवार का होना आवश्यक नहीं पर व्यक्ति के जीवन में परिवार का होना अति आवश्यक है। तो श्रोताओ, ये तो थी ढेर सारी जानकारियाँ। अपनी जानकारियों को थोड़ा सा देते हैं विराम और सुनवाते हैं आपको कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत। तो आप जुड़े रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में हमने ढेर सारी जानकारियां आपके साथ साझा की हैं। उम्मीद को है आपको पसंद भी आई होंगी। तो अब चलते चलते आपको सुनवा देते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत।

0: दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दें अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAK+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 72 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर, भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंग फोर्ड और लिंक्डइन लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI, जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं, तो आज ही जाएं FX+ Point ऑथोराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी, कॉलेज रोड, सिविल लाइन, धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।
1: खुशी कौन नहीं चाहता, लेकिन किस कीमत पर? धूम्रपान महंगा पड़ता है। धूम्रपान आपके लिए हानिकारक है और आपके चाहने वालों के लिए भी। धूम्रपान पड़ेगा महंगा।
0: नमस्कार दोस्तों, चुनावी चर्चा की चौपाल अब सजेगी आपके अपने रेडियो गुंजन पर। पंचायती राज और स्थानीय निकाय चुनाव की हलचल तेज है। ग्राम स्वराज के लिए काबिल प्रतिनिधि चुनने का वक्त आ गया है और इस खास अवसर पर रेडियो गुंजन धर्मशाला आप सभी के लिए लेकर आ रहा है विशेष कार्यक्रम चुनाव संवाद। इस कार्यक्रम में हम आपके क्षेत्र के उम्मीदवारों से सीधी बातचीत करेंगे और उठाएंगे आपके मुद्दे, आपके सवाल। क्या आप चाहते हैं कि आपके क्षेत्र के उम्मीदवार इस मंच पर आएं? क्या आपके मन में है कुछ सवाल जिनका जवाब आप जानना चाहते हैं? तो देर किस बात की, अभी अपने सवाल और अपने क्षेत्र के उम्मीदवार का नाम हमें भेजें व्हाट्सएप या SMS के माध्यम से। हमारा नंबर रहेगा 7018117018117091। आइए बने एक जागरूक नागरिक, क्योंकि आपका वोट आपकी आवाज़ है।

0: प्रति समर्पित हो।
1: याद रखें, लापरवाही में लिया गया एक गलत फैसला 5 साल का पछतावा बन सकता है। जाति धर्म या किसी प्रलोभन में बिल्कुल ना आए, केवल योग्यता और विकास को ही वोट दें।
0: जी बिल्कुल, आपका एक वोट धर्मशाला को स्वच्छ, सुंदर और समृद्ध बना सकता है।
1: तो बिल्कुल, सबसे पहले सोचे, जांचे, परखे
0: और फिर अपना कीमती वोट देकर धर्मशाला को सवारे।
2: गुड्डी, किससे चैटिंग चल रही है?
3: मामा, नो शेयरिंग।
2: कोई स्पेशल? हाँ, बैंक अकाउंट डिटेल्स, केवाईसी के लिए 10 मिनट दीजिए।
3: कौन था?
2: बैंक, केवाईसी अपडेट के लिए अकाउंट नंबर, पिन और ओटीपी मांगा है।
3: और आप मान गए? जब हम अपनी पर्सनल बातें हर किसी के साथ शेयर नहीं करते, तो अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स क्यों शेयर करेगा?
2: स्मार्ट गर्ल।
3: याद रहे मामा, डिजिटल लेन देन के लिए किसी को भी अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स ना दे। ओटीपी और पिन नंबर तो कभी नहीं, हमेशा भरोसेमंद नेटवर्क का ही इस्तेमाल करें।
4: अपने जीवन की जो लगाम है उसे खुद पकड़ के रखना है। आप क्या पढ़ना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो, किस तरीके से अपने जीवन को जीना चाहते हो, उस एस्पिरेशन को आप खुद सोचो और खुद उसके लिए ये सोचो कि आप उस एस्पिरेशन को पाने का क्या रास्ता है।
5: जी मम्मी जी, नहीं नहीं, हम आगे से कहीं नहीं जाएंगे। ठीक है, ओके।
6: क्या हुआ?
5: अरे कुछ नहीं, मम्मी का कॉल था, बोल रहे थे तुम लोग बेफजूल के खर्चे बहुत ज्यादा करने लग गए हो, हर दूसरे दिन बाहर घूम रहे होते हो, बाहर मूवी देख रहे होते हो, कभी खाना खा रहे होते हो। बोल रहे खर्चों पे थोड़ा कंट्रोल करो, पैसे पेट पे नहीं उठते।
6: क्या वो ऐसे कैसे बोल सकते हैं? हम दोनों की शादी हो चुकी है, जहाँ हमारा दिल करे हम वहाँ जा सकते हैं, जो मन चाहे वो खा सकते हैं। मुझे ना उनकी यही बात नहीं पसंद, उन्हें हर चीज में टोकना होता है, हर चीज में इंटरफेयर करना होता है।
5: अरे यार एक काम करो, ये लो फोन, तुम खुद ही अपनी मम्मी को फोन करके बोल दो ये सब।
6: हमारे माँ बाप नहीं अगर हमें समझाएंगे तो कौन समझाएगा बताओ?

नमस्कार दोस्तों, ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। मैं हूँ आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त सुरुचिका, हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम लेकर, गीत सुहाने नए पुराने।

दोस्तों बहुत ही प्यारा सा गीत आप सभी ने एंजॉय किया। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और फिर से चलते हैं एक प्यारे से गीत की तरफ।

आप सभी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं, गीत सुहाने नए पुराने, और आज के इस सफर को आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ।

दोस्तों आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 MHz पर अपना मन पसंद रेडियो कुंचन धर्मशाला और कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों आप सभी, गीत सुहाने नए पुराने इस प्यारे से सफर को आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और लेकर चलते हैं आप सभी को फिर से एक प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक की तरफ।

दोस्तों, नए पुराने गीतों का ये सफर आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से। आइए एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों, ये है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

दोस्तों बहुत ही प्यारा सा गीत आप सभी ने एंजॉय किया अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का ये अगला खूबसूरत सा गीत। आप सभी इसी तरह से एंजॉय करते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला, गूंज अपने पन की।

दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दें अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAAC A+।

0: मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540 प्लस टॉप कंपनियां और 1250 प्लस से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स। 72 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर। भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन। और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंग फोर्ड और LinkedIn लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग। हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा। घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI, जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं तो आज ही जाएं Apex Plus Point Authorized Admission Center नियर शर्मा बेकरी, कॉलेज रोड, सिविल लाइन, धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।
1: खुशी कौन नहीं चाहता, लेकिन किस कीमत पर? धूम्रपान महंगा पड़ता है। धूम्रपान आपके लिए हानिकारक है और आपके चाहने वालों के लिए भी। धूम्रपान पड़ेगा महंगा।
0: नमस्कार दोस्तों, चुनावी चर्चा की चौपाल अब सजेगी आपके अपने रेडियो गुंजन पर। पंचायती राज और स्थानीय निकाय चुनाव की हलचल तेज है। ग्राम स्वराज के लिए काबिल प्रतिनिधि चुनने का वक्त आ गया है और इस खास अवसर पर रेडियो गुंजन धर्मशाला आप सभी के लिए लेकर आ रहा है विशेष कार्यक्रम चुनाव संवाद। इस कार्यक्रम में हम आपके क्षेत्र के उम्मीदवारों से सीधी बातचीत करेंगे और उठाएंगे आपके मुद्दे, आपके सवाल। क्या आप चाहते हैं कि आपके क्षेत्र के उम्मीदवार इस मंच पर आएं? क्या आपके मन में है कुछ सवाल जिनका जवाब आप जानना चाहते हैं? तो देर किस बात की, अभी अपने सवाल और अपने क्षेत्र के उम्मीदवार का नाम हमें भेजें व्हाट्सएप या SMS के माध्यम से। हमारा नंबर रहेगा 7018170918117091। आइए बने एक जागरूक नागरिक, क्योंकि आपका वोट आपकी आवाज़ है।

0: जागो धर्मशाला वासियों जागो,
1: क्योंकि हमारा शहर हमारी जिम्मेदारी है।
0: इस बार चुनाव में केवल वोट न दें, बल्कि धर्मशाला का बेहतर भविष्य चुनें। मतदान करने से पहले कुछ खास बातों पर गौर करें।
1: क्या आपके वार्ड में सड़कें, साफ पानी, कूड़ा प्रबंधन और स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था दुरुस्त है? नगर निगम के पिछले कार्यों की जांच करें और तथ्यों के आधार पर ही निर्णय लें।
0: उम्मीदवार की योग्यता देखें। हमें ऐसा प्रतिनिधि चाहिए जो ईमानदार और पारदर्शी हो, जनता के प्रति जवाबदेह हो, विकास और पर्यटन के प्रति समर्पित हो।
1: याद रखें, लापरवाही में लिया गया एक गलत फैसला 5 साल का पछतावा बन सकता है। जाति, धर्म या किसी प्रलोभन में बिल्कुल ना आए, केवल योग्यता और विकास को ही वोट दें।
0: जी बिल्कुल, आपका एक वोट धर्मशाला को स्वच्छ, सुंदर और समृद्ध बना सकता है।
1: तो बिल्कुल, सबसे पहले सोचें, जांचें, परखें
0: और फिर अपना कीमती वोट देकर धर्मशाला को सवारे।
2: गुड्डी, किससे चैटिंग चल रही है?
3: मामा, नो शेयरिंग।
2: कोई स्पेशल? हाँ, हाँ, बैंक अकाउंट डिटेल्स, केवाईसी के लिए 10 मिनट दीजिए।
3: कौन था?
2: बैंक, केवाईसी अपडेट के लिए अकाउंट नंबर, पिन और ओटीपी मांगा है।
3: और आप मांग गए? जब हम अपनी पर्सनल बातें हर किसी के साथ शेयर नहीं करते, तो अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स क्यों शेयर करेंगे?
2: स्मार्ट गर्ल।
3: याद रहे मामा, डिजिटल लेन देन के लिए किसी को भी अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स ना दे। ओटीपी और पिन नंबर तो कभी नहीं, हमेशा भरोसेमंद नेटवर्क का ही इस्तेमाल करें।
4: अपने जीवन की जो लगाम है उसे खुद पकड़ के रखना है। आप क्या पढ़ना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो, किस तरीके से अपने जीवन को जीना चाहते हो, उस एस्पिरेशन को आप खुद सोचो और खुद उसके लिए ये सोचो कि आप उस एस्पिरेशन को पाने का क्या रास्ता है।
5: जी मम्मी जी, नहीं नहीं, हम आगे से कहीं नहीं जाएंगे। ठीक है, ओके।
3: क्या हुआ?
5: अरे कुछ नहीं, मम्मी का कॉल था, बोल रहे थे तुम लोग बेफजूल के खर्चे बहुत ज्यादा करने लग गए हो, हर दूसरे दिन बाहर घूम रहे होते हो, बाहर मूवी देख रहे होते हो, कभी खाना खा रहे होते हो। बोल रहे खर्चों पे थोड़ा कंट्रोल करो, पैसे पेट पे नहीं उगते।
3: क्या वो ऐसे कैसे बोल सकते हैं? हम दोनों की शादी हो चुकी है, जहाँ हमारा दिल करे हम वहाँ जा सकते हैं, जो मन चाहे वो खा सकते हैं। मुझे ना उनकी यही बात नहीं पसंद, उन्हें हर चीज में टोकना होता है, हर चीज में इंटरफेयर करना होता है।
5: अरे यार एक काम करो, ये लो फोन, तुम खुद ही अपनी मम्मी को फोन करके बोल दो ये सब।
3: क्या हो गया? हमारे माँ बाप नहीं अगर हमें समझाएंगे तो कौन समझाएगा बताओ।

0: नमस्कार दोस्तों, रेडियो गुंजन धर्मशाला में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सभी की अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल अच्छे हैं और अपनी सेहत का ध्यान बेहद अच्छे से आप सभी रख रहे हैं इस बदलते मौसम के मिजाज के साथ। दोस्तों, आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं आजकल इस बहुत ही गर्माए से माहौल में चुनाव संवाद, जिसमें कि हम बातचीत कर रहे हैं आपके क्षेत्र के उम्मीदवारों से, जो कि आप हमें सजेस्ट कर रहे हैं और आप ही के सजेशन पे हम उन्हें अपने इस मंच में बुला रहे हैं और आपके सवाल जो है रेडियो गुंजन धर्मशाला के माध्यम से उन तक पहुंचा रहे हैं और सवालों के जवाब रेडियो के ही माध्यम से आप सभी तक पहुंचाने की कोशिश है। तो उम्मीद है कि आप सभी को अपने सवालों के जवाब बिल्कुल सही और जिस तरह से आपकी उम्मीदें हैं उसी तरह से मिल रहे होंगे। तो आज का ये कार्यक्रम भी आप सभी के लिए खास रहने वाला है, बल्कि बहुत ही खास रहने वाला है, क्योंकि आज भी हमारे साथ बहुत खास मेहमान जो है आपके सजेशन पे जुड़े हुए हैं। तो आइए स्वागत करते हैं सर का और जानते हैं कि कौन से वार्ड के मेंबर हैं और कौन से पद के लिए वो इस बार जो है लड़ रहे हैं। आप सभी की जरूरतों को या आप सभी की समस्याओं का समाधान करने के लिए, आपके सवालों के जवाब आप सभी तक पहुँचाने के लिए। तो दोस्तों, आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ उपस्थित है वार्ड नंबर 17 से सुरेश कुमार पप्पी प्रधान जी। तो उन्हीं के साथ आज की ये खास बातचीत रहने वाली है, तो जरूर जुड़े रहिए हमारे साथ इस खास बातचीत में और अपने सवालों के जवाब जानने के लिए। तो स्वागत है सर आपका हमारी इस खास बातचीत में रेडियो गुंजन धर्मशाला में।
1: नमस्कार। पहले सबसे पहले रेडियो गुंजन का धन्यवाद जिन्होंने आज मेरे को यहाँ बुलाया है। मैं धर्मशाला नगर निगम वार्ड नंबर 17 से खड़ा हूँ और ये सिद्धवाड़ी और सिद्धपुर में पड़ता है
0: जी। और आप नगर निगम पार्षद के लिए जो है वो लड़ रहे हैं जी। तो जैसा कि हम जानते हैं सर कि आपका जो है ये सफर बहुत संघर्ष भरा भी रहा है, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस आपके साथ यहाँ तक पहुँचे हैं, क्योंकि आप जितना हम जानते हैं कि आप 3 बार जो है प्रधान पद पे जो है रह चुके हैं और अभी भी मतलब कि प्रधान पद पे हैं। तो आपका

0: वाले जो मेरे पास घर में आए, उन्होंने बोला कि आप यहाँ से इलेक्शन लड़ो, क्योंकि हमें पिछले कुछ सालों से जो छोटे छोटे काम है हमारे नहीं हो रहे हैं, तो उनको कामों के लिए उन्होंने मेरे को बोला और मैं सारा नंबर वार्ड से अब खड़ा हूँ।
1: जी बिल्कुल दोस्तों, तो जैसे कि सर ने बताया कि वार्ड नंबर 17 से जो है लोगों की उम्मीदों पे ही सर जो है आगे पहुंचे हैं, यहाँ तक पहुंचे हैं, क्योंकि लोगों का मानना है कि सर का बहुत अच्छा सहयोग उनके साथ रहा है और उसी सहयोग के लिए वो आगे इनको लेकर आना चाहते हैं। तो आप सभी को बता दें दोस्तों कि 2000 से लेकर 2010 तक सर का प्रधान पद के लिए जो है समय रहा, और उसके बाद 2022 से 26 तक जो है वो भी प्रधान पद में ही सर अपनी सेवाएं जो है वो लोगों के लिए दे रहे हैं, अपने समाज के लिए अपना योगदान जो है वो भरपूर मात्रा में दे रहे हैं। तो सर, इस सफर में लोगों का सपोर्ट आपको फुल ऑन रहा या कुछ प्रॉब्लम्स भी आई?
0: इसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आई, लेकिन लोगों का इतना सपोर्ट है कि वो खुद ही मेरे साथ जो है कन्वेंशन के लिए जा रहे हैं, क्योंकि कुछ जो एरिया बाहर चला गया था पंचायत से और नगर निगम में चला गया था, वहाँ कुछ ऐसी बड़ी बड़ी प्रॉब्लमें थी जो हल करने के लिए ज़रूरी थी। तो उन्होंने जब मेरे को आके बात की है, तो जैसे आपको पता होगा कि ये जो रावर स्टेडियम जो है,
1: जी
0: पिछले 10-15 साल से इसके लिए जो है संघर्ष हम कर रहे हैं, लेकिन एरिया बाहर होने के नाते हम कुछ कर नहीं पाए। मैं चाहता हूँ कि अगर लोग मेरे को दोबारा मौका देते हैं, तो इस जोरावर स्टेडियम को इतना अच्छा बनाएंगे कि ताकि बच्चों के लिए यहाँ पर खेलने के लिए बैडमिंटन का हो जाए, वॉलीबॉल का हो जाए, और कुछ जो खेलने यहाँ बच्चों के लिए है वो कर जाए। क्योंकि आपने देखा होगा कि यहाँ जितना भी एरिया है धर्मशाला में, मेरे को लगता है कि 2-3 जगह ही हैं जहाँ पर ये ग्राउंड बचे हैं। आप पिछले 2-2.5-3 साल में भी हमने कोशिश करी थी कि नगर निगम के साथ मिलकर इसका ग्राउंड को कुछ बनाया जाए, लेकिन बीच में कुछ जो कन्वेंशन सेंटर बनने के लिए यहाँ ये जगह चयन की थी, तो जब ये यहाँ काम लगने लगा तो हमने संघर्ष करके उसको बचाने के लिए, हमने सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू से 2-3 बार मैं और देवेंद्र जगी मिले कि यहाँ पे ग्राउंड को ग्राउंड रहने दें और कन्वेंशन सेंटर कहीं और ले जाएं। तो वो जो 2-2.5 साल हमारे इसमें लगे कि हम उसको वापस DC लैंड में लेके आएं, तो क्योंकि ये जो लैंड थी वो टूरिज्म में चली गई थी, जब टूरिज्म में चली गई थी तो DC लैंड वाले ये हम कुछ नहीं कर पा सकते थे। अभी ये जो है दोबारा DC लैंड आ गई है, यहाँ पर मतलब गवर्नमेंट की लैंड है, अब हम नए तरीके से यहाँ पर जो है इस ग्राउंड की रेख देख करने के लिए बनाएंगे, ताकि आने वाले टाइम में जो बच्चे यहाँ के जो गलत नशे की तरफ जा रहे हैं या गलत आदतें जो बढ़नी है उससे बचाया जाए। क्योंकि आपने देखा होगा कि यहाँ पिछले 1 साल जब ये गवर्नमेंट की लैंड आ गई है, तो 2-3 महीने पहले भी यहाँ पे लाइट्स जो है नगर निगम को बोल के लगवाई हैं, 8-10 लाइटें लगी हैं, 10 और के लिए बोला हुआ है। उन लाइटों के लगने से आपने देखा होगा कि रात शाम को 8-8 बजे तक जो बच्चे जो वहाँ खेलते रहते हैं और थोड़ा सा नशे से दूर हो रहे हैं।
1: तो सर, जैसे कि आपने कहा कि पहले जब पंचायत तौर पे काम किया आपने और अभी नगर निगम में चेंजेस, तो कितना बदलाव है ये, मतलब कि इक्वली है या बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस इसमें हैं?
0: डिफरेंसेस तो हैं कि पंचायत में तो आपने देखा होगा कि छोटी-छोटी गलियां होती हैं, छोटे-छोटे काम होते हैं, लेकिन नगर निगम में बड़े काम किए जा सकते हैं, जैसे ग्राउंड का हो गया और जो यहाँ पे रास्ते हैं रास्तों को हो गया, कूलें जो इतनी बड़ी बड़ी कूलें जिसमें लाखों पैसा लगना है, एक एक कूल का भी है जो 15-15, 20-20 लाख से लगनी है, तो वो नगर निगम
1: नगर
0: में ही
1: निगम
0: करवा
1: में,
0: सकते हैं। पंचायतों में तो आपको पता है ये फंड कम आता है, उसमें तो छोटे छोटे काम हो सकते हैं, लेकिन बड़े काम अगर करने हो तो नगर निगम में आना मैंने सोचा बहुत ज़रूरी है, और
1: जी
0: नगर निगम में आके मैं लोगों की पूरी सेवा करूंगा। और मेरे को पता है कि लोगों को भी विश्वास है कि इन्होंने पहले भी काम किया है, अब भी करेंगे, और लोगों की सेवा हम करते आए हैं, करते रहेंगे।
1: इस सफर में आपने मतलब कि लोगों की उम्मीदों पे खरा उतरने की कोशिश की है, और किस हद तक आपने लोगों की समस्याओं को सुलझाया है? कुछ कई बार होता है कि हर किसी के थॉट्स एक जैसे नहीं हो पाते हैं, कुछ मिसमैच भी हो जाते हैं, तो कुछ बातें बनने के बजाय बिगड़ भी जाती है, तो उसमें से आपको किस तरह से जूझना पड़ा, या एक मतलब सिंपली रहा ऐसी एक्सपीरियंस आपका हो?
0: देखो, इसमें तो मैं यही मानता हूँ कि जो मेरा पिछले 30-35 साल का एक्सपीरियंस है वो ही काम आ रहा है, चाहे जितना मर्जी छोटे से छोटा काम हो, बड़े से बड़ा काम हो, वो हमें पता है कि कहाँ से होगा कैसे होगा, वो हम करवाते हैं। और लोगों को भी पता है कि अगर ये आएंगे तो ये जितना मर्जी बड़ा काम होगा करवा देंगे, एक्सपीरियंस ही मेरा जो है वो आगे आने वाले टाइम में काम करेगा।
1: और आपको

0: वहां तक लेकर आया
1: लेकर
0: है।
1: आया।
0: जी बिल्कुल। तो सर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और उसके बाद हम फिर से अपनी इस खास बातचीत पे आएंगे और कुछ सवालों के जवाब जो कि लोगों के सवाल हैं वो आप तक पहुंचाएंगे और आप उनके जवाब जो है हमारे दोस्तों तक पहुंचाएंगे। तो दोस्तों इस छोटे से ब्रेक के बाद मिलते हैं आप सभी के साथ और आप सभी इंजॉय कर रहे हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला से ये बहुत ही खास कार्यक्रम चुनाव संवाद।

0: दोस्तों, इस छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी के साथ जुड़ चुके हैं और इस बहुत ही खास बातचीत को आप सभी सुन रहे हैं अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से। तो दोस्तों, आज की हमारी इस खास बातचीत में जुड़े हैं सुरेश सर जी। तो आइए अपनी बातचीत को बढ़ाते हैं आगे और जानते हैं कि ये और किस तरह से प्लानिंग जो है कर रहे हैं। एक पहले ये प्रधान पद पे थे, लेकिन प्रधान पद से एक पार्षद पद पे जाना एक बहुत डिफिकल्ट काम है और अलग अलग रोल है, तो आप इस पे किस तरह से प्लान कर रहे हैं? मतलब लोगों का प्यार तो आपके साथ है ही, लेकिन आपका एफर्ट्स इस पे किस तरह से रहने वाले हैं? कुछ ऐसे मुख्य आपकी प्लानिंग, कुछ बिंदु मतलब कि जो बड़े बड़े से पॉइंट्स हैं जो आप दोस्तों तक रखना चाहेंगे।
1: देखो, मैंने पहले भी आपको बताया कि इसमें सिर्फ एक्सपीरियंस काम आएगा
0: जी।
1: मेरे लिए कोई नई चीज नहीं होगी पार्षद बनना और पार्षद बन के काम करना, क्योंकि मेरे को एक्सपीरियंस इतना है कि मैं जो मेरे यहाँ से जो पहले पार्षद थे उनके साथ काफ़ी टच रहा हूँ, उनसे मेरे को पता है कि कौन से काम कैसे करवाने कैसे नहीं, क्योंकि उनसे मैंने काफ़ी कुछ सीख लिया है
0: जी।
1: तो मेरे लिए कोई नई चीज़ नहीं होगी कि हाँ जी पार्षद बनकर तो कैसे मीटिंग्स करनी है, कैसे वो करना है, वो उसके लिए मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और लोगों का भी मानना है, उनको भी पता है कि ये जिस भी फील्ड में जाएंगे वहाँ कामयाब ही होंगे।
0: और हम बात करें स्मार्ट सिटी की, तो स्मार्ट सिटी और आजकल आप सभी आप जानते हैं कि ये डिजिटल टाइम चल रहा है, तो ऐसे में आप अपने वार्ड को किस तरह से निखारने की कोशिश करेंगे?
1: देखो, स्मार्ट सिटी में जितने भी कोई प्रोजेक्ट हैं या जो भी चीज़ें लगने वाली हैं, मैं कोशिश करूंगा कि अपने 17 नंबर वार्ड में वो सारे प्रोजेक्ट या सारी चीज़ें जो है मैं लेके आऊंगा, ताकि आने वाले टाइम में मैं चाहता हूं कि ये जो 17 नंबर वार्ड है अलग से दिखे लोगों को कि नहीं, और लोग भी जो हैं वो ये आगे से बोलें कि जाओ 17 नंबर वार्ड में देख के आओ कि कहाँ कैसे कैसे काम हुए। क्योंकि मैंने जब भी काम किया, जैसे मैंने पिछले पंचायत में था तो मैंने जो एक पंचायत घर नहीं हुआ करता था वो पंचायत घर बनाया, अच्छा पंचायत घर बनाया, क्योंकि पहले पिछले 30-35 साल से एक छोटे से कमरे में पंचायत घर चलता था, वो पंचायत घर बनाया। उसके बाद मेरे पास कुछ लोग अभी भी जो हैं सिद्धपुर के लोग काफ़ी यहाँ पे लाइब्रेरी जो बनाई उसमें आ रहे हैं, लाइब्रेरी इतनी अच्छी बनी है और उसमें 35-40 बच्चों के बैठने की जगह है और 35-40 ही फुल चल रही है। नहीं तो आपने देखा होगा कि लाइब्रेरी जब बनती है तो कुछ लोगों को बुलाना पड़ता है कि आप आओ पढ़ो, और यहाँ पे तो हम एडमिशन के लिए भी थोड़ा सा कतरा रहे हैं क्योंकि बच्चे ज़्यादा हैं, लाइब्रेरी 40-50 की है। तो ये चीज़ें जो है ऐसी चीज़ें बने तो उससे पता लगेगा कि हाँ जी मेरा विजन क्या है, लोगों को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। ऐसा ही एक लाइब्रेरी मैं चाहता हूँ कि जो सिद्धपुर से लड़के आते हैं उनके लिए अलग से वहाँ सिद्धपुर में लाइब्रेरी बनाई जाए, ताकि सिद्धपुर वाले लड़के वहाँ पढ़ लें, सिद्धवाड़ी वाले यहाँ आ जाएं, यहाँ और सिद्धवाड़ी वाले नहीं आते हैं, यहाँ से कनेड बरवाला योर सभी लोग आते हैं, काम मना किसी को नहीं करते हैं, और सिर्फ 400 रुपये फीस रखी हुई है और बच्चे इतना अच्छा पढ़ रहे हैं, इतना अच्छा इसका रिस्पांस मिला कि आप खुद भी जाके देखें तो पता लगेगा कि वहाँ बाकी ऐसी लाइब्रेरी हर गाँव में हर वार्ड में चाहिए।
0: जी बिल्कुल। तो सर, मैं थोड़ा सा आपसे इस बारे में ही जानना चाहूंगी, जो ये लाइब्रेरी का सेटअप आपने किया, तो इसमें आपने किस तरह से मतलब कि इसके लिए प्लानिंग की थी, किसकी हेल्प आपको लेनी पड़ी, और लोगों का सहयोग भी लिया ही होगा ऑब्वियसली। और हमारे दोस्तों को ये भी बता दीजिए जो नहीं जानते हैं कि ये लाइब्रेरी का सेटअप है कहाँ, और इसके लिए उन्हें अगर यहाँ एडमिशन लेनी है, अगर जैसे वेकेंट सीट्स होती भी हैं, तो वो किस तरह से इसमें आ सकते हैं, अपनी स्टडी को जो है वो कंटिन्यू कर सकते हैं?
1: ये लाइब्रेरी तपोवन रोड पे जो जहाँ बनी है वो पहले ही जो जगह है वो 17 नंबर वार्ड की ही है
0: जी।
1: मतलब पंचायत की नहीं थी, वार्ड नंबर 17 की थी। मैंने वहाँ से उनसे रिक्वेस्ट करके जो जगह पंचायत घर के लिए ली थी, लेकिन जब ऊपर देखा खाली जगह है तो मैंने वहाँ इसलिए बनाई क्योंकि पंचायत के लड़के मेरे पास आते थे कि वो क्लियरेंस सर्टिफिकेट मांगते थे कि इसका सिद्धवाड़ी में रहते हैं। मैंने लड़कों को पूछा कि आप ये किस लिए लेते हैं, बोलते जी हमने लाइब्रेरी में धर्मशाला में एडमिशन लेनी है। तो मैंने बोला वहाँ प्रॉब्लम नहीं होती, बोल जी प्रॉब्लम तो होती है, हम सुबह 5-6 बजे भी कई बार जाते हैं तो 7-8 बजे हमारी जो वहाँ बारी लगती है, टाइम उनका बड़ा ख़राब हुआ करता था और उतनी मतलब अच्छा पढ़ाई नहीं कर पाते थे क्योंकि 2-3 घंटे उनको जाने में लगते थे, 2-3 घंटे आने में लगते। तो मेरा उसी दिन दिमाग में बैठ गया कि अगर ये बच्चे हमारे यहाँ से 20-25 बच्चों ने जिन्होंने करेक्टर सर्टिफिकेट मेरे से बनवाया, तो मेरे दिमाग में आया कि नहीं क्यों ना इनके लिए यहीं सिद्धवाड़ी में ही लाइब्रेरी बनाइए। ये लाइब्रेरी सिद्धवाड़ी तपोवन रोड पे हम जो पंचायत घर है बागनी पंचायत का उसके ऊपर बनी हुई है, और ये जगह भी जो हमें नहीं मिल रही थी नगर निगम की जगह थी हमने वहाँ नगर निगम में क्या नाम NOC के लिए बोला गया और उन्होंने NOC दी। और मेरे को तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि अब मैं वहीं से नगर निगम
0: पार्षद
1: में जा रहा हूँ पार्षद के
0: के
1: लिए,
0: लिए
1: मेरी बनाई हुई है। तो मैं तो ये तो कह सकता हूँ कि 17 नंबर वार्ड में जो मैंने पहले ही लाइब्रेरी जो है बना के रखी हुई है, और जो सिद्धपुर का एरिया रहता है वहाँ जरूर बनाऊंगा मैं।
0: जी। तो मतलब कि बहुत अच्छी ये पहल है बच्चों के लिए खास करके, क्योंकि दूर दूर से, सही कहा आपने कि धर्मशाला में बहुत सारे बच्चे जो हैं, क्योंकि धर्मशाला एक स्टडी हब है, एक तरह से एजुकेशन हब है, बच्चे दूर दूर से यहाँ पढ़ने के लिए आते, तो जो लोकल लोग हैं वो छूट जाते हैं कहीं ना कहीं। तो ये बहुत अच्छा एक एफर्ट है सर का दोस्तों की, यहाँ नजदीक के बच्चों के लिए ये एक छोटा सा लाइब्रेरी सेटअप, और एक सिद्धपुर में भी सर कह रहे हैं कि सिद्धपुर में भी उनकी कोशिश है कि वार्ड नंबर 17 में जो है एक और वहाँ पे इस लाइब्रेरी का सेटअप किया जाए। तो सर यहाँ पे सिर्फ इसी पंचायत के लोग आ सकते हैं या आगे पीछे के भी?
1: नहीं, सारी जगह से
0: सभी
1: आते
0: के
1: हैं,
0: लिए
1: कन्या
0: अलाउ
1: कुमार
0: है
1: वाला सबके लिए है।
0: जी। और अब बात करते हैं, जैसे कि स्वच्छता की बात करें, क्योंकि आजकल आप जानते हैं स्मार्ट सिटी की हम बात करते हैं, लेकिन जगह जगह हमें कूड़े करकट के ढेर जो है वो देखने को मिलते हैं। भले ही गाड़ियां घर घर जाती हैं, लेकिन फिर भी हम उस फैसिलिटी को अच्छे से नहीं ले पा रहे हैं, या यूं कहें कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को नजरअंदाज करते हैं। तो इसमें आपका कुछ अपने समाज के लोगों के लिए कुछ एफर्ट्स रहे हैं उन्हें जागरूक करने के लिए, उनका योगदान लेने के लिए, क्योंकि सिर्फ हमारा योगदान या उनका इक्वली जो है वो मैटर करता है, तो उसमें आप क्या कहना चाहेंगे?
1: स्वच्छता के लिए मैं आपको बताऊं, 2022 में जब हम बने थे, बनने के बाद 1 साल के बाद जो यहाँ स्वच्छता अभियान चलाया गया था, और कुछ जो बाहर के NGO थे जिन्होंने यहाँ से शुरू करना था गांव में, तो वो हमारे पास बार बार आने लगे कि यहाँ से हम जो कूड़ा जो उठवा लेंगे आप शुरू करवाओ। तो जब मैंने बात की लोगों से, तो वो लोग लगे बोलना, नहीं जी हम 50 रुपये कहाँ से देंगे, ये वो, मतलब उन्होंने बहुत आनाकानी की। लेकिन उसके बावजूद भी मैंने शुरू जब कर दिया, तो शुरू करने के बाद जब लोगों ने देखा कि हाँ जी यहाँ तो घर से हमारे कूड़ा जा रहा है, तो उन्होंने जो है शुरू करने के बाद, पहले तो हमारे पास 20-25 लोग आए, फिर 50 हुए। आज की डेट में जो मेरी बागनी पंचायत है, उसमें हमने स्वच्छता के लिए इतना काम किया कि हमें 2 बार इनसे प्राइज भी मिला स्वच्छता अभियान से। एक बार शिमला से मिला है, एक बार धर्मशाला से मिला है, जिन्होंने, क्योंकि मेरी पंचायत ने ही पहले शुरू किया था। और शुरू करने के बाद जब बाकी पंचायतों को पता लगा और लोगों ने बोलना शुरू किया कि देखो वहाँ बागनी पंचायत में तो ये क्या नाम घर घर से कूड़ा उठा रहे हैं, यानी क्यों नहीं उठा रहे, उसके बाद उन्होंने 3 पंचायतें और करी। अब मेरे ख्याल लगभग सारी पंचायतों से जो है कूड़ा उठा रहे, लेकिन सबसे पहली पहल जो है वो बागनी पंचायत ने ही की थी, और
0: बागनी
1: बागनी पंचायत को ही 2 बार प्राइज भी मिला। और अब लोग जो अगर किसी के घर में अगर कोई छूट जाता है, तो वो भी अभी फोन करते हैं कि जी हमारे घर में नहीं आए। मतलब लोगों को ये जरूर हुआ कि अब नई स्वच्छता अभियान में हमें साथ देना चाहिए। और जो आपने देखा होगा कि पिछले मेरे को बता रहे थे वो कहना स्वच्छता अभियान वाले कि बागनी से कंटेनरों के हिसाब से जो कूड़ा उठाया गया है, तो इससे पहले पता नहीं कहाँ
0: कहाँ
1: जाता
0: जाता
1: था कहाँ नहीं
0: था
1: जाता था, लेकिन बड़ा अच्छा लगा और लोगों का भी रिस्पॉन्स इसमें अच्छा है। लेकिन
0: अच्छा
1: शुरू जो है वो हमने ही किया था इसके स्वच्छता अभियान के बारे में।
0: जी, बहुत अच्छी बात है। और कहते हैं एक बार शुरुआत हो जानी चाहिए, फिर लोग ना चाहते हुए भी अवेयर खुद को कर ही लेते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि थोड़ा सा हमें डंडा लेके खड़ा
1: डंडा लेके
0: होना
1: होना, पर यहाँ
0: पड़ता
1: डंडे वाली बात आई नहीं,
0: है
1: लोगों
0: जी
1: ने खुद रिस्पॉन्स दिया और खुद उन्होंने आगे आके उन हमारे से मिलके, हमने गांव में एक वो कमेटी टाइप भी बनाई थी, फिर हमने घर घर जाके सबको बोला कि कोई 50 रुपये। अब तो ये है कि जो गीले वाला पहले नहीं उठाते थे, अब उठा रहे हैं, तो अब लोग के ये भी बोलते हैं कि हमारे से चाहे 200 रुपये ले लो पर उठवा लो,
0: उठवा
1: और
0: लो
1: वहां से हम उन लोगों को के घर से भी उठवा रहे हैं।
0: जी। तो बहुत सारे लोगों से वैसे इशू भी होता है, क्योंकि हर कोई जो है अफोर्ड नहीं भी कर पाता है, कुछ बहुत गरीब परिवार होते हैं, बहुत जरूरतमंद लोग होते हैं, तो उनके लिए भी ये इक्वली है, मतलब सभी के लिए।
1: देखो 50 रुपये कोई ज़्यादा तो है नहीं है, महीने का होता है वो भी। और लोग देखो, आप एक तो कूड़ा उठाने वाले लोग आपको पता ही है, यहाँ लोकल तो कोई मिलेगा नहीं,
0: नहीं
1: बाहर से
0: मिलेगा,
1: आएंगे, बाहर से जितने भी आते हैं उनको पेमेंट तो आप देखो
0: करनी
1: 15-20 हज़ार से कम तो होता नहीं
0: पड़ेगी
1: है कोई भी।
0: जी
1: तो इसके लिए अब नहीं, अब अवेयर हो गए हैं लोगों को जब पता लगा ना कि आप, नहीं तो यहाँ हमारी जो कूलें थी उसमें इतना पॉलीथीन वगैरह भरा रहता था, जिससे कूलर का पानी जो आगे पीछे जाता था, कूलें टूटती थी। लेकिन मैं देख रहा हूँ 2-3 साल से जो हमारे कूलें भी उसको साफ हुई है, और गांव भी काफी साफ हुआ है।
0: जी बिल्कुल दोस्तों। तो ये हम सभी के लिए, मैं इसलिए ये कहना चाह रही थी क्योंकि खास करके गरीब लोगों, जो कि जरूरतमंद लोग, मैंने इसलिए कहा, वो फिर भी आनाकानी नहीं करेंगे, लेकिन जो ठीक स्टेटस के होते हैं ज्यादातर आनाकानी वही करते हैं कि हम इतने में नहीं करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, और कूड़ा कचरा यहाँ वहाँ हम फैलने देते हैं। तो बिल्कुल ये हम सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सिर्फ एक पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि एक ने शुरुआत कर दी तो हम कुछ ना करें। अपना समाज है और अपने समाज को साफ सुथरा रखना हम सभी का कर्तव्य है। तो फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, उसके बाद हम फिर से सवालों के साथ जवाबों के साथ आप सभी के साथ मिलते हैं, और आप सभी जुड़े हैं इस समय अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

0: तो इस छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी जुड़ चुके हैं इस बहुत ही खास बातचीत के साथ। और आज के हमारे खास मेहमान जो हैं सुरेश सर जी हैं, और जो कि वार्ड नंबर 17 बागनी पंचायत से बिलोंग करते हैं। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपनी बातचीत में आगे और बात करते हैं सर से, जो कि सर की प्लानिंग है तो वो जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की उम्मीदें हैं जिन लोगों ने सर को यहाँ तक पहुँचाया है, इस लड़ाई के लिए उतरने के लिए उन्होंने प्रेरित किया है, तो उनकी उम्मीदें भी बहुत सारी होंगी। तो जरूर उन उम्मीदों को पूरा करने की कोशिश सर की तरफ से है, किस तरह से है यही हम जान रहे हैं। तो सर अभी हम बात करते हैं, जैसे कि जब हम अपनी सोसाइटी की बात करें, अपने आपके वार्ड की बात करते हैं, तो फैसिलिटीज जैसे हमें प्रोवाइड होती हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं लेकिन वो पहुँच नहीं पाती हैं लोगों तक। तो हम स्ट्रीट लाइट्स की बात करें या तो सड़कों के काम की हम बात करें, रास्तों की बात करें, तो उसमें आप किस तरह से जो है लोगों के लिए हेल्प करी है आपने, और आगे किस तरह से करने वाले हैं उसे बेहतर तरीके से, अगर आपको लगता है कि पहले कुछ कमी रह गई है तो उसे किस तरह से इम्प्रूव करने वाले हैं आप?
1: देखो, जो हमारा बागनी पंचायत पड़ता था ये आसपास में, बागनी तो अब बाद में हुआ है, पहले तो सिद्धवाड़ी में आता था।
0: जी
1: तो बागनी पंचायत में काफी जगह जो थी वो स्ट्रीट लाइट के, हमने तो दूसरी सोलर लाइट लगवाई है वहाँ पे। तो उसमें लोगों से कुछ पैसे लेके, जो 2500 रुपये पर्सनल देता था और बाकी के पैसे जो गवर्नमेंट देती थी 75% जो वो देती थी, तो उसमें मैंने सबसे ज़्यादा, मतलब धर्मशाला ब्लॉक में अगर पता करें आप, तो सबसे ज़्यादा जो सोलर लाइट है वो बागनी पंचायत में लगी है। मैंने हर घर में जो है एक लाइट जो है लगाई हुई है, और उस लाइट से ये है कि अब मतलब आपको बागनी पंचायत में कहीं भी रात को अंधेरा नहीं दिखाई देगा। अगर लाइट चली भी जाएगी तो वो सोलर लाइट जो वो जली रहती है। तो कुछ एरिया मैं यहाँ देख रहा हूँ जो नगर निगम में है, नगर निगम में भी काफ़ी लाइट्स लगी हैं, लेकिन कुछ एरिया में जैसे अभी घूम रहा हूँ, लोगों के साथ बात कर रहा हूँ, तो कुछ एरिया जो गली हैं जहाँ बड़ी ज़रूरी लाइट्स लगनी है, वहाँ के लिए जो मैं आगे ट्राई करूँगा, ताकि हमारे धर्मशाला 17 नंबर वार्ड में जो है वो पूरे जो है जगमग रहे, हर घर को जो है उसमें लाइट जाए।
0: जी, और सर लोगों का सवाल ये भी है कि अक्सर पानी की समस्या जो है बहुत ज्यादा देखने को मिलती है कुछ कुछ क्षेत्रों में जो है, तो उस पे आप किस तरह से लोगों की हेल्प करने की सोच रहे हैं या किस तरह से करने वाले हैं?
1: तो बागनी पंचायत में जो मैं पहले बता रहा था कि उसमें भी कहीं जगह जहाँ पे पानी की प्रॉब्लम थी वो तो मैंने हैंडपम्प लगा के कर दिए। अब जो ये सिद्धवाड़ी और सिद्धपुर में मैं कहीं जा रहा हूँ, तो वहाँ कुछ कुछ जो है घर, जैसे 15-15, 20-20 घर हैं, वहाँ पानी की दिक्कत है। तो अभी पीछे भी हमने 2-3 महीने पहले भी सिद्धपुर में एक महिला मंडल ने बोला था कि हैंडपम्प हमारे लिए पानी की बड़ी जरूरत है, तो वहाँ हैंडपम्प लगवा दिया था। तो अब मैंने चयनित किए हैं 5 या 6 जो हैंडपम्प अगर वार्ड नंबर 17 में लग जाएंगे तो उसके उनकी समस्या जो हल हो जाएगी, और मैं ये 5-6 जो हैंडपम्प हैं अगले आने वाले 6 महीनों में जो है मैं लगाने की कोशिश करूंगा, और उनकी जितनी भी प्रॉब्लम है पानी की वो हल हो जाएगी। उस पानी की इतने ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम रहेगी नहीं जो अगर 6 महीने बाद में, अगर लोग मेरे को 17 नंबर वार्ड से पार्सल बनाते हैं तो मैं उनसे वायदा करता हूँ कि अगले आने वाले 6 महीनों में उनको किसी को भी पानी की समस्या जो है नहीं रहेगी।
0: जी, और कुछ लोगों का ये भी सवाल है जैसे कूलों का काम या रास्तों का काम जो कहीं कहीं नहीं हुआ है, तो उस पे भी आप कुछ कहना चाहेंगे?
1: हमें देख रहा था कुछ एरिया हैं जो बच गए हैं, जिस जहाँ पे नाम रास्ते नहीं बने हैं
0: जी,
1: उस उन एरियो में थोड़ा सा कोई आपस में आपको पता है डिस्प्यूट होता है वहाँ रह गए हैं। तो मैंने 2-3 जगह जब पता किया है तो उनको मैंने ये बोला कि अपना जो आपस में डिस्प्यूट है उसको पूरा कर लें, बनाने वाला जो है काम जो है हमारा है, और हम उन रास्तों को भी पूरा बना देंगे ताकि आने वाले टाइम में उनको रास्ते में आने जाने में दिक्कत ना हो। कुछ रास्ते ऐसे भी हैं जहाँ पे खड्डे पड़ गए या नाम खराब हो गए हैं, उनको भी मैं ठीक कराने की पूरी कोशिश करूँगा। ये जरूर है कि 5-6 महीने में अंदर अंदर जो हमें इनका जितने भी डिमांड्स हैं लोगों की मैंने लिख के रखी हुई है, सब डिमांड्स को पूरी कर दूंगा।
0: जी बिल्कुल, तो अब आते हैं महिला मंडल पे। तो महिलाओं की बात करें तो महिलाओं का योगदान तो घर की बात हो समाज की बात हो तो हर कहीं जो है बहुत अहमियत रखता है। एक महिला जो है घर को संभालती है पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसी तरह से अगर उनके हाथों में समाज को संभालने की कमान दी जाए तो वो भी वो बखूबी निभाएंगी। तो महिला मंडल के लिए आप किस तरह से अपना योगदान जो अपने इन सेवाओं में रहते हुए उन्हें किस तरह से आप हेल्प करना चाहेंगे?
1: देखो, महिला मंडल का मैं आपको बताऊंगी, जब मैं दो 2010 में जब ये पंचायत में पड़ती थी सिद्धवाड़ी पास जो 17 नंबर है, तो वहाँ 2-3 महिला मंडल ऐसे थे जिनकी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ करती थी, कि वो बोलते थे कि हमारी महिला मंडल को रजिस्ट्रेशन करवा दे ताकि गवर्नमेंट से हम कुछ पैसे ले सके। तो 2 या 3 जो है मैंने बड़ी मुश्किल क्या मतलब उनको पता नहीं था कैसे करवाना, तो मैंने उनके 2-3 के रजिस्ट्रेशन करवाई थी। फिर उसके बाद उन्होंने मेरे को ये बोला था कि आपने महिला भवन भी हमें देने हैं। तो महिला भवन देने के बाद जब आगे एरिया जो है वो डिवाइड हो गया तो वो रह गए। और आज भी आपने देखा होगा जो मैं वर्करी करने जा रहा हूँ जब घर घर में, तो उसमें महिला मंडलों का बहुत योगदान है, क्योंकि उनको पता है कि अगर ये दोबारा आ जाएंगे तो हमें कम से कम महिला भवन तो मिल ही जाएंगे। एक महिला भवन जो पिछले 3-4 महीने पहले मेरे पास आए थे कि जी देखो हमारी तो कोई सुन नहीं रहा, आपने महिला मंडल भी बना दिया, रजिस्ट्रेशन करवा दी, लेकिन भवन नहीं हमारा बन रहा है। तो मैंने अपने CM साहब से बात करी, हमारे यहाँ से जो देवेंद्र जग्गी जी उनसे बात करी, और उन्होंने जो है वो उनके लिए 8 लाख रुपया दिला दिया, उसमें से 3 लाख जो हमारे पास आ गया। मैंने तो अभी जो इलेक्शन डिक्लेयर हो गए, इलेक्शन डिक्लेयर होने से कोई 10-15 दिन पहले जब आचार संहिता नहीं लगी थी तो उसका मैंने शिलान्यास भी किया, काम भी शुरू करवाने वाले थे, लेकिन अब जो है आचार संहिता लगी है इसलिए वो बंद पड़ा। एक का तो मैंने करवा दिया, 2 और हैं उन्होंने भी मेरे को बोला हुआ, लेकिन मैं उनका पक्का करवाऊंगा क्योंकि वो मेरे हाथों से ही रजिस्ट्रेशन हुई है, और 2 महिला मंडल जरूर बनाऊंगा, क्योंकि आपको पता है लोगों जो औरतें हैं उनको घर घर जाके जो मीटिंग करनी पड़ती है, जिससे उनको बहुत मुश्किल होती है। किसी का तो घर ठीक होता है तो बहुत तो करवा लेती है, लेकिन जिनका छोटा होता है या कुछ
0: हिचकिचाते
1: हैं या बारिश हो जाए तो उनकी जो मीटिंग कैंसिल करनी पड़ती है, तो उस चक्कर में ये जो 2-3 महिला मंडल है उनको तो मैं भवन दे के रहूंगा ना, क्योंकि एक का तो दे दिया, 2-3 और वो दे देंगे। एक सिद्धपुर में भी है 2-3 महिला भवन, तो मैंने उनको यही बोला कि आप गवर्नमेंट लैंड देख लें, जहाँ भी वो चयनित करेंगे वहाँ उनको बना के दे देंगे।
0: जी दोस्तों, तो आप सभी जान रहे हैं कि किस तरह से सर की प्लानिंग है, चाहे महिलाएं हों, चाहे बच्चे हों, चाहे युवा हों, और बुजुर्गों की हम भी जरूर बात करेंगे, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। तो मिलते हैं आप सभी से इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप सभी इसी तरह से एंजॉय कीजिए अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला।

0: दोस्तों, इस छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी जुड़ चुके हैं हमारे इस बहुत ही खास कार्यक्रम चुनाव संवाद में। और सुरेश सर से हम बात कर रहे हैं क्योंकि ये आपकी उम्मीदों पे खरा उतरने वाले हैं अगर आप इन्हें मौका देते हैं। हम यही उम्मीद करते हैं कि आप जरूर इन्हें सपोर्ट करेंगे और ये मौका जरूर देंगे ताकि आपके आने वाले कल को ये और बेहतर बना सकें, आपकी जो उम्मीदें हैं उन्हें पूरा कर सकें। तो आइए अपनी बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। और ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि बुजुर्गों के लिए सर का योगदान किस तरह से रहने वाला है, बुजुर्गों के लिए सर जो है अपनी अहमियत को किस तरह से खास बनाने वाले हैं। जी दोस्तों, तो आप सभी जान ही चुके हैं, आप सभी को फिर से बता देते हैं कि सुरेश कुमार पप्पी जी जो कि आपके प्रधान है वार्ड नंबर 17 में, तो उन्हीं की हम बात कर रहे हैं, उन्हीं से हम बातचीत कर रहे हैं। तो बिल्कुल अब आप सभी जान चुके हैं। तो सर, बुजुर्गों की हम बात कर रहे हैं, बुजुर्गों के लिए किस तरह से आप जो है खास बनाना चाहेंगे, किस तरह से अपनी सेवाएं जो है उनके लिए देना चाहेंगे?
1: देखो, बुजुर्गों के लिए तो मैं आपको पहले भी बताया कि यहाँ जो जोराबर स्टेडियम है वहाँ के लिए हम एक ट्रैक बनाएंगे ताकि उनको घूमने फिरने के लिए जगह बन जाए, क्योंकि आजकल आपने देखा होगा कि सड़कों में इतना रश हो गया है कि आप हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई बुजुर्ग जो एक्सीडेंट के होता है और कईयों की डेथ भी हो गई है, कई बिस्तरों में पड़े हैं। तो यहाँ अलग से मैं एक ट्रैक बना के ताकि बुजुर्ग जो है वो वहाँ टहल सके। दूसरा, मैंने दो चार जगह ऐसा भी देखा कि जो उनको पेंशन की बहुत ज़रूरत है, घर में आपको पता है गरीब लोग हैं, कुछ ऐसा है, तो उनको इतना भी नहीं पता कि पेंशन के लिए हमें क्या करना
0: क्या
1: पड़ता है।
0: करना है।
1: तो उसके लिए मैंने उनको सबको आश्वासन दिया है कि मेरे आने के बाद जब मैं अगर पार्षद आप बना देते हो तो मैं उन बुजुर्गों के लिए पेंशन के लिए हर सुविधा दिलाऊंगा, और कोई और हेल्प होगी उनके तो मैं ज़रूर करूँगा।
0: जी बिल्कुल दोस्तों, तो सर का ये कहना है क्योंकि अभी तो पंचायत लेवल पे ज्यादा हाई चीजों पे नहीं जा सकते हैं, लेकिन हाँ, जब पार्षद पे अगर आप चुन के सर को मौका देते हैं तो वो जरूर जो बड़े बड़े काम है जो अपने वार्ड को, वार्ड नंबर 17 को बेहतर बना सकें, तो वो जरूर कोशिश करने के प्रयास है उनके। तो सर, एक सवाल एक और आपसे मैं करना चाहूंगी, सिद्धपुर की हम बात करें तो ऐसी कौन सी बड़ी कमी आपको देखने को मिली है या मिल रही है जिसे आप पूरा करना चाहेंगे?
1: मैंने सिद्धपुर में देखा कि काफ़ी जगह जो है वो गोमन लैंड पड़ी है, जहाँ आपने देखा होगा कि पत्थर हैं, झाड़ियाँ हैं, कोई यूज नहीं है उनका।
0: जी
1: तो मैं एक तो पहले जो मैंने बड़ी समस्या देखी है सिद्धपुर में कि पार्किंग की बहुत समस्या है।
0: बिल्कुल
1: आपने देखा होगा कि नोरविलिंगा में लोग जो बाहर से आते हैं, टूरिस्ट जो भी आता है, तो उनको गाड़ी खड़ी करने के लिए दिक्कत होती है, उनको आगे पीछे घूमने के लिए दिक्कत होती है। और मैंने देखा काफ़ी जगह जो है जो खाली है, वहाँ मैं बड़े बड़े प्रोजेक्ट जरूर बनाऊंगा। एक उनकी लाइब्रेरी के लिए वो करूँगा, एक उनका नाम
0: पार्किंग के
1: पार्किंग के
0: लिए।
1: लिए करूँगा, एक उनके बैडमिंटन या कुछ ऐसे दो तीन आइटमें बना दूंगा ताकि वो खेलने के लिए उनको अच्छा हो जाए, बच्चों को, युवा को अच्छा हो जाए। और वहाँ मैं देख रहा हूँ कि वहाँ काफ़ी स्कोप है सिद्धपुर में जो बड़े प्रोजेक्ट जो है लाए जा सकते हैं।
0: जी बिल्कुल। तो सर, एक बात मैं और आपसे पूछना चाहूंगी क्योंकि अभी आप लोगों के पास जा रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, तो आपने काफी समय लोगों को दिया है अपना, मतलब कि सेवाएं जो है एज अ प्रधान जो है आपने दी है, तो अभी लोगों की क्या आपके सामने सवाल आ रहे हैं? कुछ शिकायतें हैं या खुशी है या कुछ, मतलब की जो उम्मीदें उनकी पूरी हुई हैं, तो वो ऐसा कुछ आप एक्सपीरियंस जो है हमारे दोस्तों के साथ रेडियो के माध्यम से शेयर करना चाहेंगे?
1: मैं एक तो 17 नंबर वार्ड के जितने भी वोटर्स हैं उनका धन्यवाद करूंगा कि जो मेरे साथ बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, और उनसे अपील भी करूंगा कि 17 तारीख को जो इलेक्शन है उसमें बढ़ चढ़ के आए और अपना वोट करें। और हम क्या नाम, हमारे में पक्ष में, जैसे आपने बताया कि मैंने सुरेश कुमार पप्पी लिखा होगा, उसके आगे बटन दबाएं और मेरे को कामयाब बनाएं ताकि आने वाले टाइम में जो है मैं उनके काम कर पाऊँ। मैंने बहुत से लोगों को देखा कि जब मैं जाता हूँ कि आप मेरे को काम कोई है तो बताओ, तो उन्होंने यही जवाब दिया कि पहले आपको हम बनाएंगे,
0: उसके बाद
1: उसके बाद हम काम बताएंगे। मतलब
0: बताएंगे
1: काफ़ी लोगों से मैंने बोला मैं अभी भी उस पे हूँ कि आपके काम करवा
0: करवा
1: सकता हूँ,
0: सकते
1: लेकिन उन्होंने एक ही बात बोली कि पहले हम आपको बनाएंगे, उसके बाद हम आपसे काम लेंगे। और मेरे को
0: जी
1: बड़ा अच्छा लगा कि जो पुराने लोग थे वो मेरे साथ चले हुए हैं, पुराने लोग खुद आके मेरे को आप सुबह फ़ोन करने शुरू कर देते हैं कि आज किस जगह जाना है, आज कहाँ जाना है। और मैंने उनको काफ़ी बार पूछा कि कोई ऐसा काम है तो बता दो। आप पीछे मैंने आपको बताऊँ कि एक जगह मीटिंग रखी हुई थी, तो वहाँ नेपाली लोग बैठे हुए थे, तो उन्होंने एक ही बात बोली, जी देखो हमने यहाँ 2-3 महीने हो गया, हमें 2-3 काम थे छोटे छोटे वो कर नहीं पाए। मैंने उनको जब पूछा कि क्या काम है, तो कुछ पानी की बता रहे थे लीकेज है, बोले 2 महीने 3 महीने, कुछ लाइट्स की बता रहे थे कि लाइट नहीं चल रही है। तो मैंने वो एक दिन में ही उनके जब ठीक करवा दी, तो वो मेरे को फोन कर रहे थे कि अभी आप बने नहीं है, अभी इतना काम करवा रहे हैं, तो बनने के बाद तो आपको मतलब और भी हमारे ज्यादा काम होंगे। तो मैं मतलब देख रहा हूँ लोगों के वो बड़े काम नहीं होते हैं, छोटे छोटे काम होते हैं, और बेचारे इतने परेशान हो जाते हैं कि वो मतलब घर बैठ जाते हैं कि ये काम होने वाला नहीं है। लेकिन अब मेरे को मालूम है कि उन लोगों को विश्वास है कि ये आएंगे तो हमारे छोटे मोटे काम जो है वो टेलीफोन पे ही हो
0: जाएंगे। बिल्कुल, तो ये बहुत अच्छा फीडबैक है दोस्तों सर के लिए, सच में बाकी एक गर्व महसूस करने वाली बात है कि जब भी हम लोगों की सेवा करने के लिए इस मैदान में उतरते हैं तो ईमानदारी और सच्चाई सबसे मैटर करती है। क्योंकि जब हम दिखावे के लिए या झूठ फरेब के सहारे जब हम आगे बढ़ते हैं तो वो हमें यहीं से पता चल जाता है, क्योंकि सर का ये एक्सपीरियंस ही शो कर रहा है कि सर पहले 2 बार कंटिन्यूसली प्रधान पद पे रहे, उसके बाद फिर से 2022 से लेकर 26 तक जो है वो प्रधान पद पे हैं। तो यहां से पता चल रहा है कि लोगों की कितनी ज्यादा होप्स इनके साथ है, लोगों की उम्मीदें इनके साथ है, उन्हें विश्वास है कि ये बहुत सारे काम करवा देते हैं, करवा सकते हैं। तो इसी विश्वास के साथ लोगों ने सर को यहाँ तक पहुंचाया है, पार्षद के लिए चुना है। तो आगे उम्मीद करते हैं कि इलेक्शन के बाद भी आप इन्हें चुनेंगे और आगे मौका देंगे अपनी सेवाएं पूरी कराने के लिए। तो जाते जाते सर, आप ऐसा कोई मैसेज हमारे सभी दोस्तों को देना चाहेंगे?
1: मैसेज तो यही है कि आप आने वाले टाइम में जो 17 तारीख को इलेक्शन है वो सुबह 7 से शाम को 3 बजे तक होगा, वो लोगों से मेरी यही अपील है कि जितना जल्दी हो अपना जो है करवा देना, क्योंकि उस दिन मैच भी है। तो मैं चाहता हूँ कि रस्त होने से पहले पहले अपने वोट जो है वो मेरे पक्ष में डालें। सुरेश कुमार पप्पी और हाथ का निशान है, और मेरे को काफ़ी मतों से जिताएं ताकि मेरा हौसला और भी बढ़े और मैं लोगों के बढ़ चढ़ के काम कर पाऊँ।
0: जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ इस खास बातचीत में जुड़ने के लिए, लोगों के सवालों के जवाब लोगों तक पहुंचाने के लिए। जी, तो दोस्तों समय हो गया है आप सभी से अलविदा लेने का। तो बहुत ही खास ये बातचीत और बहुत ही महत्वपूर्ण ये जानकारी, सवालों के जवाब आप सभी तक पहुंचाए हैं। एक बार फिर से बता देते हैं, आज की ये खास बातचीत आप सभी ने सुनी अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका और वार्ड नंबर 17 से सुरेश कुमार पप्पी जी के साथ। तो बिल्कुल दोस्तों नाम भूलना नहीं है और सर को मौका देना है अपनी सेवाएं पूरी कराने का। तो दीजिए अनुमति अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका को कार्यक्रम संपन्न करने की, फिर होगी मुलाकात एक नई बातचीत के साथ और नए मेहमान के साथ। तब तक आप सभी इसी तरह से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और गुनगुनाते रहिए अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला।

0: तो सो इस समय आप सभी जुड़े हुए हैं अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ, और ढेर सारी जानकारियाँ, ढेर सारा मनोरंजन आप सभी इंजॉय करते हैं अपने रेडियो सेट से। तो अब समय है दोस्तों समाचारों का, तो आइए सुनते हैं समाचार, उसके बाद फिर से कंटिन्यू रहेगा आपका ये मनोरंजन और कुछ खास बातें।
1: दिया गया प्रधानमंत्री ने आज संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात की। बैठक में ऊर्जा सहयोग और द्विपक्षीय व्यापार पर विशेष ध्यान दिया गया। पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के कारण वैश्विक आपूर्ति में आई बाधाओं के मद्देनजर ये चर्चाएं हो रही हैं और दोनों पक्षों द्वारा तेल भंडार तथा गैस आपूर्ति व्यवस्था पर चर्चा किए जाने की उम्मीद है। यात्रा से पहले संयुक्त अरब अमीरात सरकार में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग राज्य मंत्री रेम बिन इब्राहिम अल हाशमी ने प्रधानमंत्री मोदी को संयुक्त अरब अमीरात में एक सम्मानित व्यक्ति बताया। प्रधानमंत्री मोदी अगले चरण में नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली भी जाएंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज नई दिल्ली में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जयशंकर ने बताया कि दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति और उसके प्रभावों पर चर्चा की। उन्होंने आपसी हित के द्विपक्षीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। डॉ जयशंकर ने ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में श्री अराक्ची की भागीदारी की सराहना भी की। दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में आए उछाल के बाद तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने आज सीएनजी गैस की कीमतों में 2 रुपए की वृद्धि की है। कीमती धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ाने के बाद सरकार ने अब अग्रिम प्राधिकार योजना के अंतर्गत सोने के आयात पर 100 किलोग्राम की सीमा तय कर दी है। पहले से योजना के तहत सोने के आयात की कोई सीमा नहीं थी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि विद्यार्थी सरकार की प्राथमिकता हैं और सरकार उनके लिए संवेदनशील है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री प्रधान ने कहा कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल में प्रवेश के लिए नीट यूजी 2026 परीक्षा दोबारा 21 जून को आयोजित करने की घोषणा की है।
2: परीक्षा में थोड़ा हमको जो उनकी फॉर्मेलिटीज है, ओएमआर शीट को दस्तखत करना, आरंभ में एक बार करना, अंत में भी एक बार करना, उसमें हमारे विद्यार्थियों कोर टाइम में कटौती हुई थी। जो 2 से 5 एग्जामिनेशन टाइम था उसको ध्यान में रखते एनटीए ने तुरंत एक निष्पत्ति किया है कि उसको और 15 मिनट बढ़ाए। 2 से शुरू होगा, 5:15 तक ये परीक्षा की समय बढ़ाया जाएगा। एडमिट कार्ड, इस बार के एडमिट कार्ड 14 जून तक सभी को पहुँच जाएगा।
1: श्री प्रधान ने कहा कि वर्तमान में ओएमआर मोड में आयोजित होने वाली नीट यूजी परीक्षा अगले वर्ष से कंप्यूटर आधारित यानी सीबीटी माध्यम से होगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि एनटीए में ठोस सुधारों की जरूरत है। उन्होंने कहा कि भविष्य में किसी भी तरह की अनियमितताओं को रोकने के लिए परीक्षा प्रणाली को सुदृढ़ करने संबंधी उपाय किए जाएंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि भारत सुधारित और प्रभावी बहुपक्षीय व्यवस्था के लक्ष्य की तरफ बढ़ने में सभी साझेदारों के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। नई दिल्ली में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के दूसरे दिन आज एक सत्र में डॉ जयशंकर ने कहा कि ये बातचीत इस महत्व को उजागर करती है कि सभी नेता तेजी से बदलते विश्व में बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के पक्ष में हैं। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना में सुधार की तत्काल जरूरत है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में रथेंद्र बसु निर्विरोध अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। श्री बसु कूचबिहार दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि हैं। कार्यवाहक अध्यक्ष तापस रॉय की देखरेख में आज सुबह चुनाव संपन्न हुआ। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने औपचारिक रूप से श्री बसु के नाम का प्रस्ताव रखा। सदन ने ध्वनिमत से उनके नाम की पुष्टि की। तृणमूल कांग्रेस के सदस्य चुनाव प्रक्रिया के दौरान उपस्थित नहीं थे, लेकिन बाद में सत्र में शामिल हुए। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में मामूली बढ़त दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 250 अंक बढ़कर 75,649 पर, जबकि निफ्टी 81 अंक की वृद्धि के साथ 23,770 पर था। आईपीएल क्रिकेट में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। ये मैच लखनऊ में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। कल मुंबई इंडियंस ने धर्मशाला में पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दे अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAK+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 72 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर, भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंगफोर्ड और लिंक्डइन लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं, तो आज ही जाएं APEX+ पॉइंट ऑथराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी कॉलेज रोड सिविल लाइन धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।

0: खुशी कौन नहीं चाहता, लेकिन किस कीमत पर? धूम्रपान महंगा पड़ता है। धूम्रपान आपके लिए हानिकारक है और आपके चाहने वालों के लिए भी। धूम्रपान पड़ेगा महंगा।
1: नमस्कार दोस्तों, चुनावी चर्चा की चौपाल अब सजेगी आपके अपने रेडियो गुंजन पर। पंचायती राज और स्थानीय निकाय चुनाव की हलचल तेज है। ग्राम स्वराज के लिए काबिल प्रतिनिधि चुनने का वक्त आ गया है और इस खास अवसर पर रेडियो गुंजन धर्मशाला आप सभी के लिए लेकर आ रहा है विशेष कार्यक्रम चुनाव संवाद। इस कार्यक्रम में हम आपके क्षेत्र के उम्मीदवारों से सीधी बातचीत करेंगे और उठाएंगे आपके मुद्दे, आपके सवाल। क्या आप चाहते हैं कि आपके क्षेत्र के उम्मीदवार इस मंच पर आएं? क्या आपके मन में है कुछ सवाल जिनका जवाब आप जानना चाहते हैं? तो देर किस बात की, अभी अपने सवाल और अपने क्षेत्र के उम्मीदवार का नाम हमें भेजें व्हाट्सएप या एसएमएस के माध्यम से। हमारा नंबर रहेगा 7018170918170191। आइए बने एक जागरूक नागरिक, क्योंकि आपका वोट आपकी आवाज़ है।

0: जागो धर्मशाला वासियों जागो,
1: क्योंकि हमारा शहर हमारी जिम्मेदारी है।
0: इस बार चुनाव में केवल वोट न दें, बल्कि धर्मशाला का बेहतर भविष्य चुनें। मतदान करने से पहले कुछ खास बातों पर गौर करें।
1: क्या आपके वार्ड में सड़कें, साफ पानी, कूड़ा प्रबंधन और स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था दुरुस्त है? नगर निगम के पिछले कार्यों की जाँच करें और तथ्यों के आधार पर ही निर्णय लें।
0: उम्मीदवार की योग्यता देखें। हमें ऐसा प्रतिनिधि चाहिए जो ईमानदार और पारदर्शी हो, जनता के प्रति जवाबदेह हो, विकास और पर्यटन के प्रति समर्पित हो।
1: याद रखें, लापरवाही में लिया गया एक गलत फैसला 5 साल का पछतावा बन सकता है। जाति, धर्म या किसी प्रलोभन में बिल्कुल ना आएं। केवल योग्यता और विकास को ही वोट दें।
0: जी बिल्कुल, आपका एक वोट धर्मशाला को स्वच्छ, सुंदर और समृद्ध बना सकता है।
1: तो बिल्कुल, सबसे पहले सोचें, जांचें, परखें
0: और फिर अपना कीमती वोट देकर धर्मशाला को सवारे।
2: गुड्डी, किससे चैटिंग चल रही है?
3: मामा, नो शेयरिंग।
2: कोई स्पेशल? हाँ, बैंक अकाउंट डिटेल्स, केवाईसी के लिए 10 मिनट दीजिए।
3: कौन था?
2: बैंक, केवाईसी अपडेट के लिए अकाउंट नंबर, पिन और ओटीपी मांगा है।
3: और आप मान गए? जब हम अपनी पर्सनल बातें हर किसी के साथ शेयर नहीं करते, तो अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स क्यों शेयर करेंगे?
2: स्मार्ट गर्ल।
3: याद रहे मामा, डिजिटल लेन देन के लिए किसी को भी अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स ना दे। ओटीपी और पिन नंबर तो कभी नहीं, हमेशा भरोसेमंद नेटवर्क का ही इस्तेमाल करें।
4: अपने जीवन की जो लगाम है उसे खुद पकड़ के रखना है। आप क्या पढ़ना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो, किस तरीके से अपने जीवन को जीना चाहते हो, उस एस्पिरेशन को आप खुद सोचो और खुद उसके लिए ये सोचो कि आप उस एस्पिरेशन को पाने का क्या रास्ता है।
5: जी मम्मी जी, नहीं नहीं, हम आगे से कहीं नहीं जाएंगे। ठीक है, ओके।
3: क्या हुआ?
5: अरे कुछ नहीं, मम्मी का कॉल था, बोल रहे थे तुम लोग बेफजूल के खर्चे बहुत ज्यादा करने लग गए हो, हर दूसरे दिन बाहर घूम रहे होते हो, बाहर मूवी देख रहे होते हो, कभी खाना खा रहे होते हो। बोल रहे खर्चों पे थोड़ा कंट्रोल करो, पैसे पेट पे नहीं उगते।
3: क्या वो ऐसे कैसे बोल सकते हैं? हम दोनों की शादी हो चुकी है, जहां हमारा दिल करे हम वहां जा सकते हैं, जो मन चाहे वो खा सकते हैं। मुझे ना उनकी यही बात नहीं पसंद, उन्हें हर चीज में टोकना होता है, हर चीज में इंटरफेयर करना होता है।
5: अरे यार एक काम करो, ये लो फोन, तुम खुद ही अपनी मम्मी को फोन करके बोल दो ये सब।
3: क्या हो गया? हमारे माँ बाप नहीं अगर हमें समझाएंगे तो कौन समझाएगा बताओ?

91.2 मेगाहर्ट्ज़ ते तुसी हो रेडियो गुंजन धर्मशाला दे नाल ते मैं तुहाडी रेडियो दोस्त पिंकी। कार्यक्रम तुसी इंजॉय कर रहे हो पंजाबी गीतां दा कार्यक्रम ते आओ श्रोताओ सुनते ने कार्यक्रम दा अगला पंजाबी गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ ते तुसी हो रेडियो गुंजन धर्मशाला दे नाल ते मैं तुहाडी रेडियो दोस्त पिंकी कार्यक्रम तुसी इंजॉय कर रहे हो पंजाबी गीतां दा कार्यक्रम ते आओ श्रोताओ सुनदे ने कार्यक्रम दा अगला पंजाबी गीत।

0: दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दे अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAC+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 72 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर, भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंगफोर्ड और लिंक्डइन लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं, तो आज ही जाएं APEX+ पॉइंट ऑथराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी कॉलेज रोड सिविल लाइन धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।
1: खुशी कौन नहीं चाहता, लेकिन किस कीमत पर? धूम्रपान महंगा पड़ता है। धूम्रपान आपके लिए हानिकारक है और आपके चाहने वालों के लिए भी। धूम्रपान पड़ेगा महंगा।
0: नमस्कार दोस्तों, चुनावी चर्चा की चौपाल अब सजेगी आपके अपने रेडियो गुंजन पर। पंचायती राज और स्थानीय निकाय चुनाव की हलचल तेज है। ग्राम स्वराज के लिए काबिल प्रतिनिधि चुनने का वक्त आ गया है और इस खास अवसर पर रेडियो गुंजन धर्मशाला आप सभी के लिए लेकर आ रहा है विशेष कार्यक्रम चुनाव संवाद। इस कार्यक्रम में हम आपके क्षेत्र के उम्मीदवारों से सीधी बातचीत करेंगे और उठाएंगे आपके मुद्दे, आपके सवाल। क्या आप चाहते हैं कि आपके क्षेत्र के उम्मीदवार इस मंच पर आएं? क्या आपके मन में है कुछ सवाल जिनका जवाब आप जानना चाहते हैं? तो देर किस बात की, अभी अपने सवाल और अपने क्षेत्र के उम्मीदवार का नाम हमें भेजें व्हाट्सएप या SMS के माध्यम से। हमारा नंबर रहेगा 7018170918117091। आइए बने एक जागरूक नागरिक, क्योंकि आपका वोट आपकी आवाज़ है।

0: जागो धर्मशाला वासियों जागो,
1: क्योंकि हमारा शहर हमारी जिम्मेदारी है।
0: इस बार चुनाव में केवल वोट न दें, बल्कि धर्मशाला का बेहतर भविष्य चुनें। मतदान करने से पहले कुछ खास बातों पर गौर करें।
1: क्या आपके वार्ड में सड़कें, साफ पानी, कूड़ा प्रबंधन और स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था दुरुस्त है? नगर निगम के पिछले कार्यों की जांच करें और तथ्यों के आधार पर ही निर्णय लें।
0: उम्मीदवार की योग्यता देखें। हमें ऐसा प्रतिनिधि चाहिए जो ईमानदार और पारदर्शी हो, जनता के प्रति जवाबदेह हो, विकास और पर्यटन के प्रति समर्पित हो।
1: याद रखें, लापरवाही में लिया गया एक गलत फैसला 5 साल का पछतावा बन सकता है। जाति धर्म या किसी प्रलोभन में बिल्कुल ना आए, केवल योग्यता और विकास को ही वोट दें।
0: जी बिल्कुल, आपका एक वोट धर्मशाला को स्वच्छ, सुंदर और समृद्ध बना सकता है।
1: तो बिल्कुल, सबसे पहले सोचें, जांचें, परखें
0: और फिर अपना कीमती वोट देकर धर्मशाला को सवारे।
2: गुड्डी, किससे चैटिंग चल रही है?
3: मामा, न्यू शेयरिंग।
2: कोई स्पेशल? हाँ, बैंक अकाउंट डिटेल्स, केवाईसी के लिए 10 मिनट दीजिए।
3: कौन था?
2: बैंक, केवाईसी अपडेट के लिए अकाउंट नंबर, पिन और ओटीपी मांगा है।
3: और आप मांग गए? जब हम अपनी पर्सनल बातें हर किसी के साथ शेयर नहीं करते, तो अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स क्यों शेयर करेंगे?

0: स्मार्ट गर्ल,
1: याद रहे मामा, डिजिटल लेन देन के लिए किसी को भी अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स ना दे। ओटीपी और पिन नंबर तो कभी नहीं, हमेशा भरोसेमंद नेटवर्क का ही इस्तेमाल करें।
2: अपने जीवन की जो लगाम है उसे खुद पकड़ के रखना है। आप क्या पढ़ना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो, किस तरीके से अपने जीवन को जीना चाहते हो, उस एस्पिरेशन को आप खुद सोचो और खुद उसके लिए ये सोचो कि आप उस एस्पिरेशन को पाने का क्या रास्ता है।
3: जी मम्मी जी, नहीं नहीं, हम आगे से कहीं नहीं जाएंगे। ठीक है, ओके।
4: क्या हुआ?
3: अरे कुछ नहीं, मम्मी का कॉल था, बोल रहे थे तुम लोग बेफजूल के खर्चे बहुत ज्यादा करने लग गए हो, हर दूसरे दिन बाहर घूम रहे होते हो, बाहर मूवी देख रहे होते हो, कभी खाना खा रहे होते हो, बोल रहे खर्चों पे थोड़ा कंट्रोल करो, पैसे पेट पे नहीं उगते।
4: यार वो ऐसे कैसे बोल सकते हैं, हम दोनों की शादी हो चुकी है, जहाँ हमारा दिल करे हम वहाँ जा सकते हैं, जो मन चाहे वो खा सकते हैं। मुझे ना उनकी यही बात नहीं पसंद, उन्हें हर चीज में टोकना होता है, हर चीज में इंटरफेयर करना होता है।
3: अरे यार एक काम करो, ये लो फोन, तुम खुद ही अपनी मम्मी को फोन करके बोल दो ये सब।
4: हमारे माँ बाप नहीं अगर हमें समझाएंगे तो कौन समझाएगा बताओ।

कानवी दशमलव 2 मेगाहर्ट्ज़ पर ए तुहां सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कने मैं शशि हाजिर होइयो कार्यक्रम लेके माटी दी महक श्रोताओं कर दिन कार्यक्रम दा आगाज इस प्यारे दे गीते कने तुहां सारे इन्ने बनी रिया रेडियो गुंजन धर्मशाला कने गूंज अपने बंदी

तुहां सारें दा रेडियो गुंजन धर्मशाला तने तुहां सारे कार्यक्रम सुना देन माटी दी महक आशो तो बढ़ते न कार्यक्रम चगे तने सुन देन एक और प्यारा दिया गीत।

हाँ बोला थे न रेडियो गुंजन धर्मशाला थे कने तो हाँ सारे ट्यून किते है अपना समुदायिक रेडियो गुंजन धर्मशाला कने इस वक्त कार्यक्रम चल रहा है माटी दी महक श्रोताओं सुन दे एक और प्यारा दिया गीत।

91.2 MHz पर तो हाँ सारे ट्यून कित्ते है अपना सामुदायिक रेडियो गुंजन धर्मशाला कने तो हाँ सारी कार्यक्रम सुना देना माटी दी महक तो श्रोताओं बढ़ते ने कार्यक्रम च अगे कने सुन दे निक और प्यारा दिया गीत।

इस वक्त तो हाँ सारे कार्यक्रम सुना देन माटी दी महक अपनी रेडियो दो शशि करने तो श्रोताओं बढ़ देन कार्यक्रम चगे कने सुन देने एक और प्यारा दिया गीत।

ये तुहां सारें दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कने तुहां सारे इस वक्त कार्यक्रम सुना दे न माटी दी महक अपनी रेडियो दो शशि कन्ने तो शो तो बढ़ दे न कार्यक्रम च अग्गे कने सुन दे न एक और प्यारा दिया गीत।

है तोहां सारे दा रेडियो गुंजन धर्मशाला तेने तोहां सारे कार्यक्रम सुना देन माटी दी महक आशो तो बढ़ देन कार्यक्रम जग गए तेने सुन देन एक और प्यारा दिया गीत।

हाँ बोला थे ना रेडियो गुंजन धर्मशाला थे कने तो हाँ सारे ट्यून किते है अपना समुदायिक रेडियो गुंजन धर्मशाला कने इस वक्त कार्यक्रम चल रहा है माटी दी महक श्रोताओं सुन दे एक और प्यारा दिया गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। तो हाँ सारे ट्यून कितने है अपना सामुदायिक रेडियो गुंजन धर्मशाला। तुने तो हाँ सारी कार्यक्रम सुना देना माटी भी महक। तो श्रोताओं बढ़ते न कार्यक्रम च अगे कने सुन देने एक और प्यारा दिया गीत।

92.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ए तो हां सारे दा रेडियो गुंजन धर्मशाला कने तो हां सारे कार्यक्रम सुना दे थे माटी दी महक कहा श्रोता अज कने कार्यक्रम च बस इतना ही तो हां सारे ने बनी रिया रेडियो गुंजन धर्मशाला कने गूंज।

0: क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दें अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAK+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 72 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर, भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंगफोर्ड और लिंक्डइन लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक होस्टल वातावरण। GGI जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं, तो आज ही जाएं APEX+ पॉइंट ऑथराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी कॉलेज रोड सिविल लाइन धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।
1: खुशी कौन नहीं चाहता, लेकिन किस कीमत पर? धूम्रपान महंगा पड़ता है। धूम्रपान आपके लिए हानिकारक है और आपके चाहने वालों के लिए भी। धूम्रपान पड़ेगा महंगा।
0: नमस्कार दोस्तों, चुनावी चर्चा की चौपाल अब सजेगी आपके अपने रेडियो गुंजन पर। पंचायती राज और स्थानीय निकाय चुनाव की हलचल तेज है। ग्राम स्वराज के लिए काबिल प्रतिनिधि चुनने का वक्त आ गया है और इस खास अवसर पर रेडियो गुंजन धर्मशाला आप सभी के लिए लेकर आ रहा है विशेष कार्यक्रम चुनाव संवाद। इस कार्यक्रम में हम आपके क्षेत्र के उम्मीदवारों से सीधी बातचीत करेंगे और उठाएंगे आपके मुद्दे, आपके सवाल। क्या आप चाहते हैं कि आपके क्षेत्र के उम्मीदवार इस मंच पर आएं? क्या आपके मन में है कुछ सवाल जिनका जवाब आप जानना चाहते हैं? तो देर किस बात की, अभी अपने सवाल और अपने क्षेत्र के उम्मीदवार का नाम हमें भेजें व्हाट्सएप या SMS के माध्यम से। हमारा नंबर रहेगा 7018170918117091। आइए बने एक जागरूक नागरिक, क्योंकि आपका वोट आपकी आवाज़ है।

0: जागो धर्मशाला वासियों जागो,
1: क्योंकि हमारा शहर हमारी जिम्मेदारी है।
0: इस बार चुनाव में केवल वोट न दें, बल्कि धर्मशाला का बेहतर भविष्य चुनें। मतदान करने से पहले कुछ खास बातों पर गौर करें।
1: क्या आपके वार्ड में सड़कें, साफ पानी, कूड़ा प्रबंधन और स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था दुरुस्त है? नगर निगम के पिछले कार्यों की जाँच करें और तथ्यों के आधार पर ही निर्णय लें।
0: उम्मीदवार की योग्यता देखें। हमें ऐसा प्रतिनिधि चाहिए जो ईमानदार और पारदर्शी हो, जनता के प्रति जवाबदेह हो, विकास और पर्यटन के प्रति समर्पित हो।
1: याद रखें, लापरवाही में लिया गया एक गलत फैसला 5 साल का पछतावा बन सकता है। जाति, धर्म या किसी प्रलोभन में बिल्कुल ना आए, केवल योग्यता और विकास को ही वोट दें।
0: जी बिल्कुल, आपका एक वोट धर्मशाला को स्वच्छ, सुंदर और समृद्ध बना सकता है।
1: तो बिल्कुल, सबसे पहले सोचे, जांचे, परखे
0: और फिर अपना कीमती वोट देकर धर्मशाला को सवारे।
2: गुड्डी, किससे चैटिंग चल रही है?
3: मामा, नो शेयरिंग।
2: कोई स्पेशल? हाँ, बैंक अकाउंट डिटेल्स, केवाईसी के लिए 10 मिनट दीजिए।
3: कौन था?
2: बैंक, केवाईसी अपडेट के लिए अकाउंट नंबर, पिन और ओटीपी मांगा है।
3: और आप मान गए? जब हम अपनी पर्सनल बातें हर किसी के साथ शेयर नहीं करते, तो अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स क्यों शेयर करेंगे?
2: स्मार्ट गर्ल।
3: याद रहे मामा, डिजिटल लेन देन के लिए किसी को भी अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स ना दे। ओटीपी और पिन नंबर तो कभी नहीं, हमेशा भरोसेमंद नेटवर्क का ही इस्तेमाल करें।
4: अपने जीवन की जो लगाम है उसे खुद पकड़ के रखना है। आप क्या पढ़ना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो, किस तरीके से अपने जीवन को जीना चाहते हो, उस एस्पिरेशन को आप खुद सोचो और खुद उसके लिए ये सोचो कि आप उस एस्पिरेशन को पाने का क्या रास्ता है।
5: जी मम्मी जी, नहीं हम आगे से कहीं नहीं जाएंगे। ठीक है, ओके।
3: क्या हुआ?
5: अरे कुछ नहीं, मम्मी का कॉल था, बोल रहे थे तुम लोग बेफजूल के खर्चे बहुत ज्यादा करने लग गए हो, हर दूसरे दिन बाहर घूम रहे होते हो, बाहर

क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दें अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAC+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 72 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर, भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंगफोर्ड और लिंक्डइन लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक होस्टल वातावरण। GGI जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं, तो आज ही जाएं APEX+ पॉइंट ऑथराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी कॉलेज रोड सिविल लाइन धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।

0: 7.
1: खुशी कौन नहीं चाहता, लेकिन किस कीमत पर? धूम्रपान महंगा पड़ता है। धूम्रपान आपके लिए हानिकारक है और आपके चाहने वालों के लिए भी। धूम्रपान पड़ेगा महंगा।
2: नमस्कार दोस्तों, चुनावी चर्चा की चौपाल अब सजेगी आपके अपने रेडियो गुंजन पर। पंचायती राज और स्थानीय निकाय चुनाव की हलचल तेज है। ग्राम स्वराज के लिए काबिल प्रतिनिधि चुनने का वक्त आ गया है और इस खास अवसर पर रेडियो गुंजन धर्मशाला आप सभी के लिए लेकर आ रहा है विशेष कार्यक्रम चुनाव संवाद। इस कार्यक्रम में हम आपके क्षेत्र के उम्मीदवारों से सीधी बातचीत करेंगे और उठाएंगे आपके मुद्दे, आपके सवाल। क्या आप चाहते हैं कि आपके क्षेत्र के उम्मीदवार इस मंच पर आए? क्या आपके मन में है कुछ सवाल जिनका जवाब आप जानना चाहते हैं? तो देर किस बात की, अभी अपने सवाल और अपने क्षेत्र के उम्मीदवार का नाम हमें भेजें व्हाट्सएप या एसएमएस के माध्यम से। हमारा नंबर रहेगा 7018117019701. आइए बने एक जागरूक नागरिक, क्योंकि आपका वोट आपकी आवाज़ है।

0: जागो धर्मशाला वासियों जागो,
1: क्योंकि हमारा शहर हमारी जिम्मेदारी है।
0: इस बार चुनाव में केवल वोट न दें, बल्कि धर्मशाला का बेहतर भविष्य चुने। मतदान करने से पहले कुछ खास बातों पर गौर करें।
1: क्या आपके वार्ड में सड़कें, साफ पानी, कूड़ा प्रबंधन और स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था दुरुस्त है? नगर निगम के पिछले कार्यों की जांच करें और तथ्यों के आधार पर ही निर्णय लें।
0: उम्मीदवार की योग्यता देखें। हमें ऐसा प्रतिनिधि चाहिए जो ईमानदार और पारदर्शी हो, जनता के प्रति जवाबदेह हो, विकास और पर्यटन के प्रति समर्पित हो।
1: याद रखें, लापरवाही में लिया गया एक गलत फैसला 5 साल का पछतावा बन सकता है। जाति धर्म या किसी प्रलोभन में बिल्कुल ना आए, केवल योग्यता और विकास को ही वोट दें।
0: जी बिल्कुल, आपका एक वोट धर्मशाला को स्वच्छ, सुंदर और समृद्ध बना सकता है।
1: तो बिल्कुल, सबसे पहले सोचे, जांचे, परखे
0: और फिर अपना कीमती वोट देकर धर्मशाला को सवारे।
2: गुड्डी, किससे चैटिंग चल रही है?
3: मामा, नो शेयरिंग।
2: कोई स्पेशल? हाँ, बैंक अकाउंट डिटेल्स, KYC के लिए 10 मिनट दीजिए।
3: कौन था?
2: बैंक, KYC अपडेट के लिए अकाउंट नंबर, पिन और OTP मांगा है।
3: और आप मान गए? जब हम अपनी पर्सनल बातें हर किसी के साथ शेयर नहीं करते, तो अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स क्यों शेयर करेगा?
2: स्मार्ट गर्ल।
3: याद रहे मामा, डिजिटल लेन देन के लिए किसी को भी अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स ना दे। OTP और पिन नंबर तो कभी नहीं, हमेशा भरोसेमंद नेटवर्क का ही इस्तेमाल करें।
4: अपने जीवन की जो लगाम है उसे खुद पकड़ के रखना है। आप क्या पढ़ना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो, किस तरीके से अपने जीवन को जीना चाहते हो, उस एस्पिरेशन को आप खुद सोचो और खुद उसके लिए ये सोचो कि आप उस एस्पिरेशन को पाने का क्या रास्ता है।
5: जी मम्मी जी, नहीं, हम आगे से कहीं नहीं जाएंगे। ठीक है, ओके।
3: क्या हुआ?
5: अरे कुछ नहीं, मम्मी का कॉल था। बोल रहे थे तुम लोग बेफजूल के खर्चे बहुत ज्यादा करने लग गए हो, हर दूसरे दिन बाहर घूम रहे होते हो, बाहर मूवी देख रहे होते हो, कभी खाना खा रहे होते हो। बोल रहे खर्चों पे थोड़ा कंट्रोल करो, पैसे पेट पे नहीं उगते।
3: क्या वो ऐसे कैसे बोल सकते हैं? हम दोनों की शादी हो चुकी है, जहाँ हमारा दिल करे हम वहाँ जा सकते हैं, जो मन चाहे वो खा सकते हैं। मुझे ना उनकी यही बात नहीं पसंद, उन्हें हर चीज में टोकना होता है, हर चीज में इंटरफेयर करना होता है।
5: अरे यार, एक काम करो, ये लो फोन, तुम खुद ही अपनी मम्मी को फोन करके बोल दो ये सब।
3: क्या हो गया? हमारे माँ बाप नहीं अगर हमें समझाएंगे तो कौन समझाएगा, बताओ?

91.2 मेगाहर्ट्ज पुठे रेडियो गुंजन धर्मशाला तो है सभी ट्यून करूरा और श्रोतो आऊ हाँ तो सुगे तुंद अपना होस्ट और दोस्त सचिन कपूर क्या हाल चाल न तुंदे और क्या हाल चाल न तुंदे ग्रां रे उम्मीद करनो तो है भी ठीक ग्रां भी ठीक श्रोतो कार्यक्रम हिंदी अपनी गप्पा लेकर आऊ यानी कि तुंद अपना होस्ट और दोस्त सचिन कपूर हाजिर भुची गुआ आइये श्रोतो कार्यक्रम रा आगाज कर देने सभी पहले इस खूबसूरत गीत होगे आइये हूं देन श्रोतो एक गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर थे रेडियो गुंजन धर्मशाला तो है सब ये ट्यून कर रहा और कार्यक्रम हिंदी अपनी गप्पा श्रोतों इस वक्त चल रही ना तुम जैसा बीवे रेडियो सेट मा ता श्रोतों हेरे लिया मुरली कैसी बजाई काने। जी हाँ, ऐसी बजाई मुरली कि सुध बुध किया सुख होएगी। ईशान भारद्वाज इस गीत अंदर ये दस हुआ कि मुरली ऐसी बजाई थी कि सुध बुध किया सुख होएगे थे। तैयार श्रोता हूँ कार्यक्रम जो हगु बढ़ंदन और हगु हुंडन है प्यारे दिया गीत तो है बने रहा रेडियो गुंजन धर्मशाला सोगे।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर टी रेडियो गुंजन धर्मशाला तो सभी ट्यून कर रहा है। कार्यक्रम इस वक्त चल रहा हिंदी अपनी गप्पा तो श्रोतो केवल लूंते निशान भारद्वाज की रूप भी बदले और जहने रूप बदले तो माबुड़े भी डरे सेली भी डरी गोरारी और सब डरे है ना, पर रूप बदलना बड़ा ज्यादा जरूरी है। श्रोतो तो है भी अपनी जिंदगी अंदर रूप जरूर बदला लेकिन इंसानियत रहा रूप किया सो जरूर बदला। श्रोतो यानी कि अच्छे काम किया अच्छे रूपांतर काम किया सो जरूर करो करा और अच्छे अच्छे काम जरूर करो करा। बहरहाल है श्रोतो याद रखा अगर तो है कुछ अच्छा हुन दिन इस समय तो सो हुन दिन कार्यक्रम हिंदी अपनी गप्पा सचिन कपूर सोगे। आइए श्रोतो कार्यक्रम जो आगू बढ़न दिन और अगला गीत हुन दिन तुंदे वीडियो सेट मा

शतों ये रेडियो गुंजे ना और तुम अपना रेडियो गुंजे ना और आऊं तुम अपना सचिन कपूर 91.2 MHz पुटी तो है रेडियो गुंजन जो ट्यून कर रहा ता शतों जी हाँ बिंद्रा बना वो खेरी गोजरियों कुणी वो ने रहने है ना कुणी वो ने रहने ता बिल्कुल क्या बोलूं दे निशान भारद्वाज इस गीत अंदर तो है सब ये हुनु अशोतों और ता शतों कान के बोलूं दे कि अगली ये हटी गच्छे और पिछली ये मुड़ी गच्छे पर गबली जो किया सो गाना न दिला तत्व है भी बिल्कुल जो गब्बे बकरे तुम देते सी मत गाने दे बखाली हड्डा को कार्यक्रम बड़ा मस्त था और ये चलना मस्त मस्त बन कर इस कार्यक्रम बरहाल है श्रोता याद रखा अच्छा हुनुंदे था क्या हुनुंदे वीडियो गुंजन तब श्रोतों आइया कार्यक्रम जो हागो बढ़न और कार्यक्रम मंच हुनदेन अबे प्यारे दिया गीत।

तो श्रोतों कार्यक्रम इस वक्त चल रहा है अपनी गप्पा तुम सभी वे वीडियो सेट में और बिल्कुल ईणा पीवा वो मुझो भी ईणा पीवा को कार्यक्रम चल रहा था मुझो भी ईणा पहना है तुम दिल आऊना तोड़ी सकता सभी श्रोता रहा और बिल्कुल आक मौके किया सो मिलने जो खोल वो खिड़की ताक मौके तो है भी खोली दिया अपनी अपनी खिड़की यार हेरा कुणी चुंदा मिलने जो और कुणी रुंदा तुसु बार आता हूँ नारदाना हो शिमलो नारदाना हो बड्डी वो सुट्टा नक तेरा तो जो क्या गलाना हो अब जिसियो नक्का सर हमने वो आता तसियो क्या बोलना है ना जैसा दब्बू बुआ जैसा कोले बुआ बरहाल है शोधों सभी अपने अपने नक्का सर हम क्या सो रखना चाहिए इंदिया याद रखा तो है कुछ खरा हुन उन्दे इंदा कार्यक्रम इंदिया अपनी गप आइए शोधों कार्यक्रम जो बिल्कुल हगो बड़े और कार्यक्रम में हुन देन ये प्यारे दिया गीत

आहा शो तो मजा चले ऐसे गीत हुनेरा चिट्टी वो चरेली नार पर आयो कजो मेवे दिलड़ू जो भायो तबे चिट्टी चरेली नारा के बंदी ने शो तो सो सीधा दिलड़ू जो के ना सो भाई गंदी ना है ना और फिर वे भी भाई गंदी ना ता पर शो तो है गल्ला रे भी याद रखा चिट्टी वो चरेली नार के है सो कुंवारी बुआ को रोज रोज घरे घरे झंडे के सोना जुलना तुम दे है ना को आजकल ट्रेंड चल रहा ताओ बल्लो कर दा और तुसु पता जो भी बनो बिल्कुल साफ और सटीक बनो पर हाल याद रखा तो है कुछ खारा हुनुं देन ता सो हुनुं देन कार्यक्रम हिंदी अपनी गप्पा सचिन कपूर सोगे शो तो बर हाल टाइम मारा ना पता ना चलता तुसु होगी गप मार दे तुसु होगी इन्हीं

नमस्कार, रेडियो गुंजन धर्मशाला से अब आप सभी सुनेंगे ये खास समाचार बुलेटिन रुचिका के साथ। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों की हेडलाइंस पर। थोक महंगाई एक महीने में दोगुनी, 42 माह के उच्च स्तर पर। चुनाव ड्यूटी में तैनात हजारों कर्मी नहीं डाल सकेंगे इस बार वोट। विद्यार्थियों को बड़े संस्थानों में मिलेगी ऑन द जॉब ट्रेनिंग। हिमाचल के एंटी चिट्टा मॉडल से सीखेंगे दूसरे राज्य। बीएड डीएलएड प्रशिक्षु दूसरे जिलों में भी ले सकेंगे ट्रेनिंग। क्रिकेट टिकट बुकिंग के नाम पर हो रही है साइबर ठगी। अब समाचार विस्तार से। पश्चिमी एशिया संकट के कारण कच्चे तेल की बढ़ी कीमतों का असर महंगाई पर ज्यादा दिखने लगा है। ईंधन, बिजली, कच्चे पेट्रोलियम व एलपीजी की कीमतों में तेज उछाल से थोक महंगाई अप्रैल 2026 में बढ़कर 42 महीने के उच्चतम स्तर 8.3% पर पहुंच गई। हिमाचल प्रदेश में होने जा रहे पंचायत चुनाव में लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए फील्ड में उतरे हजारों अधिकारी और कर्मचारी खुद मतदान से वंचित रहेंगे। हिमाचल प्रदेश में 3,758 पंचायतों, जिला परिषद के 251 वार्डों, पंचायत समिति के 1,769 और 21,739 वार्डों में तीन चरणों में चुनाव होने हैं। लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व को सफल बनाने के लिए लगभग 13,000 सरकारी कर्मचारियों की चुनावी ड्यूटी लगाई गई है, लेकिन अब विडंबना ये है कि इन्हीं कर्मचारियों में से हजारों अपने मत अधिकार का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। हिमाचल प्रदेश में पेट्रोल और डीजल पर सेस लगाने की तैयारी शुरू हो गई है। राज्य सरकार ने विधानसभा बजट सत्र में संशोधित विधेयक पास कर अनाथ और विधवाओं के कल्याण के लिए अधिकतम 5 रुपए सेस लगाने का फैसला लिया गया था। वीरवार को आबकारी एवं कर विभाग की ओर से अधिसूचना जारी कर लोक भवन से इस संशोधन विधेयक को मिली मंजूरी से विभाग के जिला अधिकारियों को अवगत कराया गया है। एसपीयू प्रशासन ने बीएड छात्रों के लिए फीस रिफंड को लेकर सूचना जारी की है। जिन छात्रों का स्थानांतरण वल्लभ गवर्नमेंट कॉलेज मंडी से अन्य कॉलेजों में हुआ है, उनको आवश्यक दस्तावेजों और पहचान पत्र के साथ बीजीसी मंडी के प्रधानाचार्य कार्यालय में संपर्क करने के लिए कहा गया है। पात्र विद्यार्थियों को जमा की गई फीस वापस की जाएगी। इसमें सुरक्षा जमा राशि शामिल होगी, जबकि पहले सेमेस्टर की फीस रिफंड नहीं की जाएगी। सरकारी विद्यालयों में विभिन्न वोकेशनल ट्रेड्स में अध्ययनरत 4,416 विद्यार्थियों को विभिन्न सेक्टर में व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। विद्यार्थियों को प्रदेश से बाहर प्रतिष्ठित औद्योगिक संस्थानों, कंपनियों और होटल समूहों में ऑन द जॉब ट्रेनिंग प्रदान की जा रही है। ये पहली बार है कि समग्र शिक्षा वोकेशनल विद्यार्थियों को प्रदेश से बाहर के प्रतिष्ठित संस्थानों में हाई लेवल हैंड्स ऑन एक्सपोजर और इंडस्ट्री आधारित प्रशिक्षण उपलब्ध करवा रहा है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला ने उत्तर क्षेत्र अंतर विश्वविद्यालय और ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को राहत देते हुए परीक्षा की डेट शीट जारी कर दी है। खेल प्रतियोगिताओं के कारण नियमित परीक्षाओं में शामिल नहीं हो सके बीए और बीकॉम प्रथम, द्वितीय और तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों की परीक्षाएं अब 18 से 20 मई तक होंगी। हिमाचल प्रदेश में लागू एंटी चिट्टा मॉडल अब राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन गया है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के क्षेत्रीय कार्यालय ने हिमाचल प्रदेश में इस मॉडल का विस्तृत विवरण मांगा है। इसके अध्ययन के बाद अन्य राज्यों में भी इसे लागू करने की संभावनाएं तलाश की जा सके। प्रदेश के बीएड और डीएलएड प्रशिक्षुओं को अब अपनी सुविधा और निवास स्थान के अनुसार दूसरे जिलों के स्कूलों में भी शिक्षक प्रशिक्षण करने की अनुमति मिलेगी। स्कूल शिक्षा निदेशालय ने इस संबंध में सभी जिला उपनिदेशकों को निर्देश जारी किए हैं। इसमें कहा है कि प्रशिक्षुओं की पसंद के अनुसार स्कूल आवंटन में अनावश्यक बाधा न डाली जाए। क्रिकेट मैच टिकट बुकिंग के नाम पर साइबर ठगी के मामलों में बढ़ोतरी हुई है। राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन 1930 के डाटा सेंटर पर बीते कुछ दिनों में बड़ी संख्या में ऐसी शिकायतें पहुंची हैं। इसमें लोगों से ऑनलाइन टिकट बुकिंग के बहाने ठगी की जा रही है।
मेडिकल के स्नातक पाठ्यक्रमों में दाखिले से जुड़ी परीक्षा नीट यूजी का पेपर लीक होने एवं परीक्षा रद्द होने से परेशान छात्रों और अभिभावकों की निगाहें अब दोबारा होने वाली परीक्षा पर टिकी हैं, यानी ये परीक्षा कब और कैसे होगी। फिलहाल जो संकेत मिल रहे हैं उसके तहत छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए कम से कम एक महीने तक का समय दिया जा सकता है। ऐसे में ये परीक्षा जून के पहले या फिर दूसरे रविवार को कराई जा सकती है। नादौन से वाया घगरेट से पंजाब बॉर्डर तक टू लेन सड़क अब फोर लेन बनेगी। करीब 60 किलोमीटर लंबी ये सड़क होशियारपुर से लेकर हमीरपुर कांगड़ा को भी आपस में जोड़ेगी। केंद्रीय सड़क व परिवहन मंत्रालय को ये मामला फाइनल करने के बाद अप्रूवल के लिए भेज दिया है। वहां से अप्रूवल मिलने के बाद इस पर कार्य शुरू होगा और भूमि अधिग्रहण का कार्य भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वीरवार को धर्मशाला नगर निगम चुनावों के लिए कांग्रेस का चुनावी घोषणा पत्र जारी किया। विकास संकल्प नामक इस 29 सूत्री घोषणा पत्र में शहर के आधुनिक विकास और आम जनता की मूलभूत समस्याओं के समाधान का दावा किया गया है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि धर्मशाला को पर्यटन और खेल हब के रूप में विकसित करना सरकार की प्राथमिकता है। इसके लिए शिमला से कई महत्वपूर्ण कार्यालयों को धर्मशाला स्थानांतरित किया जा रहा है। प्रदेश सरकार ने पंचायत राज संस्थाओं के आम चुनावों को लेकर बड़ा फैसला लेते हुए मतदान दिवस पर संबंधित क्षेत्रों में भुगतान सहित अवकाश घोषित किया है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार पंचायत चुनावों के तीन चरणों 26 मई 28 मई और 30 मई को संबंधित क्षेत्रों में सरकारी और निजी संस्थान बंद रहेंगे ताकि अधिक से अधिक लोग अपने मत अधिकार का प्रयोग कर सके। जारी आदेशों के अनुसार 26 मई को पहले चरण, 28 मई को दूसरे चरण और 30 मई को तीसरे चरण के मतदान वाले क्षेत्रों में ये अवकाश लागू रहेगा। हिमाचल के सीबीएसई स्कूलों के लिए बोर्ड की भारी भरकम शर्तों को पूरा करना होगा। सीबीएसई स्कूलों में छात्रों को स्किल कोर्सेज व लैब्स की सुविधा अनिवार्य है। अगर ये शर्तें पूरी नहीं होती हैं, तो सीबीएसई की मान्यता रद्द हो सकती है। हालांकि स्कूल शिक्षा निदेशालय ने सीबीएसई स्कूलों में कौन कौन से स्किल कोर्सेज शुरू करने हैं इसका प्रारूप तैयार कर दिया है। हिमाचल के सीबीएसई स्कूलों में 9वीं कक्षा के छात्र नए सिलेबस के साथ पढ़ाई करेंगे। इसके लिए शिक्षा अधिकारियों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। वीरवार को शिक्षा सचिव राकेश कंवर ने अधिकारियों के साथ बैठक कर इस संबंध में आवश्यक आदेश दिए हैं। ऐसे में अब 158 सीबीएसई से मान्यता प्राप्त सरकारी स्कूलों में 9वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए जल्द नया पाठ्यक्रम लागू कर दिया जाएगा। प्रदेश में बाहरी राज्य से आने वाले मजदूरों से जुड़ी खास खबर है। अब यूपी, बिहार, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब व अन्य राज्यों से आए मजदूरों को सरकार की हर योजना का लाभ मिलेगा। हालांकि इसके लिए आधार वेरिफिकेशन जरूरी रहेगी। हिमाचल सरकार ने भवन एवं अन्य सनिर्माण बोर्ड की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए आधार संख्या को अनिवार्य करने संबंधी अधिसूचना वीरवार को जारी कर दी है। हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं और शहरी निकाय चुनावों को निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग ने इस बार बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश में पहली बार जिला परिषद, बीडीसी और नगर निकाय चुनावों की मतगणना की वेबकास्टिंग की जाएगी। आयोग ने सभी जिला उपायुक्तों को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं। अब एक नजर मौसम पे। हिमाचल प्रदेश में कई क्षेत्रों में एक बार फिर से तेज बारिश ने मौसम के रुख में परिवर्तन किया है। प्रदेश में अलर्ट के बीच बीते 24 घंटों के दौरान शिमला, हमीरपुर, बिलासपुर और कांगड़ा समेत अन्य हिस्सों में तेज हवाओं, बादलों की गड़गड़ाहट और हल्की से मध्यम बारिश हुई है। वहीं कई जगह अचानक चले अंधड़ से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार राज्य के 5 जिलों चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, शिमला में 2 दिन 15 और 16 मई को तेज हवाओं और अंधड़ का येलो अलर्ट जारी किया है। 17 मई को ऊंचाई वाले

से, कोई तो बताओ, कोई समझाओ, दिल इसको दूं या उसको दूं। इतनी बड़ी महफिल और एक दिल किसको दूं।

सुलझाओ दिल, इसको दूं या उसको दूं।

श्रोताओ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला लेकर आपकी रेडियो दोस्त पिंकी हाजिर हो गई हूँ। श्रोताओ कार्यक्रम में आपसे करेंगे बातचीत, जानकारियाँ साझा करेंगे और साथ ही साथ सुनाएंगे आपको प्यारे प्यारे से गीत। आइए कार्यक्रम में सबसे पहले जानते हैं इस वक्त धर्मशाला का तापमान। 16 डिग्री सेल्सियस तापमान है श्रोताओं और वातावरण में नमी है 56%। जी हाँ श्रोताओं, तापमान में जो है वो कह सकते हैं कि थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई है। और जब भी मौसम थोड़ा सा गर्म होता है तो यहाँ पे बारिश हो ही जाती है और हमें उस गर्मी से राहत मिलती है। तो मौसम चाहे जैसा भी हो, गर्मियों के दिन हैं श्रोताओं और गर्मियों में पानी जो है हमें समय समय पर पीते रहना है। हमारी सेहत के लिए और हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा होता है पानी, इसलिए पानी समय समय पर पीते रहें। ज़रूरी नहीं जब प्यास लगेगी, गला सूखेगा तभी पिएंगे, थोड़े थोड़े समय के अंतराल के बाद पानी ज़रूर पिएं। श्रोताओ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ, कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और कार्यक्रम का आगाज़ करते हैं श्रोताओं इस प्यारे से गीत के साथ।

श्रोतो 91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और कार्यक्रम में आप समय है आपके साथ आज का विचार साझा करने का। आइए सुनते हैं श्रोताओं आज का विचार। मुश्किलें जिंदगी का हिस्सा हैं, वे हमें कमजोर करने नहीं बल्कि हमारा हौसला मजबूत करने आती हैं। आज का विचार

भी कभी मुश्किल दौर और मुश्किलें आएं तो घबराइए नहीं, उन मुश्किलों को धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ आप ज़रूर पार कीजिए। और जब आप उन मुश्किलों को पार कर जाएंगे तो ज़िंदगी आपको खूबसूरत लगेगी, और आपके आसपास अगर कोई दोस्त रिश्तेदार आपसे उस मुश्किल दौर में, यानी जब उनकी ज़िंदगी में मुश्किल दौर आएगा, तो आप उन्हें ये बात कह सकते हैं कि मुश्किलों से घबराना नहीं है, मुश्किलों का डटकर सामना करना है, और जब आप सामना करेंगे तो आप और भी मजबूत और भी ज़िंदा दिल इंसान बन जाएंगे। श्रोताओं, ये था हमारा आज का विचार, और विचार को हमने विस्तार पूर्वक आपके साथ साझा किया है। तो मुश्किलों से घबराइए नहीं और हिम्मत रखिए, ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। मुश्किलों को पार करते हैं जो, वही ज़िंदगी को अच्छा और आसान बनाते हैं। श्रोताओं, 91.2 MHz पर आप हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ, कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और अब लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

श्रोताओ, मैं प्रेम की दीवानी हूँ चित्रा और केके की आवाज़ में अभी आपने ये प्यारा सा गीत सुना। 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

बच्चों तो आज है 15 मई का दिन और क्या कुछ खास रहता है आज के दिन ये भी आपके साथ हम साझा करेंगे। तो आइए जानते हैं क्या खास रहता है आज के दिन। 14-15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस जो है वो पूरी दुनिया में मनाया जाता है और इस वर्ष परिवार असमानताएं और बाल कल्याण बाल विकास पर केंद्रित नीतियों पर जोर देता है। ये दिन परिवार के महत्व और समाज में उसकी भूमिका को उजागर करता है। क्या मुख्य बातें हैं इसकी, ये हर साल 15 मई को मनाया जाता है और इसका उद्देश्य है परिवार से संबंधित मुद्दों के प्रति जागरूकता बढ़ाना और परिवारों को प्रभावित करने वाली सामाजिक, आर्थिक और जनसांख्यिकीय प्रक्रियाओं के बारे में ज्ञान को बढ़ावा देना। ये दिन परिवार को समाज का मूल आधार और सतत विकास के लिए आवश्यक मानता है। हर साल इसे

श्रोताओ, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1993 में एक प्रस्ताव के माध्यम से 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के रूप में इस दिन को घोषित किया था और तब से आज तक हर साल ये दिन मनाया जाता है। यानी आज के दिन 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस जो है वो मनाया जाता है। श्रोतो, 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला, अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। परिवार दिवस के बारे में कार्यक्रम में आपसे और भी बातचीत करेंगे श्रोताओं। फिलहाल चलते हैं कार्यक्रम के अगले प्यारे से गीत की ओर। एंजॉय कीजिए कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला। इस समय आप सुन रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और श्रोताओं, कार्यक्रम में अब समय है छोटे से अंतराल का, यूं ही बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए रेडियो गुंजन, गूंज अपनेपन की।

0: दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दें अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAC+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 72 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर, भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंग फोर्ड और लिंक्डइन लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI, जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं, तो आज ही जाएं APEX+POINT ऑथोराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी कॉलेज रोड सिविल लाइन धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।
1: खुशी कौन नहीं चाहता, लेकिन किस कीमत पर? धूम्रपान महंगा पड़ता है। धूम्रपान आपके लिए हानिकारक है और आपके चाहने वालों के लिए भी। धूम्रपान पड़ेगा महंगा।
0: नमस्कार दोस्तों, चुनावी चर्चा की चौपाल अब सजेगी आपके अपने रेडियो गुंजन पर। पंचायती राज और स्थानीय निकाय चुनाव की हलचल तेज है। ग्राम स्वराज के लिए काबिल प्रतिनिधि चुनने का वक्त आ गया है और इस खास अवसर पर रेडियो गुंजन धर्मशाला आप सभी के लिए लेकर आ रहा है विशेष कार्यक्रम चुनाव संवाद। इस कार्यक्रम में हम आपके क्षेत्र के उम्मीदवारों से सीधी बातचीत करेंगे और उठाएंगे आपके मुद्दे, आपके सवाल। क्या आप चाहते हैं कि आपके क्षेत्र के उम्मीदवार इस मंच पर आए? क्या आपके मन में है कुछ सवाल जिनका जवाब आप जानना चाहते हैं? तो देर किस बात की, अभी अपने सवाल और अपने क्षेत्र के उम्मीदवार का नाम हमें भेजें व्हाट्सएप या SMS के माध्यम से। हमारा नंबर रहेगा 7018170918117091। आइए बने एक जागरूक नागरिक, क्योंकि आपका वोट आपकी आवाज़ है।
2: श्रोताओ, 91.2 MHz पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला, अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और अंतराल के बाद श्रोताओ, आइए चलते हैं गीत संगीत की ओर, सुनाते हैं आपको कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

शोधो 91.2 मेगाहर्ट्स पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और श्रोताओं कार्यक्रम में अब चलते हैं जानकारियों की ओर।

0: उपायुक्त कांगड़ा हेमराज बैरवा ने आज उपायुक्त कार्यालय स्थित NIC वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल में हीटवेव, वनाग्नि तथा संभावित जल संकट से निपटने की तैयारियों को लेकर आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ पूर्व तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उपायुक्त ने कहा कि संभावित चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए त्वरित सूचना आदान प्रदान, संसाधनों की उपलब्धता तथा विभागीय तालमेल अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने वन विभाग, जल शक्ति विभाग, अग्निशमन विभाग, जिला आपदा परिचालन केंद्र तथा फील्ड स्तर पर कार्यरत अधिकारियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि आपदा प्रतिक्रिया तंत्र को और अधिक सुदृढ़ बनाया जाए ताकि किसी भी आपात स्थिति में त्वरित तथा प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। उपायुक्त ने वनाग्नि संभावित क्षेत्रों की मैपिंग करने तथा उपलब्ध संसाधनों जैसे फायर स्टेशन, जल स्रोतों, वाहन एवं मानव संसाधन की विस्तृत सूची तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने वन विभाग को जिला में वनाग्नि की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों की सूचना SDM, अग्निशमन विभाग तथा पंचायत प्रतिनिधियों के साथ साझा करने के लिए भी कहा। श्रोताओं, ये थी जानकारी 91.2 MHz पर। आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ, कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और अब चलते हैं श्रोताओं कार्यक्रम के अगले प्यारे से गीत की ओर।
1: दूर दूर से बातें थी, हल्की हल्की

श्रोताओ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ, कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। श्रोताओ आज है अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस और ये दिवस मनाया जाता है परिवार की अहमियत हम लोगों को सिखाने और समझाने के लिए, और परिवार में रह कर के ही हम उस सुख और शांति और सुकून को महसूस कर सकते हैं और उस गर्माहट को नरमाहट को जो हमें बाहर कहीं नहीं मिलती। और इसीलिए श्रोताओं आज का ये दिन जो है वो विश्व स्तर पर मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के बारे में कार्यक्रम में हम आगे और भी बातचीत करेंगे। फिलहाल सुनते हैं कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

श्रोताओ 91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। फिर से रुक करते हैं जानकारियों की ओर। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त कांगड़ा हेमराज बैरवा ने आदेश जारी कर निकाय चुनावों के मद्देनज़र मतदान केंद्रों के आसपास प्रचार गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया है। ये आदेश हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1994 तथा हिमाचल प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1994 के प्रावधानों के तहत जारी किए गए हैं। जारी आदेशों के अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जिला कांगड़ा में नगर निकाय चुनावों के लिए 17 मई 2026 को सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतदान निर्धारित किया गया है। वहीं नगर परिषदों और नगर पंचायतों की मतगणना मतदान समाप्ति के तुरंत बाद संबंधित मुख्यालयों पर होगी, जबकि नगर निगम की मतगणना 31 मई 2026 को प्रातः 9 बजे से संबंधित नगर निगम मुख्यालय में आयोजित की जाएगी। आदेशों के तहत किसी भी मतदान केंद्र अथवा उसके 100 मीटर के दायरे में वोट के लिए मतदाताओं को प्रभावित करने, किसी उम्मीदवार के पक्ष अथवा विपक्ष में प्रचार करने तथा चुनाव संबंधी पोस्टर नोटिस प्रदर्शित करने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। ये आदेश नगर निगम धर्मशाला एवं पालमपुर, नगर परिषद कांगड़ा, नगरोटा बगवा, नूरपुर देहरा तथा नगर पंचायत शाहपुर के चुनावों के लिए लागू होंगे। श्रोताओं ये थी जानकारी। आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और अब कार्यक्रम में आनंद उठाइए कार्यक्रम के अगले प्यारे से गीत का, जिसे गाया है सोनू निगम और अलका याग्निक ने फिल्म जानशीन से।

श्रोताओं, 91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला, अपने रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे हैं श्रोताओं अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के बारे में। जी हां श्रोताओं, 15 मई का दिन है आज, और आज के दिन अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस जो है वो मनाया जाता है, जो समाज में परिवार की अहमियत, रिश्तों की मजबूती और उनके सामाजिक आर्थिक योगदान को रेखांकित करता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित ये दिन व्यस्त जीवन शैली में परिवार के साथ समय बिताने और प्रेम साझा करने का संदेश देता है। श्रोताओं, परिवार हम सब की जरूरत है, और परिवार के साथ रहकर हमारी ज़िंदगी और भी ज़्यादा सुखद आसान हो जाती है। और जो परिवार में नहीं रहते हैं वो इस चीज़ को भलीभांति जानते हैं कि परिवार से अलग रहकर व्यक्ति की क्या स्थिति हो जाती है। श्रोता, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस आज के दिन मनाया जा रहा है, और इसके बारे में कार्यक्रम में हम आगे और भी बात करेंगे। फिलहाल कार्यक्रम में अब समय हो रहा है समाचारों का। अब से कुछ ही देर बाद यानी 7 बजे आप सुनेंगे समाचार। श्रोताओं, यूं ही बने रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। सुनते रहिए रेडियो गुंजन, गूंज अपनेपन की।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अबुधाबी में राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात की है। बैठक के दौरान ऊर्जा सहयोग और द्विपक्षीय व्यापार पर प्रमुख रूप से चर्चा हुई। ये बातचीत पश्चिम एशिया संघर्ष से जुड़ी वैश्विक आपूर्ति बाधाओं के बीच हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई पर हाल ही में हुए हमलों की कड़ी निंदा की।
1: ये किसी भी रूप में स्वीकार करना नहीं है। इन कठिन परिस्थितियों में आपने जिस संयम करे और बिल्कुल सराहनीय राष्ट्रीय एकता सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता बनाए रखने आपके नेतृत्व में उठाए गए कदमों का हम अभिनंदन करते हैं।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने अमीरात के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की और कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है। एक रिपोर्ट।
2: दोनों देशों ने एक स्ट्रैटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। ये एक इम्पोर्टेंट कदम है जो दोनों देशों के बीच सिक्योरिटी कोऑपरेशन को एक फॉर्मल ढांचे में डालता है। दोनों देशों ने वडनगर में एक शिप रिपेयर क्लस्टर स्थापित करने के लिए भी एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए। इन्वेस्टमेंट के मोर्चे पर यूएई ने भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर आरबीएल बैंक और सम्मान कैपिटल में $5 बिलियन के इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यह भी एम्फसाइज किया कि भारत और यूएई के बीच कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कई सेक्टर्स में लगातार मजबूत होती जा रही है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबुधाबी।
0: प्रधानमंत्री मोदी अपनी यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स जाएंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत बेहतर और प्रभावी बहुपक्षीय व्यवस्था के लक्ष्य की तरफ बढ़ने में सभी साझेदारों के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। नई दिल्ली में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के दूसरे दिन के सत्र में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि ये बातचीत इस महत्व को उजागर करती है कि सभी नेता तेजी से बदलते विश्व में बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के पक्ष में हैं। डॉक्टर जयशंकर ने आज मलेशिया के विदेश मंत्री मोहम्मद हसन से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि बैठक के दौरान उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा की। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा है कि भारत पश्चिम एशिया में शांति स्थापना में बड़ी भूमिका निभा सकता है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री अराक्ची ने कहा कि ईरान से जुड़े किसी भी मामले का सैन्य समाधान नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि ईरान हॉर्मुज जलडमरू मध्य से सभी जहाजों को गुजरने में मदद के लिए तैयार है। श्री अराक्ची ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए नई दिल्ली में है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के साथ श्री सत्यसाई जिले के पुट्टपर्थी में उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान AMCA निर्माण इकाई की आधारशिला रखी। इस अवसर पर एक जनसभा में रक्षा मंत्री ने कहा कि आंध्र प्रदेश आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया रक्षा दृष्टिकोण का एक प्रमुख स्तंभ बनकर उभर रहा है। पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज मामले में 3 IPS अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। कोलकाता पुलिस के पूर्व आयुक्त विनीत गोयल, पूर्व उपायुक्त इंदिरा मुखर्जी और अभिषेक गुप्ता को आज कर्तव्य में लापरवाही बरतने, पीड़िता के माता पिता को रिश्वत देने और सरकारी अनुमति के बिना मीडिया ब्रीफिंग आयोजित करने के आरोप में निलंबित किया गया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मीडिया को बताया कि उनके खिलाफ विभागीय जांच कराई जाएगी। आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में कार्यरत महिला स्नातकोत्तर रेजिडेंट डॉक्टर की अगस्त 2024 में दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने आज से ईंधन बचाने के लिए कई उपायों की घोषणा की। इनमें अलग अलग दिनों में वर्चुअल सुनवाई, न्यायाधीशों की कारपूलिंग और 50% रजिस्ट्री कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था शामिल है। केरलम में दक्षिण पश्चिम मानसून के 26 मई तक आने की संभावना है। केरलम में मानसून के आगमन की सामान्य तिथि 1 जून है। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून सबसे पहले केरलम में आता है। आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ मुकाबले में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष डबल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। इस जोड़ी ने जापान के ताकुमी नोमुरा और युइची शिमोगामी को 21-12, 21-13 से हराकर सेमीफाइनल में जगह पक्की की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: श्रोताओ, 91.2 MHz पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला, अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और श्रोताओ, कार्यक्रम में अब समय है एक छोटे से अंतराल का। यूं ही बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए रेडियो गुंजन, गूंज अपने पन की।

0: क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दें अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAK+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 72 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर, भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंग फोर्ड और LinkedIn लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं, तो आज ही जाएं Apex+ पॉइंट ऑथराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी कॉलेज रोड सिविल लाइन धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।
1: खुशी कौन नहीं चाहता, लेकिन किस कीमत पर? धूम्रपान महंगा पड़ता है। धूम्रपान आपके लिए हानिकारक है और आपके चाहने वालों के लिए भी। धूम्रपान पड़ेगा महंगा।
0: नमस्कार दोस्तों, चुनावी चर्चा की चौपाल अब सजेगी आपके अपने रेडियो गुंजन पर। पंचायती राज और स्थानीय निकाय चुनाव की हलचल तेज है। ग्राम स्वराज के लिए काबिल प्रतिनिधि चुनने का वक्त आ गया है और इस खास अवसर पर रेडियो गुंजन धर्मशाला आप सभी के लिए लेकर आ रहा है विशेष कार्यक्रम चुनाव संवाद। इस कार्यक्रम में हम आपके क्षेत्र के उम्मीदवारों से सीधी बातचीत करेंगे और उठाएंगे आपके मुद्दे, आपके सवाल। क्या आप चाहते हैं कि आपके क्षेत्र के उम्मीदवार इस मंच पर आएं? क्या आपके मन में है कुछ सवाल जिनका जवाब आप जानना चाहते हैं? तो देर किस बात की, अभी अपने सवाल और अपने क्षेत्र के उम्मीदवार का नाम हमें भेजें व्हाट्सएप या SMS के माध्यम से। हमारा नंबर रहेगा 7018170918117091। आइए बने एक जागरूक नागरिक, क्योंकि आपका वोट आपकी आवाज है।
2: श्रोताओं, 91.2 MHz पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला इस समय आप सुन रहे हैं और सभी श्रोताओं का एक बार फिर से स्वागत है कार्यक्रम में। श्रोताओं, कार्यक्रम में अब चलते हैं गीत संगीत की ओर, सुनाते हैं आपको कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

91.2 MHz पर आप हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला। इस समय आप सुन रहे हैं श्रोताओं और कार्यक्रम में फिर से रुख करते हैं जानकारियों की ओर। गर्मियों के मौसम में हिमाचल प्रदेश की हरी भरी पहाड़ियों और धौलाधार की वादियों में प्राकृतिक रूप से उगने वाला जंगली पौधा लुंगड़ू आज भी लोगों के जीवन स्वास्थ्य और आजीविका से गहराई से जुड़ा हुआ है। प्रकृति की गोद में पनपने वाला ये पौधा केवल एक मौसमी सब्जी नहीं बल्कि पहाड़ी संस्कृति परंपरा और खान पान की जीवंत पहचान है। हिमाचल प्रदेश में अप्रैल से सितंबर तक मिलने वाला लुंगड़ू अपने औषधीय गुणों अनोखे स्वाद और पोषक तत्वों के कारण विशेष महत्व रखता है। इसे कई क्षेत्रों में लिंगड़ तथा कसरोड़ के नाम से भी जाना जाता है। विटामिन ए विटामिन बी कॉम्प्लेक्स आयरन फॉलिक एसिड और फाइबर से भरपूर ये पौधा स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभकारी माना जाता है। लुंगड़ू का वैज्ञानिक नाम डिप्लाजियम मैक्सिमम है। ये लंबे समय से पहाड़ी क्षेत्रों के पारंपरिक भोजन का हिस्सा रहा है। इसका उपयोग सब्जी और अचार दोनों रूपों में किया जाता है। कच्चे रूप में इसे हल्का कसैलापन होता है जो उबालने के बाद समाप्त हो जाता है। कांगड़ा जिला में शाहपुर क्षेत्र के धारकंडी के करेरी बोह तथा सल्ली सहित धौलाधार की पहाड़ियों में ये प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। धर्मशाला पालमपुर बैजनाथ तथा बरोड भंगाल के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भी लोग इसे बड़ी मेहनत से इकट्ठा करते हैं। लुंगड़ू केवल स्वाद और स्वास्थ्य तक सीमित नहीं है बल्कि ये पहाड़ी लोगों के लिए अतिरिक्त आजीविका का भी महत्वपूर्ण साधन है। शाहपुर के बो के रहने वाले कांता देवी और गुड्डो देवी बताती हैं कि ग्रामीण परिवार सुबह सुबह कई किलोमीटर की कठिन चढ़ाई चढ़कर इसे जंगलों से इकट्ठा करते हैं और पीठ पर ढोकर नीचे बाजारों तक पहुंचाते हैं। एक व्यक्ति प्रतिदिन 10 से 15 किलोग्राम तक लुंगड़ू इकट्ठा कर लेता है। इसके बाद इसे बंडल में बांध कर बाजारों में बेचा जाता है। उन्होंने बताया कि वे अक्सर शाहपुर बाजार में आकर इसे बेचती हैं। पहले ग्रामीण लोग इसे गाँव जाकर अनाज के बदले बेचते थे लेकिन बदलते समय के साथ अब इसकी बाजारों में अच्छी कीमत मिलने लगी है। औषधीय गुणों और बढ़ती मांग के कारण शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में लोग लुंगड़ू का बेसब्री से इंतजार करते हैं। इसकी सब्जी और अचार बड़े चाव से खाया जाता है। श्रोताओं, प्रकृति का ये अनमोल उपहार न केवल हिमाचल की पारंपरिक विरासत को जीवंत रखे हुए है बल्कि पहाड़ी लोगों की मेहनत संस्कृति और आत्मनिर्भरता की प्रेरक कहानी भी बयां करता है। तो श्रोताओं, ये थी

लुंगड़ू की कहानी हम कह सकते हैं, और आपने भी लुंगड़ू की सब्जी खा ही ली होगी और बाज़ारों में भी इसे रखा हुआ आपने देखा होगा। और अक्सर हम खरीदते समय उनसे मोल भाव करते हैं कि पहले तो इतने का आता था, अब 50 का कैसे हो गया, अब 80 का कैसे हो गया। तो इसकी जो पूरी कहानी है कि किस तरह से ग्रामीण पहाड़ों पर चढ़ के जाते हैं, फिर पीठ पर लाद के इसे शहर तक लाते हैं, और फिर बंडल बना करके इन्हें बेचने तक की पूरी लंबी प्रक्रिया होती है, तो इसमें मेहनत तो लगती है और खूब सारी मेहनत लगती है। इसलिए अगर 10-15 रुपए अगर हम ऐसे दे भी दें एक्स्ट्रा, तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। और साथ ही इनके जो औषधीय गुण हैं उनके बारे में भी हमने जाना, तो फिर तो इसे खाना ज़रूर बनता है जब भी इसका सीज़न आए। तो आप भी इस मौसम में अगर आपको कहीं पर फ्रेश ताज़ा लुंगड़ू दिखता है तो ज़रूर बनाइए, खाइए और खिलाइए श्रोताओं। 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ, कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और अब कार्यक्रम में ना मिलो हमसे ज़्यादा कहीं प्यार ना हो जाए। जी हाँ श्रोताओं, ये है गीत के बोल और यही गीत आप कार्यक्रम में आगे सुनने जा रहे हैं। एंजॉय कीजिए इस प्यारे से ट्रैक को रेडियो गुंजन धर्मशाला पर।

श्रोतो, बादल फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे कविता कृष्णमूर्ति और सोनू निगम की आवाज में। 91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ, कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला अपने रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और श्रोताओ, कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के बारे में। और ये जो दिन है, ये जो दिवस है, ये मनाया जाता है श्रोताओ खासकर परिवार की अहमियत को समझाने के लिए, परिवार की अहमियत को बताने के लिए कि परिवार हमारे लिए कितना ज़रूरी है। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस जो है श्रोताओं, हर साल आज ही के दिन 15 मई को मनाया जाता है ताकि समाज में परिवारों के महत्व को उजागर किया जा सके और विश्व भर में पारिवारिक कल्याण विश्वभर में परिवार का जो महत्व है उसको दर्शाने के लिए श्रोताओं, आज का जो ये दिन है ये मनाया जाता है। परिवार हम सब के लिए बहुत ही एक ज़रूरी हम कह सकते हैं होता है, और परिवार में रह कर के ही हम परिवार के लोगों के साथ जुड़ना सीखते हैं, परिवार के लोगों के साथ उनके सुख दुख में उनके काम आना, ये सब हमें परिवार ही सिखाता है। और परिवार से जुड़े रहेंगे तो हमें परिवार की अहमियत जो है वो पता चलेगी, और अगर परिवार हमसे बिखर जाएगा या बिछड़ जाएगा तब हमें एहसास होता है कि परिवार जो है श्रोताओं वो हमारे लिए कितना ज़रूरी है। श्रोताओं, परिवार दिवस के दिन परिवार के बारे में और भी बातचीत आपके साथ करेंगे। फिलहाल चलते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

1491.2 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ और कार्यक्रम में अब समय है छोटे से अंतराल का। यूं ही बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए रेडियो गुंजन, गूंज अपने पन की।

0: दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दें अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAC+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 72 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर, भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंग फोर्ड और LinkedIn लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI, जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं, तो आज ही जाएं APEX+ POINT ऑथोराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी, कॉलेज रोड, सिविल लाइन, धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।
1: खुशी कौन नहीं चाहता, लेकिन किस कीमत पर? धूम्रपान महंगा पड़ता है। धूम्रपान आपके लिए हानिकारक है और आपके चाहने वालों के लिए भी। धूम्रपान पड़ेगा महंगा।
2: श्रोताओं, 91.2 MHz पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ, कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और कार्यक्रम में इस अंतराल के बाद चलते हैं श्रोताओं कार्यक्रम के अगले प्यारे से गीत की ओर। सोल्जर फिल्म का गीत कार्यक्रम में आगे आपको सुनवाने जा रहे हैं, जिसे गाया है अलका याग्निक ने।

श्रोताओं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और गुड इवनिंग धर्मशाला के आज के इस अंक में हम बात कर रहे हैं श्रोताओं अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के बारे में। आज मनाया जा रहा है विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस। और परिवार किसी भी समाज की सबसे महत्वपूर्ण इकाई होता है। बच्चों के शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक विकास में परिवार की भूमिका सबसे अहम होती है। लेकिन आज दुनिया के कई परिवार आर्थिक असुरक्षा, देखभाल की सीमित सुविधाओं और स्वास्थ्य एवं शिक्षा जैसी जरूरी सेवाओं तक असमान पहुँच जैसी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। और इन समस्याओं के चलते ही वे अपने परिवारों से कई बार दूर हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। और उसकी वजह से हमारे जो परिवार हैं वो टूट रहे हैं, या यूँ कहे अलग हो रहे हैं। तो इन सब समस्याओं से जो है वो परिवार ही मिलकर के जूझता है। और परिवार की एकता और एकजुटता ही हम सबको आपस में जोड़े रखती है। तो सब परिवार में मिलजुल कर रहें, आपसी मेल मिलाप को बनाए रखें। और अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के दिन ही नहीं श्रोताओं, बल्कि हर दिन परिवार के साथ आप बिताएं खुशियों के साथ, और अपने आप को जो है वो सुरक्षित अपने परिवार में महसूस करें। आप हैं इस वक्त रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ श्रोताओं, मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी, और मेरे साथ इस समय आप कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला। कार्यक्रम में आगे लीजिए, सुनिए कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत। और इस गीत के ठीक बाद श्रोताओं आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

0: आज के मुख्य समाचार। प्रदेश में 51 शहरी निकायों के लिए 17 मई को होगा मतदान। खुलेआम चुनाव प्रचार थमा, चुनाव आयोग ने पूरी की तैयारियां। कांग्रेस और भाजपा ने चुनावों में अपनी अपनी जीत के किए दावे, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, 21 जून को फिर से होगी नीट परीक्षा, 14 जून तक उपलब्ध कराए जाएंगे प्रवेश कार्ड। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के लिए सभी प्रत्याशियों को आवंटित किए गए चुनाव चिन्ह। लाहौल स्पीति जिले की 17 पंचायतें निर्विरोध निर्वाचित। और आईपीएल में पंजाब किंग्स और आरसीबी के बीच कल धर्मशाला में होगा अहम मुकाबला। क्रिकेट प्रेमियों में उत्साह। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में 51 शहरी निकायों के लिए 17 मई को होने वाले मतदान के लिए आज खुलेआम चुनाव प्रचार समाप्त हो गया है। प्रचार के अंतिम दिन आज दोनों प्रमुख दलों भाजपा व कांग्रेस ने चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंकी। वरिष्ठ कांग्रेस नेता व मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज सोलन में चुनाव प्रचार किया। बाद में पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने दावा किया कि प्रदेश के चारों नगर निगमों में कांग्रेस पार्टी की स्थिति बेहतर है। उन्होंने कहा कि सोलन शहर की सभी समस्याओं का समाधान किया जाएगा।
1: कांग्रेस पार्टी के चारों नगर निगम चुनावों में कांग्रेस की बहुत अच्छी स्थिति है और हमारे जो 1.5-2 साल का वक्त है, सभी जगह पैसे की स्वीकृति हो चुकी थी और हमने 3 और नगर निगम बनाए हैं। मेरा मानना है कि 16 नगर निगम में हमने जो कार्य की स्वीकृति दी थी, उस पर अभी कार्य शुरू होने हैं। 16 नगर निगम में कांग्रेस पार्टी अपना वर्चस्व लड़ाएगी।
0: दूसरी ओर पूर्व केंद्रीय मंत्री व वरिष्ठ भाजपा नेता अनुराग ठाकुर ने भी आज सोलन में पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार किया। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर झूठे वायदे कर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि सोलन सहित राज्य के अन्य स्थानों पर शहरी निकाय चुनावों में भाजपा की जीत होगी।
2: कांग्रेस क्यों घबराई है? 26 में अंगड़ाई है, 27 में कांग्रेस की विदाई है। नगर निगम के चुनाव में भी कांग्रेस का सुपड़ा साफ होगा। 3 सालों से यहाँ की जनता जो राज्य की सरकार की नाकामियों का दंश झेल रही है, वो साफ दिखता है कि दर्द क्या है। इन्होंने कहा था कि 100 रुपए बिल देंगे, पानी 24 घंटे देंगे। ना पानी आता है, लेकिन बिल दिल खोल कर आता। कांग्रेस ने बड़े बड़े वायदे किए थे, लेकिन आज कांग्रेस भ्रष्टाचार में डूबी नजर आती है। आज केवल एक मौका है जनता के पास कि सोई हुई सरकार को जगाना है, जिन्होंने बड़ी बड़ी गारंटियां दी थी फिर मुकर गए।
0: राज्यसभा सांसद अनुराग शर्मा ने नगर निगम धर्मशाला और पालमपुर में कांग्रेस पार्टी की जीत का दावा किया है। धर्मशाला में आज एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में इन दोनों शहरों को आधुनिक बनाने का रोड मैप तैयार किया है। अनुराग शर्मा ने कहा कि प्रत्येक वार्ड में बच्चों व युवाओं के लिए डिजिटल लाइब्रेरी बनाई जाएगी और वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष पार्क विकसित किए जाएंगे।
3: नगर निगम धर्मशाला और पालमपुर की जो हमारे सर्वे की रिपोर्ट है, उसमें भी हमारे दोनों क्षेत्रों में हमारे मेयर और डिप्टी मेयर कांग्रेस के बन रहे हैं। और कल जो संकल्प पत्र माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जो विकास के लिए, धर्मशाला के विकास के लिए जो प्रस्तुत किया गया, उसमें हर चीज का समावेश है। हर वार्ड में कोशिश रहेगी कि संगठित पार्किंग की सुविधा जो दी जाएगी, बार मेमोरियल के पास रिक्रिएशन सेंटर जो बनाया जाएगा, स्ट्रीट वेंडर्स के लिए नए बेंडिंग जोन, जो हमारे दुकानें लगाते हैं बेरोजगार, उनके लिए जो नए बेंडिंग जोन बनाए जाएंगे सुनियोजित ढंग से।
0: भारतीय जनता पार्टी ने आज नाहन नगर परिषद के लिए अपना संकल्प पत्र जारी किया। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने नाहन में संकल्प पत्र

0: जारी करते हुए बताया कि शहर के प्रत्येक वार्ड में पार्किंग व्यवस्था मजबूत की जाएगी और सामुदायिक भवनों का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि शहर में धुआं रहित वाहनों को बढ़ावा देने के लिए विशेष योजना चलाई जाएगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि विद्यार्थी सरकार की प्राथमिकता है और सरकार उनके लिए संवेदनशील है। उन्होंने आज नई दिल्ली में बताया कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने नीट UG 2026 परीक्षा 21 जून को दोबारा आयोजित करने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों को 14 जून तक प्रवेश कार्ड उपलब्ध करा दिए जाएंगे। शिक्षा मंत्री ने कहा कि वर्तमान में OMR मोड में आयोजित होने वाली नीट UG परीक्षा अगले वर्ष से कंप्यूटर आधारित यानी CBT माध्यम से होगी। उन्होंने कहा कि NTA ने ठोस सुधारों की जरूरत है। उन्होंने बताया कि भविष्य में किसी भी तरह की अनियमितताओं को रोकने के लिए परीक्षा प्रणाली को सुदृढ़ करने संबंधी उपाय किए जाएंगे। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि सरकार नहीं चाहती कि कोई भी योग्य विद्यार्थी फर्जी उम्मीदवारों की धांधली या शिक्षा माफिया की साजिशों के कारण अपने अधिकारों से वंचित हो जाए।
1: परीक्षा में थोड़ा हमको जो उनकी फॉर्मेलिटीज है, OMR शीट को दस्तखत करना, आरंभ में एक बार करना, अंत में भी एक बार करना, उसमें हमारी विद्यार्थियों कोर टाइम में कटौती हुई थी। जो 2 से 5 एग्जामिनेशन टाइम था उसको ध्यान में रखते NTA ने थोड़ी एक निष्पत्ति किया है कि उसको और 15 मिनट बढ़ाए। 2 से शुरू होगा 5:15 तक ये परीक्षा की समय बढ़ाया जाएगा। एडमिट कार्ड, इस बार की एडमिट कार्ड 14 जून तक सभी को पहुँच जाएगा।
0: ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश में 26, 28 और 30 मई को होने वाले पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों के लिए भरे गए नामांकन पत्रों को वापस लेने का आज अंतिम दिन था। निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव लड़ रहे सभी प्रत्याशियों को आज ही चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिए गए हैं। राज्य में इस बार पंचायत चुनाव 3 चरणों में करवाए जा रहे हैं। पंचायत प्रधान, उप प्रधान और वार्ड सदस्यों के चुनाव परिणाम मतदान वाले दिन ही घोषित किए जाएंगे, जबकि पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्यों के मतों की गणना 31 मई को की जाएगी। प्रदेश में कई ऐसी पंचायतें हैं जो निर्विरोध चुनी गई हैं। लाहौल स्पीति जिले में 17 पंचायतें निर्विरोध चुनी गई हैं। इनमें से 8 पंचायतें लाहौल और 9 पंचायतें स्पीति घाटी में हैं। जिले में 147 वार्ड सदस्य निर्विरोध चुने गए हैं। नाम वापसी के बाद अब जिले में जिला परिषद के लिए 22, पंचायत समिति के लिए 39, प्रधान के लिए 80 और उप प्रधान पद के लिए 76 प्रत्याशी चुनाव मैदान में रह गए हैं। सोलन जिले की काहला और भोजपुर पंचायतें भी निर्विरोध चुनी गई हैं। काहला पंचायत में प्रधान राजेश ठाकुर सहित उप प्रधान और सभी वार्ड सदस्यों का चुनाव निर्विरोध हुआ है। निर्विरोध चुनी गई पंचायतों को सरकार की ओर से 25-25 लाख रुपए की विशेष प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। राज्य सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों को लेकर मतदान दिवस पर संबंधित क्षेत्रों में भुगतान सहित अवकाश घोषित किया है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार 26, 28 और 30 मई को संबंधित क्षेत्रों में सरकारी व निजी संस्थान बंद रहेंगे, ताकि अधिक से अधिक लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि कर्मचारियों और अधिकारियों को उसी दिन छुट्टी मिलेगी जब उनकी पंचायत और संबंधित क्षेत्र में मतदान होगा। दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को भी ये अवकाश मान्य होगा। धर्मशाला के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में 17 मई को पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच IPL का अहम मुकाबला खेला जाएगा। RCB की टीम आज दोपहर कांगड़ा एयरपोर्ट पहुंची, जहां विराट कोहली सहित अन्य खिलाड़ियों को देखने के लिए क्रिकेट प्रेमियों में खासा उत्साह रहा। पंजाब किंग्स की टीम को 10 और 14 मई को धर्मशाला में अपने दोनों ही मैच में हार का सामना करना पड़ा। प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए पंजाब किंग्स की टीम को ये मैच जीतना जरूरी है। नगर निगम शिमला में सफाई कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। सहब सोसाइटी से जुड़े ये कर्मचारी 10% वेतन वृद्धि की मांग कर रहे हैं। सहब सफाई कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष जसवंत सिंह ने कहा कि निगम प्रशासन द्वारा पिछले लंबे समय से उनकी मांगों को नजरअंदाज किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि नगर निगम की जनता से हर वर्ष 10% बढ़ोतरी के हिसाब से शुल्क वसूला जा रहा है, लेकिन सफाई कर्मचारियों के वेतन में नियमों के अनुसार वृद्धि नहीं की जा रही है।
2: एजे में जो हमारा 10% वार्षिक बढ़ोतरी होती थी वो इन्होंने जो है इस बार बिल्कुल खत्म की। हालांकि जो है एजे में ये मुद्दा ही नहीं था, फिर इन्होंने जो अपना आप हमारा 10% खत्म किया, क्योंकि इन्होंने जो आज जनता के ऊपर जो है 10% वृद्धि लागू कर दी है। अगर आपने जनता से लेने हैं तो हमें भी जो है 10% वृद्धि चाहिए। पहली बात यह है कि हमारा जो लेबर कोर्ट में जो है 3 सालों से जो है अभी केस चला हुआ है। कमिश्नर साहब एक बार भी जो 3 सालों में जो हमारे से बातचीत करने नहीं आए हैं।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में 51 शहरी निकायों के लिए 17 मई को होगा मतदान।

था हमारा आज का गुड इवनिंग धर्मशाला का अंक। यूं ही रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ जुड़े रहे और सुनते रहे रेडियो गुंजन धर्मशाला के प्यारे प्यारे कार्यक्रम। अब अपनी रेडियो दोस्त पिंकी को दीजिए इजाजत। किसी और कार्यक्रम में आपसे बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी। तब तक सुनते रहिए रेडियो गुंजन।

0: डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंग फोर्ड और लिंक्डइन लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण, GGI जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं तो आज ही जाएं एपेक्स प्लस पॉइंट ऑथराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी कॉलेज रोड सिविल लाइन धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।
1: खुशी कौन नहीं चाहता, लेकिन किस कीमत पर? धूम्रपान महंगा पड़ता है। धूम्रपान आपके लिए हानिकारक है और आपके चाहने वालों के लिए भी। धूम्रपान पड़ेगा महंगा।
0: नमस्कार दोस्तों, चुनावी चर्चा की चौपाल अब सजेगी आपके अपने रेडियो गुंजन पर। पंचायती राज और स्थानीय निकाय चुनाव की हलचल तेज है। ग्राम स्वराज के लिए काबिल प्रतिनिधि चुनने का वक्त आ गया है और इस खास अवसर पर रेडियो गुंजन धर्मशाला आप सभी के लिए लेकर आ रहा है विशेष कार्यक्रम चुनाव संवाद। इस कार्यक्रम में हम आपके क्षेत्र के उम्मीदवारों से सीधी बातचीत करेंगे और उठाएंगे आपके मुद्दे, आपके सवाल। क्या आप चाहते हैं कि आपके क्षेत्र के उम्मीदवार इस मंच पर आएं? क्या आपके मन में है कुछ सवाल जिनका जवाब आप जानना चाहते हैं? तो देर किस बात की, अभी अपने सवाल और अपने क्षेत्र के उम्मीदवार का नाम हमें भेजें व्हाट्सएप या SMS के माध्यम से। हमारा नंबर रहेगा 7018170181701। आइए बने एक जागरूक नागरिक, क्योंकि आपका वोट आपकी आवाज़ है।

0: जागो धर्मशाला वासियों जागो,
1: क्योंकि हमारा शहर हमारी जिम्मेदारी है।
0: इस बार चुनाव में केवल वोट न दें, बल्कि धर्मशाला का बेहतर भविष्य चुनें। मतदान करने से पहले कुछ खास बातों पर गौर करें।
1: क्या आपके वार्ड में सड़कें, साफ पानी, कूड़ा प्रबंधन और स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था दुरुस्त है? नगर निगम के पिछले कार्यों की जांच करें और तथ्यों के आधार पर ही निर्णय लें।
0: उम्मीदवार की योग्यता देखें। हमें ऐसा प्रतिनिधि चाहिए जो ईमानदार और पारदर्शी हो, जनता के प्रति जवाबदेह हो, विकास और पर्यटन के प्रति समर्पित हो।
1: याद रखें, लापरवाही में लिया गया एक गलत फैसला 5 साल का पछतावा बन सकता है। जाति, धर्म या किसी प्रलोभन में बिल्कुल ना आए, केवल योग्यता और विकास को ही वोट दें।
0: जी बिल्कुल, आपका एक वोट धर्मशाला को स्वच्छ, सुंदर और

0: समृद्ध बना सकता है।
1: तो बिल्कुल, सबसे पहले सोचे,
0: सोचे,
1: जांचे,
0: जांचे,
1: परखे।
0: परखे और फिर अपना कीमती वोट देकर धर्मशाला को सवारे।
2: गुड्डी, किससे चैटिंग चल रही है?
3: मामा, नो शेयरिंग।
2: कोई स्पेशल? हाँ, हाँ, बैंक अकाउंट डिटेल्स, केवाईसी के लिए 10 मिनट दीजिए।
3: कौन था?
2: बैंक, केवाईसी अपडेट के लिए अकाउंट नंबर, पिन और ओटीपी मांगा है।
3: और आप मान गए? जब हम अपनी पर्सनल बातें हर किसी के साथ शेयर नहीं करते, तो अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स क्यों शेयर करेगा?
2: स्मार्ट गर्ल।
3: याद रहे मामा, डिजिटल लेन देन के लिए किसी को भी अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स ना दे। ओटीपी और पिन नंबर तो कभी नहीं, हमेशा भरोसेमंद नेटवर्क का ही इस्तेमाल करें।
4: अपने जीवन की जो लगाम है उसे खुद पकड़ के रखना है। आप क्या पढ़ना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो, किस तरीके से अपने जीवन को जीना चाहते हो, उस एस्पिरेशन को आप खुद सोचो और खुद उसके लिए ये सोचो कि आप उस एस्पिरेशन को पाने का क्या रास्ता है।
5: जी मम्मी जी, नहीं नहीं, हम आगे से कहीं नहीं जाएंगे। ठीक है, ओके।
6: क्या हुआ?
5: अरे कुछ नहीं, मम्मी का कॉल था, बोल रहे थे तुम लोग बेफजूल के खर्चे बहुत ज्यादा करने लग गए हो, हर दूसरे दिन बाहर घूम रहे होते हो, बाहर मूवी देख रहे होते हो, कभी खाना खा रहे होते हो। बोल रहे खर्चों पे थोड़ा कंट्रोल करो, पैसे पेट पे नहीं उगते।
6: यार वो ऐसे कैसे बोल सकते हैं, हम दोनों की शादी हो चुकी है, जहाँ हमारा दिल करे हम वहाँ जा सकते हैं, जो मन चाहे वो खा सकते हैं। मुझे ना उनकी यही बात नहीं पसंद, उन्हें हर चीज में टोकना होता है, हर चीज में इंटरफेयर करना होता है।
5: अरे यार एक काम करो, ये लो फोन, तुम खुद ही अपनी मम्मी को फोन करके बोल दो ये सब।
6: हमारे माँ बाप नहीं अगर हमें समझाएंगे तो कौन समझाएगा बताओ।

दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दें अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAK+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 72 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर, भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंगफोर्ड और लिंक्डइन लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI, जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं। तो आज

नमस्कार दोस्तों, चुनावी चर्चा की चौपाल अब सजेगी आपके अपने रेडियो गुंजन पर। पंचायती राज और स्थानीय निकाय चुनाव की हलचल तेज है। ग्राम स्वराज के लिए काबिल प्रतिनिधि चुनने का वक्त आ गया है और इस खास अवसर पर रेडियो गुंजन धर्मशाला आप सभी के लिए लेकर आ रहा है विशेष कार्यक्रम चुनाव संवाद। इस कार्यक्रम में हम आपके क्षेत्र के उम्मीदवारों से सीधी बातचीत करेंगे और उठाएंगे आपके मुद्दे, आपके सवाल। क्या आप चाहते हैं कि आपके क्षेत्र के उम्मीदवार इस मंच पर आएं? क्या आपके मन में है कुछ सवाल जिनका जवाब आप जानना चाहते हैं? तो देर किस बात की, अभी अपने सवाल और अपने क्षेत्र के उम्मीदवार का नाम हमें भेजें व्हाट्सएप या एसएमएस के माध्यम से। हमारा नंबर रहेगा 7018170918117091। आइए बने एक जागरूक नागरिक, क्योंकि आपका वोट आपकी आवाज़ है।

0: जागो धर्मशाला वासियों जागो,
1: क्योंकि हमारा शहर हमारी जिम्मेदारी है।
0: इस बार चुनाव में केवल वोट न दें, बल्कि धर्मशाला का बेहतर भविष्य चुनें। मतदान करने से पहले कुछ खास बातों पर गौर करें।
1: क्या आपके वार्ड में सड़कें, साफ पानी, कूड़ा प्रबंधन और स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था दुरुस्त है? नगर निगम के पिछले कार्यों की जांच करें और तथ्यों के आधार पर ही निर्णय लें।
0: उम्मीदवार की योग्यता देखें। हमें ऐसा प्रतिनिधि चाहिए जो ईमानदार और पारदर्शी हो, जनता के प्रति जवाबदेह हो, विकास और पर्यटन के प्रति समर्पित हो।
1: याद रखें, लापरवाही में लिया गया एक गलत फैसला 5 साल का पछतावा बन सकता है। जाति, धर्म या किसी प्रलोभन में बिल्कुल ना आए, केवल योग्यता और विकास को ही वोट दें।
0: जी बिल्कुल, आपका एक वोट धर्मशाला को स्वच्छ, सुंदर और समृद्ध बना सकता है।
1: तो बिल्कुल, सबसे पहले सोचे, जांचे, परखे
0: और फिर अपना कीमती वोट देकर धर्मशाला को सवारे।
2: गुड्डी, किससे चैटिंग चल रही है?
3: मामा, नो शेयरिंग।
2: कोई स्पेशल? हाँ, बैंक अकाउंट डिटेल्स, केवाईसी के लिए 10 मिनट दीजिए।
3: कौन था?
2: बैंक, केवाईसी अपडेट के लिए अकाउंट नंबर, पिन और ओटीपी मांगा है।
3: और आप मान गए? जब हम अपनी पर्सनल बातें हर किसी के साथ शेयर नहीं करते, तो अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स क्यों शेयर करेगा?
2: स्मार्ट गर्ल।
3: याद रहे मामा, डिजिटल लेन देन के लिए किसी को भी अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स ना दे। ओटीपी और पिन नंबर तो कभी नहीं, हमेशा भरोसेमंद नेटवर्क का ही इस्तेमाल करें।
4: अपने जीवन की जो लगाम है उसे खुद पकड़ के रखना है। आप क्या पढ़ना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो,

0: किस तरीके से अपने जीवन को जीना चाहते हो, उस एस्पिरेशन को आप खुद सोचो और खुद उसके लिए ये सोचो कि आप उस एस्पिरेशन को पाने का क्या रास्ता है।
1: जी मम्मी जी, नहीं नहीं, हम आगे से कहीं नहीं जाएंगे। ठीक है, ओके।
2: क्या हुआ?
1: अरे कुछ नहीं, मम्मी का कॉल था। बोल रहे थे तुम लोग बेफजूल के खर्चे बहुत ज्यादा करने लग गए हो, हर दूसरे दिन बाहर घूम रहे होते हो, बाहर मूवी देख रहे होते हो, कभी खाना खा रहे होते हो। बोल रहे खर्चों पे थोड़ा कंट्रोल करो, पैसे पेट पे नहीं उगते।
2: क्या वो ऐसे कैसे बोल सकते हैं? हम दोनों की शादी हो चुकी है, जहाँ हमारा दिल करे हम वहाँ जा सकते हैं, जो मन चाहे वो खा सकते हैं। मुझे ना उनकी यही बात नहीं पसंद, उन्हें हर चीज में टोकना होता है, हर चीज में इंटरफेयर करना होता है।
1: अरे यार एक काम करो, ये लो फोन, तुम खुद ही अपनी मम्मी को फोन करके बोल दो ये सब।
2: क्या हो गया? हमारे माँ बाप नहीं अगर हमें समझाएंगे तो कौन समझाएगा बताओ।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर यह है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त शशि और हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम लेकर गीत सुहाने नए पुराने। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारे से गीत के साथ। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

तो श्रोतो, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत, गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का। तो अपने कार्यक्रम में फिर से हम आगे बढ़ते हैं और आपको ले चलते हैं फिर से एक प्यारे से गीत के सफर में।

91.2 FM पर यह है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बिल्कुल अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो इसी के साथ अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको फिर से ले चलते हैं एक और गीत की तरफ। तो आप सभी यूं ही सुनते रहिए अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला।

ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से आपको ले चलते हैं एक और गीत की तरफ।

91.2 MHz पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। गीत सुहाने नए पुराने, तो फिर से अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत, गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का। तो अपने कार्यक्रम में फिर से हम आगे बढ़ते हैं और आपको ले चलते हैं फिर से एक प्यारे से गीत के सफर में।

0: दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दें अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAK+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 72 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर, भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंगफोर्ड और लिंक्डइन लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक होस्टल वातावरण। GGI जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं तो आज ही जाएं APEX+ पॉइंट ऑथराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी कॉलेज रोड सिविल लाइन धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।
1: खुशी कौन नहीं चाहता, लेकिन किस कीमत पर? धूम्रपान महंगा पड़ता है। धूम्रपान आपके लिए हानिकारक है और आपके चाहने वालों के लिए भी। धूम्रपान पड़ेगा महंगा।
0: नमस्कार दोस्तों, चुनावी चर्चा की चौपाल अब सजेगी आपके अपने रेडियो गुंजन पर। पंचायती राज और स्थानीय निकाय चुनाव की हलचल तेज है। ग्राम स्वराज के लिए काबिल प्रतिनिधि चुनने का वक्त आ गया है और इस खास अवसर पर रेडियो गुंजन धर्मशाला आप सभी के लिए लेकर आ रहा है विशेष कार्यक्रम चुनाव संवाद। इस कार्यक्रम में हम आपके क्षेत्र के उम्मीदवारों से सीधी बातचीत करेंगे और उठाएंगे आपके मुद्दे, आपके सवाल। क्या आप चाहते हैं कि आपके क्षेत्र के उम्मीदवार इस मंच पर आएं? क्या आपके मन में है कुछ सवाल जिनका जवाब आप जानना चाहते हैं? तो देर किस बात की, अभी अपने सवाल और अपने क्षेत्र के उम्मीदवार का नाम हमें भेजें व्हाट्सएप या SMS के माध्यम से। हमारा नंबर रहेगा 7018170918117091। आइए बने एक जागरूक नागरिक, क्योंकि आपका वोट आपकी आवाज़ है।

0: जागो धर्मशाला वासियों जागो,
1: क्योंकि हमारा शहर हमारी जिम्मेदारी है।
0: इस बार चुनाव में केवल वोट न दें, बल्कि धर्मशाला का बेहतर भविष्य चुनें। मतदान करने से पहले कुछ खास बातों पर गौर करें।
1: क्या आपके वार्ड में सड़कें, साफ पानी, कूड़ा प्रबंधन और स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था दुरुस्त है? नगर निगम के पिछले कार्यों की जांच करें और तथ्यों के आधार पर ही निर्णय लें।
0: उम्मीदवार की योग्यता देखें। हमें ऐसा प्रतिनिधि चाहिए जो ईमानदार और पारदर्शी हो, जनता के प्रति जवाबदेह हो, विकास और पर्यटन के प्रति समर्पित हो।
1: याद रखें, लापरवाही में लिया गया एक गलत फैसला 5 साल का पछतावा बन सकता है। जाति, धर्म या किसी प्रलोभन में बिल्कुल ना आए, केवल योग्यता और विकास को ही वोट दें।
0: जी बिल्कुल, आपका एक वोट धर्मशाला को स्वच्छ, सुंदर और समृद्ध बना सकता है।
1: तो बिल्कुल, सबसे पहले सोचें, जांचें, परखें
0: और फिर अपना कीमती वोट देकर धर्मशाला को सवारे।
2: गुड्डी, किससे चैटिंग चल रही है?
3: मामा, नो शेयरिंग।
2: कोई स्पेशल? हाँ, बैंक अकाउंट डिटेल्स, केवाईसी के लिए 10 मिनट दीजिए।
3: कौन था?
2: बैंक, केवाईसी अपडेट के लिए अकाउंट नंबर, पिन और ओटीपी मांगा है।
3: और आप मान गए? जब हम अपनी पर्सनल बातें हर किसी के साथ शेयर नहीं करते, तो अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स क्यों शेयर करेगा?
2: स्मार्ट गर्ल।
3: याद रहे मामा, डिजिटल लेन देन के लिए किसी को भी अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स ना दे। ओटीपी और पिन नंबर तो कभी नहीं, हमेशा भरोसेमंद नेटवर्क का ही इस्तेमाल करें।
4: अपने जीवन की जो लगाम है उसे खुद पकड़ के रखना है। आप क्या पढ़ना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो, किस तरीके से अपने जीवन को जीना चाहते हो, उस एस्पिरेशन को आप खुद सोचो और खुद उसके लिए ये सोचो कि आप उस एस्पिरेशन को पाने का क्या रास्ता है।
5: जी मम्मी जी, नहीं, हम आगे से कहीं नहीं जाएंगे। ठीक है, ओके।
6: क्या हुआ?
5: अरे कुछ नहीं, मम्मी का कॉल था, बोल रहे थे तुम लोग बेफजूल के खर्चे बहुत ज्यादा करने लग गए हो, हर दूसरे दिन बाहर घूम रहे होते हो, बाहर मूवी देख रहे होते हो, कभी खाना खा रहे होते हो। बोल रहे खर्चों पे थोड़ा कंट्रोल करो, पैसे पेट पे नहीं उगते।
6: क्या वो ऐसे कैसे बोल सकते हैं? हम दोनों की शादी हो चुकी है, जहाँ हमारा दिल करे हम वहाँ जा सकते हैं, जो मन चाहे वो खा सकते हैं। मुझे ना उनकी यही बात नहीं पसंद, उन्हें हर चीज में टोकना होता है, हर चीज में इंटरफेयर करना होता है।
5: अरे यार एक काम करो, ये लो फोन, तुम खुद ही अपनी मम्मी को फोन करके बोल दो ये सब।
6: हमारे माँ बाप नहीं अगर हमें समझाएंगे तो कौन समझाएगा बताओ?

92.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। तो आइए श्रोताओं, सुनते हैं सुंदरकांड। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।